समय हुआ है 5:30 और 20 सेकंड। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं पंडित दीनानंद मिश्रा का गायन, राग है भटियार।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित दीनानंद मिश्रा का गायन, राग था भटियार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, जिसके अंतर्गत आपने सुना भजन और गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचार।

मातृभाषा के प्रति भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम जग जाहिर है। हिंदी भाषा के विकास और जनजन के हृदय में बसाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष

पूर्वक उन्होंने उन अंग्रेजों से पूछा, आप हिंदी जानते हैं? हां, नॉलेज रखते हैं, उनमें से एक अंग्रेज बोला। फिर आपने मुझसे हिंदी में सवाल क्यों नहीं किया? भारतेंदु जी ने उनसे पूछा। वे दोनों अंग्रेज चुप रहे। भारतेंदु जी ने अब और थोड़ी सहजता दिखाते हुए पूछा, जब आप हिंदी जानते हैं तो फिर आपने मुझसे हिंदी में क्यों नहीं सवाल किया? वे दोनों अंग्रेज फिर चुप रहे। अब की बार भारतेंदु जी एकदम मानवीय हो गए और पूरी सहजता से बोले, सॉरी सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट इफ यू नो हिंदी यू शुड स्पीक इन हिंदी विद इंडियंस। दोनों अंग्रेज सीधे से दिख रहे भारतेंदु जी को गंभीरतापूर्वक देखते रह गए। भारतेंदु जी अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भली प्रकार जानते और समझते थे। ये सारी भाषाएं उन्होंने स्वाध्याय के जरिए ही सीखी थी। वे किसी भाषा विशेष के विरोधी नहीं थे, मगर अपनी भाषा को वे उन्नति का सबसे बड़ा आधार मानते थे। अपनी भाषा की उन्नति के लिए उन्होंने अनेक दोहे भी लिखे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदपि सबगुन होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोए। और एक अति लाभ यह है या में प्रगढ़ लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात।

अभी आपने चिंतन के अंतर्गत सुने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं रामचरितमानस का के अंतर्गत बालकांड का 98वां भाग।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही हो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की

0: दसवीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27 to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुनी शब्द, कलाकार थे हरि तीर्थन सिंह। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ अल्पना। सुबह की बात हो और खूबसूरत सी सुबह को और भी रंगीन और खूबसूरत बनाते हैं हम प्यारे प्यारे गीतों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज़ लता मंगेशकर की है, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से हमने ये गीत चुना है।

साथियों, सुबह का सूरज हमें सिखाता है कि हर अंधकार के बाद नई और सुनहरी रोशनी ज़रूर आती है। एक खुशनुमा सुबह की शुरुआत होती है। आपकी भी सुबह खुशनुमा हो और प्यारी प्यारी चीज़ें हो लाइफ में, और यही नहीं कि आपकी भी ज़िंदगी में कुछ और रोशनियां भरें। इसी उम्मीद के साथ एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। आवाज़ है उस्ताद सुल्तान खान की और शंकर महादेवन की, कविता कृष्णमूर्ति की। बहुत ही खूबसूरत गीत है।

साथियों, सुबह के सूरज के साथ एक चीज़ और मिलती है, वो होती है गुनगुनाते पक्षियों की आवाज़। जी हाँ, उनकी मधुर आवाज़ आपके कानों में जब घुलती है ना, तो क्या कहने। और उस आवाज़ को सुनिए, महसूस करिए, उसके संगीत में खोइए और उस सुबह को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, फिल्म कोई मिल गया से, आवाज़ शान की, कविता कृष्णमूर्ति और बेबी स्नेहा की।

जरूर जीना चाहिए और उसे पूरा पूरा उसका प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन को और अच्छा बनाने में। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई सी।

साथियों, कल क्या हुआ था हमें उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आज का पल, आज का अगला पल, आने वाला कल, ये सब हमारे हाथ में है, क्योंकि हर समय हमें मौका देता है आगे बढ़ने का, अपने लक्ष्य को पाने का, और उस पल को हमें

साथियों, मुस्कान एक ऐसी खामोश भाषा है जो हर दिल का दरवाज़ा खोल देती है, और इसलिए ज़िंदगी में मुस्कुराने की वजह ढूंढते रहना चाहिए। अगला भी सुनिए, फिल्म जब वी मेट से।

साथियों, जीवन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सोचने का नज़रिया और काम करने का सही तरीका। और अगर आप सही सोच के साथ अपने काम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए, आपको छोड़े जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ। अल्पना को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। हेमंत सरदेसाई की आवाज़ में गीत है फिल्म।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्लस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा

के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने

0: पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट

0: दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
3: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3-C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3-C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3-C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed oil marketing companies to continue maintaining comprehensive data on commercial and industrial LPG consumers to facilitate efficient planning and supply management. It has reiterated its commitment to expanding PNG connectivity. With Suparna, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
2: The government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. The National Testing Agency, or NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update the bank details is the 30th of this month. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in different parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Tazia processions will be taken out on the occasion. The majlis or religious meetings highlighting the supreme sacrifice of Karbala martyrs are also being organized. Elaborate security arrangements have been made on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on

0: Germany. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over Curaçao in Philadelphia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockout round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैन अलाक्वामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा, अक्वामे मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की इक्तसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक्तसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकतदार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक

0: सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के दो जहाज़ों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का अहतमाम किया है। इसमें मरकजी वजारतों, रियासती सरकारों और मनशियात की रोकथाम से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे ताकि मुल्क में मनशियात के स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया बहरान से पहले थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक बयान में कहा है कि बहरान शुरू होने पर बल्क एलपीजी की जो सप्लाई मुअत्तल कर दी गई थी उसमें बहरान से पहले की खपत की सतह की 50% की रियायत की गई है, जिससे कमर्शियल और सनती सारिफीन को काफ़ी राहत मिली है। एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल ही में बेहतर होने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3-C4 स्ट्रीम की मुंतकली को कम करने का भी फैसला किया है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान सरकार ने लाजमी खदमात के एक्ट के तहत अहकाम जारी किए थे, जिसकी रूह से C3-C4 स्ट्रीम को सिर्फ एलपीजी की पैदावार के लिए बरोकार लाने की बात कही गई थी ताकि अंदरून मुल्क एलपीजी की पैदावार में इजाफा हो सके। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कमर्शियल और सनती एलपीजी सारिफिन के बारे में जामे डेटा बरकरार रखें ताकि मौसर मनसूबाबंदी और सप्लाई बंदोबस्त में सहूलत हो सके। सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी को वसत देने के अपने अहद को भी दोहराया है। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए अबूरी आंसर कीज को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को सहूलत फराहम की है। तलबा इस महीने की 28 तारीख तक 200 रुपये फी सवाल की फीस अदा करके इन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कबूल किए जाने की सूरत में ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में सख्त कार्रवाई की है और 8 नामजद मुलजिमों और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। मस्कूरा FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टीनू का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जाम सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमरजेंसी के 50 साल पूरे होने की याद में साल भर चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कल नई दिल्ली में हुई। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जाबिराना और मुतलकुल अनान निज़ाम हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहता और आखिरकार इसका खात्मा हो जाता है।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया।

0: संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ। अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सब को एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: 1975 की इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने के सिलसिले में इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था ताकि अवाम में जमहूरियत, आईनी अकदार और शहरियों के हकूक के ताल्लुक से बेदारी को तकवीत मिल सके। बैन अलाक्वामी माली फंड IMF ने कहा है कि मगरबी एशिया में हाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। IMF की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए IMF के मुवासलात महकमे की डायरेक्टर जूली कोजेक ने कहा कि गैर मुल्की उथल पुथल के बावजूद भारत की मईशत मुस्तहकम रही है और मजबूत अंदरूनी मुल्क मांग से इसको तकवीत मिली है। IMF ने कहा कि माली साल 2026-27 में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इस तरह अप्रैल में नजर सानी के बाद शरह तरक्की में इजाफे का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बरकरार रहेगा। मोहतरमा कोजेक ने यह भी कहा कि साल की पहली सहमाही के दौरान भारतीय मईशत की कारकर्दगी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छी रही है। वेनेजुएला में 2 शदीद जलजले आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों को मलबे में तलाश कर रहे हैं। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां कल 7.2 शिद्दत का जलजला आया था। इसके चंद सेकेंड बाद इससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का जलजला आया। ये दोनों ही जलजले जमीन की सतह के बहुत करीब थे, इसलिए तबाही भी ज्यादा हुई है। कई मुल्कों ने इमदादी कोशिशों में मदद का वादा किया है। वेनेजुएला की सदर ने जलजले के तनाजुर में भारत की यगानगत को तस्लीम करते हुए कहा है कि वो मुश्किल की घड़ी में इश्तराक के जज्बे के साथ खड़ा है। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में कल रात इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 136 रन बनाए। भारत के लिए राधा यादव ने 3 जबकि श्री चन्नी ने 2 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में भारत ने जीत का निशाना 16 ओवर्स और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 53 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे न्यूजर्सी स्टेडियम में ग्रुप ई के एक मुकाबले में एक्वाडोर जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। इससे कबल फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया। वो पहली मरतबा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। टीम के लिए निकोलस पेपे ने 2 गोल किए। निशानेबाजी में जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कल 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मजीद 4 तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 25 हो गई। मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में राजचंद्रा ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश चौथी पोजीशन पर रहे। योगेश, प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने 4 तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई जिनमें सोने के 7, चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मरतबा तमगों के मामलों में सरे फहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अलाक्वामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज आइंदा माह की 1 तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोजा

0: जलजले से भारी तबाही पर दुख, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, LPG की सप्लाई पर से तमाम पाबंदियां हुकूमत ने उठाई, अब लोगों को मामूल के मुताबिक गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। भारत अमरीका मेगा डील जल्द, दुनिया की नज़रें 24 जुलाई पर टिकी हुई हैं। ये खबर रोजनामा प्रताप के सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ मौजूद है। इसी सफ़े की एक और खबर है, दिल्ली की 270 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता का बयान। रोजनामा प्रताप ने रेखा गुप्ता के इस बयान को भी नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है कि दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में नई सहूलियात तैयार की जाएंगी। कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह से हैं, हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है, आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1000 उम्रा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे, मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में नए रिकॉर्ड कायम।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैनुल अक्वामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तिसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उमदा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत लीजिए सुनते हैं राग चारू केसी में। गिटार वादन कलाकार हैं कृष्ण शर्मा।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर गंगा में आप सुन रहे थे गिटार वादन राग चारू केसी में। कलाकार थे किशन शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है खादी और उसके प्रयोग पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जौहरी।
1: खादी हाथ से काता और बुना जाने वाला एक प्राकृतिक रेशा जिसका मूल नाम खद्दर है। ये मात्र पहनावा नहीं बल्कि हमारे देश की परंपरा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और है स्वतंत्रता के संघर्ष का मुख्य आधार। खादी का प्रयोग हमारे देश में सभ्यता के आरंभ से ही होता आ रहा है। हाथ से इसके धागे की कताई और बुनाई प्राचीन काल से ही चली आ रही है। चरखा, जो एक प्रकार का कताई यंत्र है, वैदिक काल से ही भारत में इसका उपयोग सूत काटने के लिए किया जाता था। सूती, रेशमी और ऊनी खादी के इन कपड़ों के धागे पारंपरिक चरखे पर ही तैयार किए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। वहीं मोहनजोदड़ो के पुजारी की मूर्ति, जिसके कंधे पर एक लबादा है, ये भी प्राचीन भारत में खादी के प्रयोग का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मौर्य और गुप्त काल में भी खादी के उत्पादन में काफी प्रगति हुई। मध्यकाल में भी हाथ से बुना हुआ मलमल पूरी दुनिया में अपनी अभूतपूर्व छाप छोड़ चुका था, खासकर ढाका का मलमल। ढाका, जो उस वक्त भारत का ही अंग था, यह मलमल शाही घरानों का प्रतीक बन गया था। मुगल काल में यह अपने चरम पर पहुंच गया। इसी समय कपड़ों पर होने वाली कई नायाब कढ़ाइयों का जन्म हुआ और इस कपड़े की खूबसूरती और निखर कर सामने आई। आज भी इस कढ़ाई के पाशनी, बखिया, खताओ, गिट्टी और जंगीरा जैसे कई रूप देखने को मिलते हैं। 17वीं सदी के अंत तक यूरोप में भारतीय सूती वस्त्रों का बड़े पैमाने पर विस्तार हो चुका था, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य लगभग 1760 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद उत्पादन के पुराने तरीकों, हस्तशिल्प की जगह भारी मशीनों और कारखानों ने ले

0: इसका सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ा, जिससे खादी बुनने की कला सिमटकर गांव तक रह गई और धीरे धीरे यहाँ के बुनकरों का कारोबार नष्ट होने लगा। 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ अंग्रेजों का कपड़ा उद्योग खूब फल फूल रहा है। वे यहाँ से कच्चा माल लेकर कपड़े तैयार करते और इन कपड़ों को यहीं बेच देते। इससे स्थानीय कारोबार की कोई जगह नहीं बची थी। ब्रिटिश साम्राज्य के इस आर्थिक शोषण के विरोध में और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी ने खादी को राजनीतिक और सामाजिक हथियार बनाया। साथ ही उन्होंने इसे जन आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने लोगों को साधारण शब्दों में समझाते हुए कहा, यदि आप एक रुपए की खादी खरीदते हैं तो उसका 13 आना एक बड़ा हिस्सा गरीब लोगों को जाता है, लेकिन यदि आप विदेशी कपड़ा खरीदते हैं तो वह पैसा देश के बाहर चला जाता है। इस तरह गांधी जी ने खादी के जरिए जनमानस से सीधा संवाद स्थापित किया और जनता में एकजुटता और स्वावलंबन का संदेश देते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास देने के लिए केवल एक संदेश है और वह है खादी के बारे में। खादी मेरे हाथों में सौंप दो और मैं तुम्हारे हाथों में स्वराज सौंप दूंगा। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों के मैनचेस्टर कपड़ों के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का पदार्पण हो गया। अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का त्याग कर सार्वजनिक रूप से उनकी होली जलाई गई। इसके बाद 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से की गई। इस आंदोलन में भी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और दुकानों पर धरना देना शामिल था। इस तरह खादी स्वदेशी आंदोलन का भी प्रतीक बन गई। गांधी जी के लिए खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता का एक शक्तिशाली विचार थी। उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी को अपनाना ही करोड़ों भूखे लोगों को भोजन और काम देने का एकमात्र तरीका है। उनका विश्वास था कि चरखे और खादी के माध्यम से ही भारत के गांवों का उत्थान और विदेशी शासन से मुक्ति संभव है। इस तरह चरखा, जो कभी भारत की गरीबी और पिछड़ेपन का प्रतीक था, गांधी जी के नेतृत्व में शक्ति का प्रतीक बन गया। खादी को गांधी जी शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था का भी आधार मानते थे, इसीलिए वे खादी को हर घर तक पहुंचाना चाहते थे। वे मानते थे कि इससे गांवों का पैसा गांवों में ही रहेगा और स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को रोजगार मिलेगा। गांधी जी ने खादी को आत्मनिर्भरता और अहिंसा के प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया। उनके लिए चरखा चलाना एक ऐसा अहिंसक कार्य था जो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह कहते थे, जो लोग स्वतंत्र भारत में रहना चाहते हैं उन्हें खादी अवश्य पहननी चाहिए। चरखा अहिंसा का प्रतीक है। और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने हस्तश्रम को बढ़ावा दिया। उनका विचार था कि जब तक खादी उतनी ही सार्वभौमिक या आम नहीं हो जाती जितनी की मुद्रा यानी पैसा, तब तक हम स्वराज के अर्थ को समझने का दावा नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को अपने कपड़े स्वयं बुनने और सूत कातने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उनके आह्वान पर लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और घर में बुनी खादी के वस्त्र पहनकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अपनी आहुति दी। गांधी जी ने स्वयं सादे वस्त्र यानी धोती पहनना शुरू किया, ताकि वे आम जनता और गरीबों के साथ एकरूपता स्थापित कर सकें। इस तरह विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाकर गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। इनसे स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को भी बढ़ावा मिला, जिसने भारत के लघु और कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार में भी योगदान दिया। इस तरह खादी भारतीयों द्वारा अपने संसाधनों को पुनः प्राप्त करने और स्थानीय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गई, और साधारण हाथ से काता और बुना हुआ ये कपड़ा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन गया। एक तरफ गांधी जी ने स्थानीय खादी को बढ़ावा देकर अंग्रेजों के खिलाफ एक अचूक अहिंसात्मक हथियार तैयार किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारतीय जनमानस में जात पात को भुलाकर अमीर और गरीब के बीच की खाई को खत्म करते हुए खादी को पुनः रोजगार के साधन के रूप में भी विकसित किया। गांधी जी स्वयं कहते थे कि खादी हम सभी को एक सूत्र में बांध सकती है, जैसा कि कोई और चीज नहीं कर सकती। खादी के गौरवशाली इतिहास और उसकी क्षमता को देखते हुए गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन धारा है। गांधी जी ने यंग इंडिया में इस बात का उल्लेख भी किया है कि चरखा देश की समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके आह्वान पर आजादी के हर नायक चरखे का इस्तेमाल खुद के कपड़े बनाने के लिए करने लगे। गांधी जी ऐसा इसलिए कर रहे थे जिससे भारतीय जनमानस में एक नए विमर्श को धार दिया जा सके। वे कहते थे कि खादी के वस्त्र पहनना न सिर्फ अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति भाव दिखाना है, बल्कि कुछ ऐसा पहनना भी है जो भारतीयों की एकता को दर्शाता है। इसी विचार के तहत 1925 में उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य हथकरघा को बढ़ावा देना, खादी का उत्पादन करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस तरह गांधी जी ने खादी की कताई को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लोकप्रिय बनाया। आजादी के बाद देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। यह खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी और गांव आधारित उद्योगों की स्थापना करना और विकास के लिए योजनाएं बनाना, प्रचार करना और साथ ही सुविधाएं और सहायता प्रदान करना भी है। खादी भारतीय वस्त्र विरासत का भी प्रतीक है और भारतीय समाज में खादी की एक खास स्वीकृति है। यही कारण है कि खादी आज समाज के सभी वर्गों की पसंद बनी हुई है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था खादी और उसके प्रयोग पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जौहरी।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजर हाँ तुहाडी सेवा विच हरजीत कौर। अज दे प्रोग्राम च असीं तुहानूं एक कहानी सुनवावांगे सुपने। कहानीकार होणगे सतवंत कौर मथाड़ू ते नाल ही फिल्मी गीतां दा वी आनंद माणांगे। श्रोतियो अज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाइयां दे सेवन अते गैर कानूनी तस्करी दे खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस है। इस दिन नूं मनाउण दा मकसद नशे दी भैड़ी आदत तों छुटकारा दिवाउणा ते उहनां नूं नशे तों होण वाले माड़े असरां तों बचाउणा है। पिछले कुछ दहाकियां च नशीले पदार्थां दा सेवन ते तस्करी च वाधा होया है ते बाजार च नशीले पदार्थ ज्यादा मिलण लग पए ने। हालांकि कई नशीले पदार्थ जब्त वी किते जा रहे ने पर तस्कर अजिहे राह लभ लैंदे ने कि ओह ड्रग्स लैण वालियां ताईं नशा पहुंचाई देंदे ने ते अपना कारोबार चलाउंदे रहिंदे ने। दरअसल साडे समाज च मौजूद कमियां ही ड्रग्स दी तस्करी नूं वधावा दे रहियां ने। हालांकि दूजे पासे सरकार लोकां नूं सेहत प्रति सुचेत रहण ते नशीले पदार्थां तों दूर रहण दा जतन कर रही है पर हाले वी हल खोजे जाने बाकी ने कि नशे दे खतरयां तों नजिठिया जा सके। संसार दे सारे देशां दे नागरिक नशे तों दूर रह के सेहतमंद जिंदगी जीव सकण ते सुरक्षित रहण। गैर कानूनी तरीके नाल नशीले पदार्थां दी खरीद वेच दा असर मनुखां ते ही पैंदा है ते इह मनुखी पीड़ है। खास तौर ते कमजोर वर्ग ते नौजवान पीढ़ी प्रभावित हो रही है। रिश्ते परिवार बिखर रहे ने, नशे बर्बादी वल ले जा रहे ने। इस दिवस नूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मनाउण दा मकसद एही है कि हर देश च वसनीकां नूं सुचेत कीता जावे, नशे दे माड़े असरां तों जाणू करवाया जावे, नशीले पदार्थां दी तस्करी ते रोक लगे, नशा मुक्ति लई सिख्या ते जागरूक प्रोग्राम चलाए जाण, नशीले पदार्थां दा उत्पादन काबू हेठ होवे, नशियां दे गैर कानूनी व्यापार ते बाजार ते नजर रखी जावे। नशीले पदार्थां दी दुरवरतों दी समस्या नाल नजिठण लई सरकार ने राष्ट्रीय कारज योजना तैयार कीती है जिस

0: तहत नशियां दी सप्लाई तस्करी होण ते कानूनी कार्रवाई कीती जा रही है। पर जेकर असी तुसी नशियां दे खिलाफ एकजुट हो जाइए, अपने बच्चियां नूं इस तों दूर रखिए, घर च जां आसे पासे कोई नशेड़ी है तां उसका इलाज कराइए, सब नूं जागरूक करिए। समाजिक कार्यकर्ता नशियां दे खिलाफ वड्डा अभियान चला सकते ने। इस तरह थोड़े थोड़े जतना नाल भी इस समस्या नूं नजिठण च मदद मिल सकती है। ते हुण असीं तुहानूं सुणवा रहे हां एक कहानी, सिरलेख है सुपने, कहानीकार ने सतवंत कौर मथाड़ू।
1: मिंदो बकाना पिंड दी एक पढ़ी लिखी कुड़ी सी जो वड्डे वड्डे सुपने देखिया करदी। वह अपनियां सहेलियां नाल हमेशा शहर दी साफ सुथरी जिंदगी अते उत्थों दियां सहूलतां दियां गल्लां करदी। उसनों घर दे कम्मां विच कोई दिलचस्पी नहीं सी, बस सैर सपाटे पहनन ते खाण पीण दी शौकीन सी। पिंड दा मुंडा बीरू ते मिंदो दी आपस विच बहुत बनदी। ए दोवें अपने सुपने पूरा करन दियां नित नवियां स्कीमां बनाउंदे। दोवें एक दूजे नूं बहुत पसंद करदे सी। एक वारी बीरू ने मिंदो नूं कहा, मिंदो चल असी दोवें व्याह करा के शहर चले जाइए। मिंदो ने जवाब दिता, ये नहीं हो सकता, मैं अपने घरदियां दे विरुद्ध हो के कुछ नहीं कर सकती। मिंदो दे घरदियां ने उसका रिश्ता रूपम नाल पक्का कर दिता। रूपम कोल सिर्फ 2 किले जमीन सी। ओ बहुत मेहनती, ईमानदार ते सच्चा नेक दिल दा सी। ओ कलम कला सी, खेतां विच बड़ी लगन ते मेहनत नाल काम करदा। उस दा घर भावें छोटा जिहा सी पर बहुत साफ सुथरा सी। व्याह तो बाद रूपम मिंदो नूं खुश रखण दा बहुत यतन करदा, पर ओह उस व्याह तो उक्का भी खुश नहीं सी। उसने सहूलतां वाली साफ सुथरी जिंदगी दे सुपने देखे सी। मिट्टी कट्टे वाली जिंदगी नहीं सी चाही। उस दे सुपने चकना चूर हो गए। रब दा भाणा मन के जिंदगी कट्टन लगी। मिंदो कुछ समय बाद अपनियां सहेलियां नूं मिलना शुरू कर दिता। उसने बीरू नूं मिल के अपनी जिंदगी बारे दस्या। बीरू ने कहा, मैं तां तैनूं व्याह लई कहा सी पर तू ही ना मन्नी, हुण की हो सकदा है। दिन बतीत हुंदे गए। एक साल बाद रूपम घर मुंडा होया, उसका नाम राजू रखिया। रूपम बड़ा खुश सी, मिंदो बच्चे दी पालना विच रुझ गई। रूपम शाम नूं जदों खेतां चों वापिस घर आउंदा, वह बच्चे नाल खेडदा, उसकी सारी थकान दूर हो जांदी। रूपम मिंदो दे काम विच वी मदद करदा। जदों राजू कुछ वड्डा होया तां मिंदो ने अपनी सहेलियां नूं मिलना शुरू कर दिता। घर दे कम्मां दी परवाह छड़ दित्ती। राजू नूं कल्ला छड़ के काफ़ी देर तक घरों बाहर रहिंदी। शाम नूं रूपम खेतां चों वापिस आ के देखदा तां बहुत दुखी हुंदा। उस नूं मिंदो दियां हरकतां दा पता लग चुकिया सी, पर ओह उस नूं कुछ कहिंदा नहीं सी। मिंदो हुण घर दे काम छड के सारा दिन बाहर तुरी रहिंदी ते रूपम दे घर वापस आण तक वह आ जांदी। कोई काम ना करदी, रोटी खा के मंजे उत्ते पसर जांदी। रूपम शांत रहिंदा, आपे ही काम कर लैंदा। एक दिन रूपम मगरों मिंदो सवेरे ही राजू नूं इकल्ला छड के हमेशा लई घरों चली जांदी है। रूपम जदों खेतां चों घर वापिस आया तां ओह घर दा उथल पुथल हुलिया देख के बहुत हैरान ते दुखी होया। जूठे भांडे खिलरे हुए सन। राजू रोंदा होया मां नूं इधर उधर पाल रहा सी। रूपम सब कुछ समझ गया। उसने राजू नूं चुक के चुप कराया ते खाण पीण नूं कुछ दिता। घर दा हुलिया ठीक करके आप पानी पीता। रूपम ने दाल चौल बनाए, राजू नूं खवाए, फिर आप खादे। राजू नूं सुआ के घर समेटिया। रूपम हुण हर रोज़ सवेरे उठ के घर दा सारा काम करदा, राजू नूं रोटी खवांदा ते आप बाद च आप खांदा। गुआंढन पूरो नूं राजू दी देखभाल रखण लई कह के ओह खेतां नूं चला जांदा। उत्थे सारा दिन वो बहुत मेहनत करदा। शाम नूं थक्या होया घर आ के रोटी बनाउंदा। राजू हुण 6 साल दा हो गया सी। राजू रूपम दी कुछ मदद करदा। काम दे बोझ कारण रूपम दा शरीर

दिनों दिन कमजोर हो गया। अक्सर उसकी तबीयत खराब रहन लगी, वो बीमार रहन लगा। खेतां च उस कोल हुण काम नहीं सी हो सकदा। एक दिन वो खेत गया, उत्थे उसकी तबीयत खराब हो गई। रूपम घर वापस आ गया, उस दे सीने विच दर्द उठया ते वो सदा लई सो गया। राजू कोल बह के रो रहा सी। पापा पापा उठो उठो, रूपो राजू दियां आवाजां सुन के आई ते देखया रूपम तां खत्म हो गया है। पूरो ने राजू नू चुक के चुप कराया ते क्या पुत, राजू हिम्मत ते हौसला रख। पहला तेरी माँ तेनू छड़ के चली गई ते हुण तेरे पापा भी नहीं रहे, तू इकल्ला रह गया है। वो रोंदे होए राजू नू चुप करा के अपने घर लै गई। दूजे दिन राजू अपने घर आ गया। राजू समझदार अणखी ते मेहनती मुंडा सी। वो अपना पेट पालन लई मेहनत मजदूरी करदा, उस बदले कुछ पैसे मिलदे तां वो खाण पीण लई चीज़ां लै आउंदा। खा पी के बूआ बंद करके राती सो जांदा। राजू रूपम वांग ही बहुत सिद्दकी मेहनती ते ईमानदार बच्चा सी। उसने किसी दुकान ते काम करना शुरू कर दिता। उत्थे निक्का मोटा काम करके पैसे कमाउन लग पिया सी। हौली हौली अपनी मेहनत ते लगन कारण उसनू बहुत लोग काम करन लई कहंदे। राजू ने होर कई काम सीख लए सन। चंगे सुभाग कारण वो सब दा चहेता बन गया। वो दूजियां दी मदद भी करदा सी। कुछ समय बाद उसने अपनी दुकान खोल ली। उत्थे उसनू चंगी कमाई होन लगी। हौली हौली उसने कपड़े दा व्यापार करना शुरू कर दिता। हुण वो वड्डा जवान हो गया सी, बहुते पैसे वाला हो गया। उसने पुराना मकान छड़ के रहन लई नवा सोहना वड्डा बंगला खरीद लिया। कार भी रख ली। उस कोल नौकर चाकर भी सन। वो बहुत अमीर व्यक्ति बन गया सी। सारे उसनू राजन साहिब आखदे सन। वो गरीबा दी बहुत मदद करदा सी। मिंदो अपने सुपने पूरे करन लई जदों घरों चली गई तां मुड़ के वापस नहीं आई। कई सालां तक वो बीरू नाल रहिंदी रही। दोवें सैर सपाटे करदे अते शहरी जीवन दे आनंद माणदे रहे। मिंदो नू कदे रूपम अते राजू दी याद नहीं सी आई। समा बतीत हुंदा गया। एक दिन वीरू दे कारखाने च अग लग गई ते सब कुछ तबाह हो गया। बहुत भारी नुकसान होया। उस उत्ते बहुत कर्जा चढ़ गया। वो पैसे पैसे दा मोहताज हो गया। वीरू नू मेहनत मजदूरी करनी पै गई। मिंदो दी ऐश परस्ती हुण खत्म हो गई सी। उसने एक दिन वीरू नू कहा कि हुण एहो जी जिंदगी कटनी पवेगी। कई वारी उन्हां दोहां विच बहस हुंदी ते कई वारी झगड़े भी होए। वीरू दुखी हो गया सी। मिंदो अपनियां सहेलियां कोल जाण लग पई। वीरू ने उसदी परवाह करनी छड़ दित्ती। मिंदो मन ही मन कहिंदी, इस नालों तां रूपम चंगा सी, मेरे कोलों कम भी नहीं सी करवांदा ते ओह मेरे नाल इज्जत नाल पेश आउंदा सी, कदे मैनू कुछ नहीं सी कहिंदा। एक दिन वीरू किसी चंगी औरत नाल विआह करा के उसनू घर लै आया। जदों मिंदो घर आई उसने उस औरत नू घर च बैठे हुए देखिया तां उसनू गुस्सा चढ़ गया ते उसने वीरू नू पुछया, ए औरत कौन है ते इत्थे बैठी हुई की कर रही है? उसनू कह इत्थों चली जावे। वीरू ने जवाब दिता, इसनू मैं विआह के लियाया हाँ, ये मेरी जीवन संगनी है, ये हुण इत्थे रवेगी, हुण तू इस घर तो जा। वीरू ने मिंदो नू तक्के मार के घरों बाहर कढ़ दिता। मिंदो बाहर आके क्या, हुण मेरा ना कोई घर है ते ना काट ते ना कोई मेरा अपना है, मैं हुण कित्थे जावां। रोंदी रोंदी सड़कां उत्ते इधर उधर भटकन लग पई। उस मन ही मन क्या, वीरू ने मैनू धोखा दिता है, उस पिछे मैं अपना घर परिवार छड़ के आई सी। अपने सुपने पूरे करन दी खातर अपने पुत अते रूपम नू धोखा दिता सी। हुण रूपम अते राजू दी उसनू बहुत याद आई ते पिंड नू चल पई। पर उत्थे खंडर होया मकान देख के बहुत दुखी हुई। उस विच कोई नहीं सी रह रहा। वापस आके मिंदो गली गली च भटकदी रही, भुखी प्यासी फटे हाल। वो खाण पीन नू भी तरस रही सी। फिर पिंड दे बाहर बह गई
ਤੇ ਆਪਣੀ

मथाड़ू दी एक कहानी सुन रहे सी। ते हुण फिल्मी गीतां दा आनंद लैंदे हां। आओ सुनिए बहुत ही पुरानी फिल्म पिंड दी कुड़ी दा गीत। ए फिल्म 1990 च बनी सी। इस गीत दे कलाकार ने महेंद्र कपूर ते लता मंगेशकर, गीतकार ने वर्मा मलिक ते संगीतकार हंसराज बहल।

पिंड दी कुड़ी इस फिल्म दा गीत तुसी महेंद्र कपूर ते लता मंगेशकर दियां आवाजां विच सुन रहे सी। ते हुण सुनदे आं शमशाद बेगम दा गाया गीत। ए गीत असीं लिया ए फिल्म गुड्डी तों।

कश्मीर कादर दा लिखिया माही मुंडा फिल्म दा गीत पेश कर रहे सन मोहम्मद रफी ते दिलराज कौर। ते प्रोग्राम दे अखीर च सुनो हरभजन मान ते सुनिधि चौहान नू। एक गीत असी लियाए फिल्म असानू माण वतना दा तों।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हुर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
3: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

0: ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिये निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to meet Queen Maxima of the Netherlands, who is also the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health and a long-standing global voice for financial inclusion. PM Modi said that India remains committed to sharing its experience with partner countries worldwide. Queen Maxima is visiting India in her capacity as the United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Ministry of External Affairs said that her visit reflects the shared commitment to advancing financial inclusion and draws on India's transformative experience in leveraging digital public infrastructure for inclusive growth and sustainable development. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. UP Police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Kurnesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu, along with other unidentified accused. The International Monetary Fund Director of Communication Department, Julie Kozak, has said

0: said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices.
1: India's economy has been growing robustly, and it has been supported particularly by very strong domestic demand within India. We had projected growth at 6.5% in fiscal year 26-27, and that was a slight upgrade. That was in April, and that was a slight upgrade compared to what we had had in January. So 6.5% is still quite strong growth. We see that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year. The economy in India had been growing in the first quarter at 7.8%.
0: In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In the FIFA World Cup, Ecuador advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. Gonzalo Plata turned saviour as a resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त वह है 10:10 और ठीक 19 सेकंड। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम यानी कि फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शोभा शर्मा और अगले कुछ पलों तक आपके साथ मैं रहूंगी आपकी पसंद के सदाबहार गीतों के साथ इस खूबसूरत सफ़र में। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें यूं हो जाती हैं कि कुछ का इंतज़ार बरसों तक रहता है और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो उम्र भर यादों में महकती रहती हैं। कभी किसी अजनबी से हुई मुलाकात ज़िंदगी बदल देती है तो कभी किसी अपनों से बरसों बाद मिलना सुकून दे देता है, वाकई में अच्छा लगता है। और कुछ मुलाकातें होती हैं जो हमें याद रहती हैं, उन्हें हम भूल ही नहीं पाते चाहे कुछ पलों के लिए ही हो, क्योंकि वो लोग छाप छोड़ जाते हैं अपने दिलों पे। और अक्सर ऐसा सबके साथ ही होता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ आप 5-10 मिनट भी मिलते हैं, कभी मेट्रो में मिल गए, कभी ऑफिस में, हो सकता है वो कभी भी आपको ना मिले, परंतु वाकई में वो लोग याद रहते हैं, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो ऐसी ही मुलाकातों की बात करें तो बहुत सारी मुलाकातें याद आती हैं और लगता है कभी कभी तो किसी से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है फिर कब मुलाकात होगी। और ऐसी ही मुलाकात आपसे भी हमें बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम आपसे मिलते हैं, आपके मेल पढ़ते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, तो लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है ये मुलाकात भी। तो मुलाकात होती है आपके संदेशों के ज़रिए जिनसे हम जुड़ जाते हैं आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो बहुत से संदेश आ भी चुके हैं और बहुत सारे लगता है देना भी चाहते होंगे कि हाँ हम भी अपनी बात कह सकें। तो उसके लिए हम अपना ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, अपना मेल भेज सकते हैं इस पते पर। पता एक बार फिर दोहरा देते हैं, ipradiodelhi@gmail.com। तो इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का जो आप हमें भेजेंगे ईमेल के ज़रिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे गीत से। मतलब इस गीत की बहुत अच्छी फरमाइश आई है, उसके बाद और पूरे मैसेजेस लेते हैं।

0: पत कभी कभी।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे साथ

मतलब जोश होता है उसके साथ, हम मैसेजेस के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिल्कुल, और उनके मैसेजेस भी हम ज़रूर लेंगे जी हाँ। उनके साथ हमारी मुलाकात हो रही है, आज मुलाकात पे हमारी बातें हो रही है। आपको भी बता सकते हो कि आपको कैसा लगता है जब यूँ कहे कि किसी की याद आती है और दिल करता है कि उनसे मिलने का, आप कोशिश करते हैं या नहीं? आपको मतलब कहें कि बिज़ी हो जाते हो या सोचते हो कि चलो मिलेंगे कभी, छोड़ देते हो समय पर, तो ज़रूर हमें बता सकते हो। कुछ अच्छी सी मुलाकातें भी की किसी इंसान से आपकी हो रखी होगी जो वाकई में बहुत अच्छा हो, किसी भी सिलसिले में कभी कभी कोई कोई नेक इंसान भी मिल जाता है, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे मन को नहीं भाते, तो आप हमारे साथ दोनों ही बात शेयर कर सकते हो आप चाहें तो अपने मैसेज के जरिए। और अब ले लेते हैं मैसेज को भी, जो जो श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके संदेश हम बिल्कुल ले लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो ये संदेश हमें आया है वो आया है टेगोर गार्डन नई दिल्ली से, है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी। ये लिखते हैं, आपका हर पल खुशियों से भरा हो किसी भी गीत में शामिल कर ले तो दोस्त, खुशियाँ तो सभी के जीवन में आने चाहिए, आपके भी जीवन में आए और आपका मैसेज लिया गया है, ऐसी बात नहीं। और आपकी ही पसंद का कोई गीत, या बहुत सारे श्रोता है जो हमारे को अपनी पसंद के गीत सुनवाते के लिए कहते हैं, तो वाकई वो भी गीत बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर हम गीत चलाएंगे। और अगला संदेश ले लेते हैं, यह है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का, और इनके साथ है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर और पिंकी स्वर्णकर और आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकर। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है पहांता पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन का। और ये संदेश हमें आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। और हमारे साथ जुड़े हैं बुलढाणा वर्षिंगीर महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। और इनके साथ है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार जी। और अगला संदेश हमें आया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। और ये संदेश हमें आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी लक्ष्मी देवी, गोस्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। और इनकी जो पसंद है बहुत अच्छी से गीत की फरमाइश भी इन्होंने की है, बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके गीत को चलाने की। और अगला संदेश हम ले लेते हैं, वो संदेश हमें आया है, ये हमारे साथ जुड़े हैं नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजरत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और लिख रहे हैं कि हमें भी शामिल करें, तो दोस्त आप भी शामिल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये संदेश हमें आया है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से इनके साथ हैं जुनेद मुजाबर, सबिया मुजाबर, निखाइल मुजाबर, जनेब मुजाबर जी। और ये हमें संदेश आया है किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोडाने का। लिखते हैं कि दुनिया में सभी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो ठोकर लगने के बाद ही बनता है। बहुत अच्छी बात की दिया आपने दोस्त, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं, और जब हमें ठोकर लगती है तो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है, और कभी कभी हम दूसरे को भी ठोकर खाते देखते हैं तब भी हमें समझ आ जाती हैं कुछ बातें। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, ये लिख रहे हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा जी का संदेश। ये लिख रहे हैं कि डियर एंकर, आपको विनम्र निवेदन है कि तीन चार लिसनर्स एक दूसरे को के परिवार के अन्य सदस्यों का नाम बिगाड़ कर लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ तो इस बात की हो रही है कि वो फीमेल मेंबर्स का नाम भी बिगाड़ रहे हैं, उनका शहर गलत मलत लिख रहे हैं, तोड़ मड़ो कि मतलब इनको बहुत

अरे इस तरह से दिक्कत है, तो इन्होंने बताया भी है, तो दोस्त बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए ऐसा, और क्या कहते इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से मोल मानकर शुभाताई मानकर का, और इनके साथ है दीपाली और शलोक कुमार। इनके साथ बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से जुड़े हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार। और ये संदेश आया नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत बॉबी फिल्म का।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद। दोस्तों, मुलाकात की बातें हो रही थी, कुछ तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि कुछ मुलाकातें मौसम की तरह होती हैं, वो आती हैं ज़िंदगी में, रंग भर जाती है और फिर यादों की खुशबू छोड़ जाती है, लेकिन उन मुलाकातों की मिठास कभी कम नहीं होती, क्योंकि वाकई में बहुत ही प्यारी मुलाकातें जो होती हैं वो। तो चलिए अब आपसे मुलाकात कर लेते हैं और संदेश ले लेते हैं। ये जो संदेश अगला हमें आया है, ये आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। और अगला संदेश हमें आया है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस और बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आर एच वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और इनके साथ है कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। और ये संदेश हमें आया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का। और अगला संदेश हमें मिला है संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड 1 नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार सिंगनकर और अर्पिता जी का। और हमारे साथ जुड़े हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। और अगला जो संदेश है वो आया है गाजियाबाद से शिषपाल अकेला का। और हमारे साथ जुड़े हैं ख्याल बाजार वानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और ये संदेश हमें आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवास अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। ये लिखते हैं, तकलीफ तो हमें यह है कि आपको हमारा मेल

नजर नहीं आ रहा। तो दोस्त ऐसी बात हुई है क्या? नहीं ना, सबकी मेल हम लेने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है डाक की रोड अकोला से, है सुशीला देवी मंदूरकर और सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का। और हमारे साथ जुड़े हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। और ये हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता रघुवीर नगर से, हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू। और अगला संदेश हमें आया है इंदिरा नगर भंवरपुर से, है राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन जी का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। और ये अगला जो संदेश है ये आया है हमारा सुदर्शन जुड़े हैं हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी। ये लिखते हैं कि आदरणीय शोभा जी, सादर प्रणाम जी, आपको भी बहुत प्रणाम और नमस्कार। और ये लिखते हैं, लोग अक्सर सुंदर चेहरे भूल जाते हैं पर सुंदर बोल कभी नहीं भूलते। बहुत सही बात की, क्योंकि जो इंसान अच्छा ना लगे वो बोले ही अलग से, दिल को आपको ठेस पहुंचाए वो कहाँ से अच्छा लगेगा। अच्छी बात ही अच्छा, जो हम एक्शन रखते हैं उनके साथ व्यवहार रखते हैं वो ही याद रहता है। और इन्होंने लिखा है कि ये लिख रहे हैं कि ज़रूर आप हमारा मेल शामिल करेंगे, और बिल्कुल शामिल है और बोल रहे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे अनुरोध को ज़रूर पूरा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश रहेगी। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है उत्तर नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। और ये संदेश हमें आया है सप्तरंग श्रोता परिवार, कुमार गली, श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। और इनके साथ है पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राज भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से, हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप जी। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है पटेल नगर मलौत से, है डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू। और हम अगला संदेश शामिल करते हैं। ये आया है धनौरी तेलीवाल उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू का। लिखते हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो, तो दोस्त आपका भी बिल्कुल खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में हो, हर पल खुशियों से ही भरा हो। और अगला संदेश हम ले लेते हैं। ओ, ये संदेश आया है हमें ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, जिला मुरादाबाद से, है ये मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का। चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बहुत ही प्यारा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म थी स्वीकार किया मैंने। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। जी, आपकी पसंद के गीत हैं ही बहुत प्यारे। और आपके अब मैसेजेस ले लेते हैं। ये हमें जो संदेश आया है बड़िंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। अगला जो संदेश हमें आया है, यह आया है कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण हागोने और योगिता, और इनके साथ है कुमारी प्रियाली और पार्थ हागोने, और हागोने परिवार की ओर से ये संदेश। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

वाह क्या बात है, बरसात की फुहारे, प्यार की शरारत और किशोर कुमार तथा आशा भोसले की चुलबुली आवाज़ आज रपट जाए, हर बार चेहरे पर मुस्कान ले आती है। दोस्तों, मुलाकात तभी यादगार बनती है जब उसमें अपनापन, हंसी और दिल से निकले जज्बात शामिल हों। जिंदगी की भागदौड़ में अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि रिश्ते मुलाकातों से ही मजबूत होते हैं। कहते भी है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जी हाँ, हम मिलेंगे नहीं तो हम भूल भी जाएंगे, यूँ कह के भूले ना भी, पर एक तरह से यादें फीकी पड़ जाती हैं। और आप सुन रहे हैं बहुत ही प्यारा कार्यक्रम आपकी पसंद का, और आपके प्यारे प्यारे संदेश भी इसमें आ चुके हैं, तो और संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया है हमें संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी का, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर, पंजाब से। और हमारे साथ ये जुड़े हैं लुबई छत्तीसगढ़ से, हैं गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी, रानी माणिकपुरी जी। और ये हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, हमारे पुराने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, और ये लिख रहे हैं गोवर्धन विहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन जी का संदेश, और लिख रहे हैं कि हम सुन रहे हैं कार्यक्रम पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो दोस्त, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपके संदेश को भी शामिल किया गया है, और यही इनके बहुत संदेश हमें आ चुके हैं, और मतलब हमारा रेगुलर है हमारे श्रोता। और अगला जो संदेश है वो ले लेते हैं, ये आया है हमें गांव चौधरीवास से, मांगेराम सतौड़ सी का, ये लिख रहे हैं किसी भी गीत में शामिल कर लें। और अगला जो संदेश है वो हम ले लेते हैं, ये संदेश हमें आया है नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी का, सोहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी अनम अब्बासी, अशफ अब्बासी का, और एक इनके साथ है सिकंदरा राव से, मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन का। और अगला संदेश जो हमें आया है वो आया है ये हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, इनका संदेश हम ले लेते हैं, ये लिख रहे हैं, ये जुड़े हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, इनके साथ है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदान खुराना। ये लिखते हैं कि हमको जब भी कोई मिलने आता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन आजकल कुछ नकली दोस्ती सी रह गई है, जिससे हम बहुत चाहते थे, वो हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे हम भी उनको जानते ही नहीं, क्योंकि वो कुछ एटीट्यूड में रहने लगे हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि दोस्त दोस्त होता है, और दोस्ती में जो मतलब बात होती है वो कहीं रिश्तों में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ वहाँ हम खुल के अपनी बात को कह सकते हैं, कोई मतलब यूँ कहें कि ये नहीं रहता कि कोई हमें ये कहेगा वो कहेगा, सीधा हम अपनी बात कह सकते हैं। और दोस्त वाकई में बहुत अच्छे, कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट होता है, तो इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और नहीं होना चाहिए अलग। हाँ ठीक है, कुछ आप बिज़ी होते हो तो नहीं आप मिल पाते हो, पर फिर भी कभी कभी तो मुलाकात हो सकती है, एक छोटा सा संदेश भेज कर ही सही। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, तुलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

खानदान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सबकी पसंद पर मैं सुनवाया था। बहुत ही प्यारा गीत लगा, आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। और अब संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया है हमें मॉडल टाउन करनाल से है, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता जी। ये लिखते हैं कि हमारी मेल शामिल कर ले तो दोस्त, शामिल हुई आपकी मेल। ये हमारे साथ जुड़े हैं गंजनवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, नान खान और अनु खान। और वार्ड नंबर 5 जिला यवतमाल से हैं जयराम सिंह अनकर, हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राविया शेख, शेख रहीम मुन्ना जी का। और गुन्नौर से हमारे साथ जुड़े हैं अदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। और ये हमें संदेश आया है, ये लिख रहे हैं कि शुक्रिया कहना तो भूल गए थे आप, शुक्रिया शुक्रिया जी, ये मेल ईमेल शामिल ना करवाने के नाम, ये मेल ईमेल नाम शामिल करवाने के लिए नहीं भेजा है सर जी, सदा खुश रहो जी। सर ऐसी बात नहीं है, हमने नाम शामिल के लिए नहीं, आपके मेल को भी हमने लिया था, ऐसी बात नहीं है, और आपने शायद ध्यान नहीं दिया। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। अगला संदेश हमें आया है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदी जंगेल का, कोहका भिलाई से इनके साथ है। दमदमा ग्राम सुखरी कला से हमें जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल का ये मैसेज। और दोस्त अब वक्त हो चला है कि मैं आपसे लूँ इजाज़त, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे इजाज़त लेना बिल्कुल बनता है। तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, नमस्कार। और दोस्त कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही प्यारे गीत के साथ छोड़ी जा रही हूँ। जी हाँ, आज की मुलाकात बस इतनी। तो सुनते हैं ये गीत प्यारा सा, और मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये गीत, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सबरस, और अगली पेशकश है जगजीत सिंह की आवाज़ में, तो आइए सुनते हैं।

इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित राजीव वर्मा से सितार वादन, राग है जौनपुरी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंदिरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना पंडित राजीव वर्मा से सितार वादन, राग था जौनपुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovekush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Rama Shankar Mishra, Subhash Srivastava, and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT, headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant, submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second Pax Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. Home Minister Amit Shah has lauded the efforts of those who are engaged in the fight against drugs. On the International Day Against Drug Abuse, Mr. Shah said India has waged the strongest battle against the global challenge of drug abuse. In a social media post, he said narco cartels have been ruthlessly dismantled. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The Prime Minister last visited Seychelles in 2015. The External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. The Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. German Ambassador to India Philip Ackermann has said that India has emerged as a global leader in renewable energy. Talking to a news agency, Mr. Ackermann underscored the success of the Partnership for Green and Sustainable Development between India and Germany, highlighting robust cooperation across trade, political and strategic sectors. Addressing the long-awaited India-EU Free Trade Agreement, FTA, Ambassador Ackermann expressed optimism for a swift resolution. He said the FTA represents a huge game-changer that will significantly incentivize more investment in India from German businesses. In Venezuela, the death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making the destruction more severe. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. On Ashura-e-Muharram,

0: आंगन। साथियों, प्यार और सम्मान हम सभी चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब हम आदर देते हैं तो आदर के हकदार भी हो जाते हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने बहुत पहले कह दिया था कि आदर हूँ आदर मिले तियहि सम्मान ही मान, तुलसीदास प्रेम ते होत सब कल्याण। यानी आदर से आदर और उसी तरह सम्मान देने से मान सम्मान मिलता है, और इस तरह प्रेम के वशीभूत सभी का कल्याण होता है।
1: बिल्कुल, और आज के सुविचार के साथ आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर घर आंगन, और जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी मेरे साथ यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना के साथ। तो स्वीकार करें
0: मनीषा का भी प्यार भरा नमस्कार।
1: और जो आज का कार्यक्रम है ना मनीषा, देखो शुक्रवार है और हर शुक्रवार को हमारा घर आंगन कार्यक्रम समर्पित होता है बुजुर्गों को, जिसे हमने शीर्षक दिया है एक कदम बुजुर्गों की ओर। बहुत सी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का प्रश्न जो हम अपने श्रोताओं से हर एपिसोड में पूछते हैं वो ये है कि आपको अपने पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। अपने जवाब हमें ईमेल कीजिए fmgoldga@gmail.com पर।
0: जी हाँ दोस्तों, सम्मान की जब बात हुई है, पेरेंट्स की बात हुई है, तो हर माता पिता चाहते हैं कि उन्हें बच्चे सम्मान दें, उनकी बात माने, उनका कहना माने। और वैसे भी हर इंसान अपनी गरिमा चाहता है और चाहता है कि उसको सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। इसीलिए स्टेटस और पावर के इस दौर में भी देखा गया है कि जो लोग विनम्रता और सम्मान के साथ सभी से पेश आते हैं, उनकी सामाजिक स्वीकार्यता और सफलता का अनुपात दूसरों से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि सम्मान का निवेश मुनाफे के साथ ही वापस मिलता है ना।

0: चरित्रहीन इस फिल्म से आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे ये गीत।
1: बिल्कुल। और अब एक और जानकारी देखो, हर दिन अपने आप में कुछ ना कुछ खास बात समेटे होता है, और किसी ने कहा है कि शिक्षा ही वो साधन है जिससे समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। लेकिन ये महान विचार देने वाले जो नारी सशक्तिकरण के प्रतीक और महान समाज सुधारक छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, और उनकी जयंती है आज, तो हमारा उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। साथ ही शब्दों के माध्यम से राष्ट्र चेतना को नई दिशा देने वाले महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भी जयंती है, तो हम उन्हें भी शत शत नमन करते हैं। क्यों मनीषा?
0: बिल्कुल। और साथ ही कल्पना, चूंकि हमारा देश उत्सव धर्मिता को मानता है, बहुत सारे त्योहार होते हैं, आज एक विशेष दिन है और वो दिन है मुहर्रम का, जो इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये दिन हजरत इमाम हुसैन तथा उनके साथियों की कर्बला में हुई शहादत की याद में मनाया जाता है, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही एक विशेष दिन है यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर साल 26 जून को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में यातना के शिकार हुए लोगों और बचे हुए लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करना, उन्हें सम्मान देना तथा यातना के अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का समर्थन करता है।
0: साथ ही एक और दिन है कल्पना, और वो दिन है नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के सेवन और उनकी अवैध तस्करी के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना, नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित करना, युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशीली दवाइयां जो पदार्थ होते हैं उनके दुरुपयोग से उन्हें बचाने का एक सामूहिक प्रयास है, और यही ये संदेश है। तो दोस्तों, अगर नशा करना ही है तो वो नशा, वो जुनून होना चाहिए देशभक्ति का, संस्कारों का, अच्छे विचारों का, समाज सेवा का और प्यार का, भक्ति का।
2: जय जय शिव शंकर।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आपकी कसम से। और मनीषा देखो, हमने एक प्रश्न पूछा था अपने दोस्तों से कि भाई उनके माता पिता की सबसे अच्छी बात उन्हें क्या लगती है, तो हमारे पास कई सारे ईमेल आ गए हैं। तो पहला ईमेल मैं पढ़ देती हूँ। प्रदीप खंडेलवाल जी लिखते हैं कि जब मैं ऑफिस से थककर घर जाता हूँ, माँ के पास बैठता हूँ, वो मेरा सिर सहलाती हैं, तो वो मेरे जीवन का सबसे सुखमय पल होता है।
1: और एक और संदेश है नवीन भाटिया जी का, जो हमारे नियमित श्रोता है, और उन्होंने लिखा है कि अपने पेरेंट्स का जो पेशेंस है, यानी उनके जो सहन शक्ति है, हम पर उनका विश्वास, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये हैं मोती नगर नई दिल्ली से नवीन जी।
0: बिल्कुल। और देखो ना, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे माता पिता हमसे कभी नहीं कह पाते, लेकिन हम बच्चों को समझनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो एक छोटी सी कहानी बता रही थी मनीषा, क्या हम अपने श्रोताओं को वो कहानी क्यों ना सुनाएं?
1: बिल्कुल।
0: तो ये कहानी है आशीष की, जो अच्छी पढ़ाई करके विदेश में सेटल हो गया है, लेकिन उसने जो किस्सा बताया वो आपसे साझा करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, हम बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम बच्चे शायद कभी उस नज़रिए से सोच नहीं पाते अपने माता पिता के लिए।
1: तो कहानी आगे बढ़ाते हुए आपको बताती हूँ कि एक दोपहर आशीष के पास उसके पापा का मैसेज आता है दोस्तों, कि बेटा कुछ ज़रूरी बात करनी है। पलट कर आशीष उन्हें फोन करता है तो पापा बहुत धीमी सी दबी सी आवाज में कहते हैं, बेटा कुछ 5,000 रुपये की जरूरत थी। इस महीने घर की जरूरतों के अलावा दवाइयों का खर्च थोड़ा ज्यादा हो गया, पेंशन का पैसा थोड़ा कम पड़ गया। अगर हो सके तो एक मिनट की चुप्पी के बाद आशीष पापा हो जाएगा कहकर फोन रख देता है।
0: और उस पल आशीष ने अपने खर्चों पर नज़र डाली, जिसमें बहुत से गैर ज़रूरी खर्च थे। आशीष का दिल भर आया ये सोचकर कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि पापा को

0: से देने चाहिए, उन्हें भी ज़रूरत होगी, लेकिन वो कह नहीं पाए। बस हमेशा जो मैंने चाहा वो दिलाते रहे बिना किसी उम्मीद के। और उससे एक पल ने आशीष को बदल दिया और उसने तुरंत पापा को फ़ोन लगाया और कहा, पापा अब से हर महीने आपके अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। इस बार पापा ने भरे गले से ठीक है बेटा कहकर फ़ोन रख दिया।
1: दोस्तों ये किस्सा बस इसलिए ताकि आप सब भी समझ पाएं कि माता पिता अक्सर अपनी ज़रूरतें शब्दों में नहीं कहते, उन्हें बच्चों के प्यार, समय, सम्मान और संवेदनशीलता के साथ हमारे आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत होगी। और ये बात हमें खुद ही समझनी भी होगी कि उन्हें हमसे कब क्या चाहिए। जैसे बचपन में वो समझ जाया करते थे कि हमें कब क्या चाहिए।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे शोर फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने।
1: और साथियों, आपके लिए आज का जो प्रश्न है उसको फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए। अगर आपने अभी अपना रेडियो ट्यून किया है और आज का हमारा प्रश्न है कि आपको आपके माता पिता की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारा मेल आईडी fmgulji@gmail.com पर आपके संदेशों की प्रतीक्षा में हम हैं। और एक संदेश मेरे पास है, ये है राजेश्वर राव जी का, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर किया है। कहा है कि जब भी ये ड्राइविंग करते हैं उस दौरान ये हमारे रेडियो सेट पे बैठकर अपने कार के साथ एफएम गोल को ज़रूर ट्यून करते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है उस दौरान। ये बहुत ग्रेटफुल, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और ये सुरीला सफ़र वो साथ में हमारे साझा करते हैं। और हमारे बताए गए कार्यक्रम में जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है, ये सब कुछ उन्हें हमेशा बहुत अच्छी लगती है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माता पिता के साथ जो साथ होता है वो तो निश्चित रूप से संबंधों को मजबूत करने वाला वो एक अनुभव होता है, जहां हम वहीं से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मनीषा। और देखो, हमारे एक और श्रोता हैं, उन्होंने भी हमें ईमेल भेजा है, नवीन कुमार। उन्होंने थोड़ा शायराना सा लिखा है कुछ कि माता पिता की बातों में प्यार का खजाना है, उनके आशीर्वाद से रोशन हर जमाना है, उनकी सीख को जो दिल से अपनाता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ जाता है। क्या कहने नवीन कुमार जी, बहुत अच्छा आपने ये हमें ईमेल किया है।
1: और नवीन जी के मेल के साथ ही मुझे भी एक बात याद आ गई शायराना अंदाज में कि बस चंद लम्हों के लिए उन दरख्तों की छाँव में बैठ जाएं, सारे मसलों का काफूर होना फिर तय जानिए। जी हाँ, इन्हीं ख्यालों के साथ हम घर आंगन कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज है शुक्रवार और आज के इस खास दिन में हम बुजुर्गों के सवाल, बुजुर्गों के समाधान, बुजुर्गों के विचारों को यहाँ साझा करते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी पाती, कुछ ऐसे दिल की जज्बातों को सामने लाना चाहते हैं। और उपनिषद का एक श्लोक है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ, जो उनके लिए ही कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, यानी यदि हम अपने वृद्धों की सेवा और सम्मान करते हैं तो यश और बल की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है।
0: बिल्कुल। और जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, जिनकी शीतल छाया में परिवार की जड़ें मजबूती पाती हैं, उनके अनुभव भरे हाथ किसी पोषण की तरह परिवार को समृद्ध बनाते हैं और उनका मार्गदर्शन जीवन में वास्तविक संबल बनता है। क्यों मनीषा? तभी तो देखा होगा ना, जिन परिवारों में वृद्धजनों की छाया होती है वो परिवार समाज में सशक्त बदलाव की थाती भी बनते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और उम्र बढ़ना दोस्तों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए बुजुर्गों का सम्मान हमें खुद के सम्मान से भी जोड़ता है ना। लेकिन यही उम्र हमें अनुभव कराती जाती है, सिखलाती जाती है जिंदगी की रवायतों को। इसीलिए जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वहां तक हमें भी पहुंचना है एक दिन, क्या कहती हो?
0: हाँ, और क्या सही बात है, क्योंकि भाई देखो, तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, आज हैं लेकिन हर पल अतीत हो रहे हैं हम। तो सिखलाने वाले हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, तो क्यों ना इस बात का जश्न मनाएं।

0: देखो मनीषा, जो प्यार की राहें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब सबका चलने
1: अलबेली
0: का
1: होती है,
0: मन
1: बिल्कुल
0: करता है चलने का। और हमारे दोस्त भी देखो, हमारे श्रोता भी हमसे कितना प्यार
1: प्यार
0: करते
1: से
0: हैं।
1: जुड़े हुए हैं और लगातार संदेश बहुत सारे आ चुके हैं, और मुझे पता है कि तुम उन संदेशों के बारे में ही बात कर रही हो। तो ये पहला संदेश मेरे पास अभी जो आया है वो है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, और ये शांति नगर सोनीपत से लिख रही हैं। और इन्हें कार्यक्रम हमेशा की तरह ये सुनती हैं, अच्छा लग रहा है, तारीफ भी कर रही हैं, इसका तो शुक्रिया। लेकिन एक शिक्षा की बात वो कहती हैं कि शिक्षा तो कोई कहीं से भी ले सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार केवल अपने माता पिता और घर से ही मिलते हैं, इसलिए उनके साथ बिताया हुआ हर वक्त अनमोल होता है।
0: बिल्कुल। और देखो हमारे पास एक और ईमेल आ गया है राधा शुक्ला का, और उन्होंने लिखा है कि माँ बाप ही हैं दुनिया में जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बच्चों के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं होता। तो
1: बिल्कुल,
0: हमारे दोस्तों को फिर से बता दो हमारा प्रश्न क्या है और उन्हें उसका उत्तर कहाँ भेजना है।
1: हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आपको आपके माता पिता की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और आपको भेजना है अपना उत्तर fmgoldga@gmail.com पर।
0: बिल्कुल, तो भेजते रहिए अपने उत्तर। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक शेर सुनाना चाहती हूँ मनीषा,
1: इरशाद इरशाद।
0: कि फौलादी हो इरादे तो तूफान भी थम जाते हैं, जिनके मन में जुनून हो वो अक्सर इतिहास रच जाते हैं। ऐसा ही इतिहास रचा है लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग अम्मा पखीला लोकतेपी ने, जो असम की प्रसिद्ध कार्बी लोक गायिका हैं। उन्होंने कार्बी जनजाति के पारंपरिक लोकगीतों, संगीत और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: बिल्कुल, और दशकों से वे अपनी मधुर गायकी के माध्यम से दोस्तों कार्बी समाज की लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अनमोल काम कर रही हैं। अब तक वे 300 से अधिक गीत गा चुकी हैं।
0: और जानती हो मनीषा, वे सिर्फ गीत गाती ही नहीं है बल्कि कार्बी समाज के पारंपरिक गीतों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने, भूले बिसरे लोकगीतों को सजाने और अन्य लोगों को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम वो निरंतर कर रही हैं, और इसी योगदान के कारण उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है।
1: भाई क्या बात है। और इस पुरस्कार के साथ ही भारतीय लोक कला और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। यकीनन सुरों में, संगीत में और गायन में वो जादू है दोस्तों जो सबके दिलों को छू जाता है। तो चलिए हम भी सुनते हैं एक दिल को छूने वाला प्यारा सा गीत।

0: जिंदगी के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे लता और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अभिनेत्री से।
1: बिल्कुल। और देखो हमारे एक और श्रोता ने हमें ईमेल किया है, आशीष गिरी जी लिखते हैं, नमस्कार, मैं आपका कार्यक्रम हमेशा सुनता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी की सदैव एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं जो कुछ भी मांगता था वो कभी मना नहीं करते थे, परंतु जेब खर्च जब भी मांगता तो सदैव जितना मांगता था उससे कम देते, बोलते GST काट लिया है। वो सदैव खुद से मेहनत करके मुकाम हासिल करने की सलाह देते थे, बोलते थे मेरे पिता ने तो मेरे लिए साइकिल तक नहीं खरीदी तो मैं तुम्हें बाइक क्यों दूँ, खुद से मेहनत करो और खरीदो। देखो क्या संदेश, मतलब पिता के अनुशासन में भी बच्चे को आगे जीवन में जैसे मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देने की बात, वो जो है वो
0: एक अप्रत्यक्ष जो सीख होती थी, जो शिक्षा होती थी, वो माता पिता के द्वारा ही हमें हमेशा मिलती रही है। और आज भी हमारे माता पिता जब हमें कुछ बातों के लिए टोकते हैं, रोकते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही होती है।
1: बिल्कुल सही।
0: और देखिए एक और संदेश है अक्षिता गोयल का, और इन्होंने कहा है माता पिता वो छांव हैं जो धूप में सुकून देते हैं, उनकी हर बात जीवन को जीवन में नई सीख बनती है, उनका प्यार कभी कम नहीं होता, उनके बिना दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। कितनी खूबसूरत बात कही है ना?
1: बहुत अच्छी बात कही है। और आज हमारा जो कार्यक्रम है वो भी हमारे बुजुर्गों को समर्पित है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृद्धावस्था। वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कई बार बिना कोई लापरवाही के भी स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे में दो ऐसे प्राकृतिक उपाय हैं मनीषा, जिन्हें अपना कर बुजुर्ग खुद को पुनः स्वस्थ बना सकते हैं।
0: और वो उपाय है दोस्तों विश्राम और उपवास, जो किसी प्राकृतिक औषधि के समान ही फायदेमंद है।
1: बिल्कुल। और देखो दोस्तों, पर्याप्त विश्राम शरीर और मन को शांति देता है, साथ ही नई ऊर्जा देकर तन मन को पुनः सक्रिय होने का अवसर देता है। जबकि संतुलित एवं विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार किया गया उपवास पाचन तंत्र को आराम देकर शरीर की कार्य क्षमता बनाए रखने में भी सहायक होता है।
0: कल्पना, और भागती दौड़ती सी ये जिंदगी जो है ना, इसमें ये जो बात है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि थोड़ा सा भी जब हम थका हुआ महसूस करते हैं तो हम असहज हो जाते हैं, तो इसलिए विश्राम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब भी हमारे शरीर में दोस्तों भारीपन हम महसूस करें तो याद रखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उपवास रखना है। याद रखें कि प्राकृतिक तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। और जब आपका तन स्वस्थ है, मन प्रसन्न होता है, तो उसकी चमक आपके चेहरे में खुद ब खुद दिखाई देने लग जाती है।

0: दोस्तों, फिल्म कभी कभी से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर की आवाज में ये गीत। मनीषा, देखो हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें मेल कर रहे हैं। जब मैं इनके ईमेल्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कितने दिल से लिख रहे हैं ना। देखो, भूमिका शुक्ला जी ने लिखा है हमें कि मेरे मम्मी पापा हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं और हम लोगों की हर इच्छा वो पूरी करते हैं। जो भी उनकी पहुंच तक होती है वो सारी विश पूरी करते हैं।
1: ये होता भी है, बहुत भावुक सा संदेश है। और हमारे एक नियमित श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा आशीर्वाद देते हुए वो अपनी पाती हमें लिखते हैं, गौरी शंकर वर्मा जी। इन्होंने लिखा है कि आप दोनों बेटियों को राम राम। और माता पिता के लिए उन्होंने कहा है कि गुरु माता पिता होते हैं, वो हमेशा अच्छी ही शिक्षा देते हैं और परेशानियां सहने का रास्ता भी वही बताते हैं। अगर बच्चे बड़ों की शिक्षा को ग्रहण करें तो पूरी जिंदगी सफलता में गुजरती है। और आपके कार्यक्रम को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी प्रेरक बातें हमें बताती हैं।
0: बिल्कुल, तो हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो भी हमें अपने विचार ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com। और हमारा जो प्रश्न है वो है कि भाई, आपके पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? अब मनीषा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ, क्या बता रही
1: है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ, चूंकि हमने पेरेंट्स की बात की और आज शुक्रवार है, एक कदम बुजुर्गों की ओर हम समर्पित करते हैं आज के दिन। तो आज एक कहानी है मेरे पास दोस्तों, इरादों और हौसलों से भरी एक और दास्तान। आज उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। उनका नाम है प्रभावती नानी। अहमदाबाद की 98 वर्षीय ये नानी है जो अपनी पारंपरिक पाक कला और वर्षों के अनुभव को एक सफल फूड बिजनेस में बदल चुकी हैं और

0: एक अच्छी उद्यमी बन चुकी हैं।
1: वाह, और देखो ना मनीषा, जिस उम्र में लोग आराम की बात करते हैं उस उम्र में वे पारंपरिक स्वाद परोसने के हुनर को अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पूरे नई पीढ़ी को परोस रही हैं। यानी कि प्रेरणा जो है वो हर उम्र में सक्रिय और सशक्त रहने की वो दे रही हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि भारतीय घरों की विरासत और पारंपरिक रसोई की कला भी उद्यमिता का मजबूत आधार बन रही है दोस्तों।
1: बिल्कुल, और आज देश में महिला उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अनेक पहल चल रही है, और ऐसे प्रेरक उदाहरण समाज में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को ऊर्जा देते हैं।
0: और प्रभावती नानी की कहानी यही बतलाती है कि अगर हौसले जवान हो तो उम्र कभी भी सपनों की सीमा नहीं बन सकती।

0: साथियों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे हैं साजन फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और चूंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमें लेना होगा आपसे विदा, तो जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को तरक्की की ओर आगे ज़रूर बढ़ाएँ।
1: बिल्कुल, और इसी खूबसूरत सी सोच, खूबसूरत से विचार और अच्छी सलाह के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो से की कल्पना को
0: और मनीषा बोस को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से।

जी हाँ दोस्तों, आज ये प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आप तो जानती हैं, इस प्रोग्राम में आपके लिए चुन चुन कर कुछ ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जो हमेशा से सदाबहार रही हैं। तो आज भी 1972 की एक फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं। इस गाने को सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि वो फिल्म कौन सी है। और जब आप अंदाज़ा लगा लेंगे तो करना क्या है आपको पता है ना? जी हाँ, मेल के ज़रिए अपने जवाब पहुंचा दीजिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com।

इस सदाबहार गीत को सुनने के बाद तो आपने अंदाजा लगा ही लिया कि आज हम आपके लिए फिल्म कौन सी लेकर आए हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम में हम हिंदी सिनेमा की कुछ ऐसी ही फिल्में चुनकर लाते हैं जो हंसाती भी हैं, रुलाती भी हैं और ज़िंदगी का मतलब भी समझाती हैं। 1972 में बनी इस फिल्म की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक एहसास है, पिता का प्यार है, टूटते सपने और उम्मीद की रोशनी सब कुछ समेटे हुए है आज की ये फिल्म। नाम शोर। अंदाज़ा आपका बिल्कुल सही है, ढेर सारे जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। 1974 में रिलीज फिल्म शोर, जिसके निर्माता और निर्देशक थे मनोज कुमार। मुख्य भूमिका में नजर आए मनोज कुमार, जया बहादुरी और नंदा। 22 सितंबर 1972 को रिलीज फिल्म शोर, जिसके गीत संगीत ने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध आज भी किया हुआ है। ये जादू था, जानते हैं ना? जी हाँ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतों को अपनी आवाज़ के जादू से निखारा लता मंगेशकर, मुकेश मन्नाडे, महेंद्र कपूर और श्यामा चितर ने। और भी बहुत सारी बातें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे और आपके संदेशों को भी शामिल करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि फिल्म शोर मनोज कुमार की सबसे संवेदनशील फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें शोर शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं, इंसान के अंदर के दर्द, उलझन और संघर्ष का प्रतीक है। फिल्म ने उस दौर में सामाजिक मुद्दों को बेहद सधे हुए तरीके से दिखाया। फिल्म शोर के बाद मनोज कुमार की छवि संवेदनशील अभिनेता और निर्देशक के रूप में और भी मजबूत हो गई थी। फिल्म का नाम शोर कैसे पड़ा ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये गीत लता जी की आवाज़ में।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और लेकर आई हूँ 1972 की एक खूबसूरत सी फिल्म, नाम है शोर। पता है आपको कि ये आइडिया मनोज कुमार के दिमाग में कैसे आया था फिल्म शोर का नाम शोर रखने के लिए? आपको बताती हूँ। फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग जब पूरी हो गई थी तो मनोज कुमार दिल्ली में अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे थे। वहाँ उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि यहाँ कितनी शांति है, आसपास कोई शोर ही नहीं है। बस यहीं से मनोज कुमार के दिमाग में ये शब्द बैठ गया और उन्होंने इंसानी जिंदगी के शोर और कोलाहल पर फिल्म बनाने की छान ली। आप ही में से हमारे एक श्रोता ने एक बेहतरीन जानकारी हम तक पहुंचाई है। बबली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि फिल्म में मनोज कुमार ने शंकर के किरदार निभाया था। शंकर की पत्नी की भूमिका गीता, इसको निभाया था नंदा ने। जया भादुरी रात की रानी के रूप में दिखी थी, जो कि शंकर की शुभचिंतक और उनसे प्रेम करती हैं। शंकर की माँ की भूमिका निभाई थी कामिनी कौशल ने, और शंकर गीत इनके बेटे दीपक का किरदार निभाया था मास्टर सत्यजीत ने। इनके अलावा फिल्म में नजर आए प्रेमनाथ, मदनपुरी असरानी, मनोरमा, मीना टी, राज मेहरा, नाना पाटीकर, सैफाली, नाना पालसीकर, सैफाली और वी गोपाल। मास्टर सत्यजीत ने दीपक के किरदार को इतने अच्छे तरीके से निभाया कि उनकी एक्टिंग इतनी सच्ची थी कि लोग सच में भावुक हो गए थे। वहीं मनोज कुमार साहब ने शंकर के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि लगता है जैसे कोई फिल्म में हीरो नहीं, हमारे आसपास का ही इंसान है। नंदा जी भी पीछे कैसे रहती, उन्होंने गीता के रूप में ममता और सादगी का अद्भुत रंग भरा। इस फिल्म में एक आश्चर्यजनक बात ये थी कि मनोज कुमार का नाम इस फिल्म में शंकर था, जबकि हमेशा उनका नाम भारत होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस फिल्म का वो गीत जिस गीत का आपको भी इंतज़ार होगा और मुझे भी प्ले करने का बहुत से बेसब्री से इंतज़ार है, वो सुनवाती हूँ। उसके बाद बाकी की ढेर सारी बातें।

जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। फिल्म की असली ताकत इसका संगीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनें और संतोष आनंद के बोल। फिल्म का गीत एक प्यार का नगमा है। ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये गाना सिर्फ गीत नहीं, जिंदगी का दर्शन है और भारतीय सिनेमा के सबसे अमर गीतों में से ये एक है। इसके अलावा बाकी के गीत भी ऐसी हैं जिन्हें बार बार सुनने का दिल करता है। फिल्म शोर को दर्शकों और समीक्षकों की ने खूब सराहा। फिल्म के संगीत ने कई पुरस्कार जीते। 20वें फिल्मफेयर पुरस्कार में मनोज कुमार को सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार मिला था और इस फिल्म को तमिल में ओसाई नाम से रीमेक भी किया गया था। फिल्म की कहानी शंकर यानी कि मनोज कुमार की इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो देते हैं। इसके बाद उनका बेटा दीपक अपनी आवाज़ खो देता है। पिता का अपने बेटे की आवाज़ फिर से सुनने के लिए संघर्ष ही फिल्म का मुख्य भाव है। फिल्म का अंत बहुत भावुक है, जो दर्शकों की आंखें भर देता है। बेटा सर्जरी के बाद अपनी आवाज़ पा लेता है, लेकिन पिता फैक्ट्री में दुर्घटना के कारण सुनने की शक्ति खो देते हैं और अंत में बेटा बोल सकता है मगर पिता सुन नहीं सकता है। ये वो फिल्म थी जिसमें जिसने भी काम किया सबको उसने अमर कर दिया। गुड्डी फिल्म देखने के बाद रात की रानी का जो किरदार जया भादुड़ी को दिया था, वो मनोज कुमार ने इसी फिल्म को देखने के बाद इनको दिया था। और आपको बता दें कि शूटिंग के दौरान अमिताभ जी अक्सर सेट पे आया करते थे, क्योंकि उस वक्त अमिताभ जी के पास इतना काम नहीं था, वो स्ट्रगल कर रहे थे। और यहीं से जया जी और अमिताभ के बीच की नज़दीकी प्रेम कहानी के रूप में बदलना शुरू हो गई थी। खान बादशाह यानी कि पठान का जो यादगार किरदार है इस फिल्म में, वो पहले मनोज कुमार साहब की जो पहली पसंद थी वो शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन उनके पास डेट्स की कमी के कारण उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। इसके बाद मनोज कुमार ने प्राण साहब से संपर्क किया, लेकिन प्राण साहब जंजीर फिल्म में शेर खान के नाम से पठान का ही किरदार कर रहे थे, तो दोनों फिल्मों में वो पठान का किरदार नहीं करना चाहते थे। इसीलिए ये रोल आखिर में प्रेमनाथ साहब को मिला, जिन्होंने इसे अमर बना दिया। मनोज कुमार

को बॉलीवुड में भारत कुमार के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि उनकी हर फिल्म में उनके किरदार का नाम भारत होता है। लेकिन शोर इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने किरदार का नाम शंकर रखा, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: समय की कमी के कारण आपके जो संदेश हैं उनको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में नाम लेकर ही मैं शामिल कर रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। जामिया गाजीपुर यूपी से सुरेश उर्मिला दीपक जी हमारे साथ हैं, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख हल्ला बेगम राबिया है, और आर्यन आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज जी अपने साथियों के साथ हैं, स्वर्ण सिंह गिल ठाकुरवाला गाँव से हैं, सनादस से शेख मूसा मोहसिन हमारे साथ हैं, और अगला जो संदेश है प्रकाश वर्मा जी का छत्तीसगढ़ पलारी से है, सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन उषा मोहन जी हैं, और गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद जी हैं, शेख मूसा मोहसिन जी का संदेश है डीवी राना नेहरू बयार दिल्ली से हैं, सतीश अनेजा बिमला चंडीगढ़ से हैं, संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल हैं। अगला संदेश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा जी का है, और भूषण खेरा जी हमारे साथ हैं, दिनेश वर्मा जी हैं, हरिजिंदर शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निसार अली हमारे साथ हैं, कमल शेवे हमारे साथ हैं, और फागुन राम यादव हमारे साथ हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी जी अपने परिवार के साथ ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, नलवेश्वर नगर से पीएस नवानकर जी परिवार के साथ हैं, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं, कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान जी हमारे साथ हैं, संजय निंगिया नमन जी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, सुरेंद्र खुराना जी मुल्तान नगर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इंदिरा नगर भावरपुर से राधेश्याम देवानगंज जी हमारे साथ हैं, स्वर्ण सिंह गिल लोहारगढ़ ठाकुरवाला से हैं, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ हमारे साथ हैं, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा हिंदुस्तान रेडियो मित्र टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं, और राजकुमार डूडी जी गांव फरासी जिला हिसार से हैं, जॉन रिकेस्टो जनकपुरी सहारनपुर से हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का, पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन जी हैं, और पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का संदेश है। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और अगर किसी के नाम रह गए हो तो हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वक्त की कमी है, और आपके जो प्यार भरे संदेश पहुँचे हैं जो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं उनको हम लेना चाहते हैं, लेकिन वक्त हमें अनुमति नहीं दे रहा। फिलहाल अब मुझे आपसे अनुमति लेनी है, लेकिन 3 बजे भूलिएगा नहीं प्रोग्राम रहेगा मैटिनी मेलोडी, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है।

0: ਦਿੱਤੀ। मीडिया नाल गलबात करदिआं श्री हिलबर्ग ने कहा कि अमरीका भारत नाल अपनी भाईवाली नूं होर डूंघा करन लई उत्साहित है। उन्होंने दवल्ले संबंधां नूं 21वीं सदी दे सब तों अहम मुद्दिआं विचों इक दस्सिआ। उन्होंने कहा कि भारत नाल दवल्ले वटांदरे दे मुख मुद्दिआं ते चर्चा कीती गई, जिस विच क्वाड ते ट्रस्ट पहलकदमी शामिल है। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनालोजी मंत्रालय दे सकत्तर एस कृष्णन अते भारतीय सनत दे नुमाइंदिआं ने सम्मेलन विच भारत दी नुमाइंदगी कीती। भारतीय वफद ने सनती आगुआं नाल सैमी कंडक्टरां, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अते लचकीलियां तकनालोजी सप्लाई लड़ियां विच सहयोग वधाउण बारे चर्चा कीती। अज देश दे वख-वख हिस्सिआं विच आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा ते संजीदगी नाल मनाया जा रहा है। ए दिन पैगम्बर मुहम्मद दे नवासे हज़रत इमाम हुसैन दी शहादत नूं दर्शाउंदा है। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला विच सच्चाई, धर्म ते न्याय नूं कायम रखण लई अपनी जान वार दित्तियां। इस मौके ताजिया जलूस कड्डे जा रहे ने। दिल्ली विच जामा मस्जिद, निजामुद्दीन ओखला ते मरौली समेत वख-वख थावां ते मुहर्रम दे जलूस कड्डे जा रहे ने। करबला दे शहीदां दी सर्वोच्च कुरबानी नूं उजागर करन वालियां मजलिसां जां धार्मिक सभावां वी करवाईयां जा रहियां ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस मौके कहा कि मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन वल्लों दित्ती गई कुरबानी, हिम्मत ते हमदर्दी, सच्चाई ते न्याय प्रति दृढ़ वचनबद्धता दीआं कदरां कीमतां दी याद दवांदा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि यह पवित्र मौका लोगों नूं समाज विच सद्भावना, शांति ते आपसी सत्कार दे बंधन नूं मजबूत करन लई प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशुराए मुहर्रम मौके अज हज़रत इमाम हुसैन वल्लों दित्तियां गईयां कुरबानियां नूं याद कीता। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन बहुत सारे लोगों नूं सच्चाई ते न्याय की प्राप्ति विच दृढ़ रहण लई प्रेरित करदे ने। श्री मोदी ने जोर देके कहा कि यह हिम्मत ते दृढ़ता की ताकत की याद दवांदा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे के दान नाल जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद मुलजमान को गिरफ्तार किया है। यह एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों से गठित विशेष जांच टीम एसआईटी की सिफारिश तो बाद श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाने विच दर्ज की गई सी। शिकायत ट्रस्ट के मैंबर कृष्ण मोहन ने दर्ज करवाई सी। विशेष जांच टीम ने मंगलवार को अपनी मुढ़ली रिपोर्ट सरकार को सौंप दी सी, जिस तों बाद कल केस दर्ज किया गया। ट्रस्ट की बेनती से मुख्यमंत्री ने मामले की जांच लई एक विशेष जांच टीम का गठन किया सी। खेडां विच भारत ते आयरलैंड विचकार दो 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज बेलफास्ट विखे खेडिया जाएगा। ए मैच शाम 6 बजे शुरू होएगा। भारतीय टीम दी कप्तानी श्रेयस अय्यर करनगे। टीम विच 15 साला बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल ने। मर्दा दी हॉकी विच भारत अज शाम लंडन दे ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर विखे अपने आखिरी एफआईएच प्रो लीग मैच विच रवायती विरोधी पाकिस्तान खिलाफ मैदान च उतरेगा। ए मैच रात 10:30 बजे शुरू होना है। दोवें टीमां इस हफ्ते दे शुरू विच आमो सामने होईयां सन, जिस विच भारत ने लंडन पड़ा दे पहले मैच विच 4-3 नाल रोमांचक जित दर्ज कीती सी। आखिर च खास खबरां। गृहमंत्री अमित शाह ने अज नवी दिल्ली च नारको तालमेल केन्द्र की 10वीं सिखर पदरी मीटिंग की प्रधानगी की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना साडी सारिआं दी जिम्मेवारी है। भारत ने औरतों के एससीओ फोरम विखे औरतों की अगवाई वाले विकास प्रति वचनबद्धता की पुष्टि की। दूजे पैक सिलिका सम्मेलन विच भारत ने 34 होर देशों के नाल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टैक्नोलॉजिया नूं मजबूत बनाउण लई अमरीका की अगवाई वाली पहलकदमी ते दस्तखत कीते। अज देश दे वख-वख हिस्सिआं विच आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा ते संजीदगी नाल मनाया जा रहा है। मर्दां दी हॉकी विच भारत अज शाम अपने आखिरी एफआईएच प्रो लीग मैच विच रवायती विरोधी पाकिस्तान खिलाफ मैदान च उतरेगा। इस दे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर दाखला अमित शाह ने नशीली अशिया की रोकथाम के लिए एक मुत्तहदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की इस लानत से कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरा लाहिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर अतीये में खुरद बुरद के केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक मुस्तहकम एआई सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की क्यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। मर्दों के क्रिकेट में आज शाम बेलफास्ट में

0: टी20 बैन अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इस मैच में सभी की नजरें पहली बार के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर हैं। और फीफा आलमी कप में ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने पैराग्वे के खिलाफ खेले गए मैच में कोई गोल न करते हुए ये मैच बराबरी पर खत्म हो गया। खबरें तफसील से। वजीर दाखला अमित शाह ने नशीली मादों की रोकथाम के मकसद से एक मुत्तहिदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीले मादों की यह लानत कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, माशी मफादात और नौजवानों नीज मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा ख़तरा है। उन्होंने रूहानी पेशवाओं, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा है कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए एक वाहिद प्लेटफार्म पर यकजा हों। जनाब शाह ने यह राजधानी नई दिल्ली में नॉर्को ताउन मरकज NCORD की आला सतह की 10वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कही।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: सेहत की मरकजी वजारत ने एक नोटिफिकेशन का मसौदा जारी किया है जिसमें नशीली दवाओं के जाब्तों में तरमीमात तजवीज़ की गई हैं। इन जाब्तों के तहत दरामदशुदा दवाओं पर इन्हें कम से कम 12 महीने तक रखने की मुद्दत लिखी होनी चाहिए। मसौदे में नशीली दवाओं से मुतालिक 1945 के जाब्तों में से 31वें जाब्ते में तरमीम के लिए कहा गया है। वजारत ने बताया कि इस मुजवजा तब्दीली का मकसद मरीजों के लिए क्वालिटी वाली दवाओं की लगातार दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए दवाओं की सप्लाई चेन में बेहतरी लाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जाँच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। लखनऊ के डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरख्वास्त की थी जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। भारत ने एक भरोसेमंद और मुस्तहकम सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की कायद वाली तहरीक के लिए एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद मसनूई ज़हानत AI पर मबनी टेक्नोलॉजीज़ को मजीद ताकतवर बनाना है। यह दस्तखत कल वाशिंगटन में दूसरी पैक सिलिका समिट के दौरान 34 मुल्कों के साथ किए गए हैं। इक्तसादी उमूर से वाबस्ता अमरीका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकोब हेलबर्ग ने बताया कि अमरीका भारत के साथ अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को 21वीं सदी का एक सबसे नतीजा खेज माहदा बताते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड और ट्रस्ट पहल समेत कई फोरमों में भारत और अमरीका के दरमियान कलीदी शोबे में तबादला ख्याल किया गया है। भारत की तरफ से समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी S. Krishnan और भारतीय सनत के नुमाइंदों ने शिरकत की। भारतीय वफ्द ने सेमीकंडक्टर्स, मसनूई जहानत और मजबूत टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में इश्तराक को आगे बढ़ाने से मुतालिक सनती रहनुमाओं के साथ मुजाकरात भी किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस महाना रेडियो प्रोग्राम का ये 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ AIR मोबाइल ऐप से नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO, इतलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों से भी नशर किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्रामों को इसके हिंदी नशरिए के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उन्हें रोशनी बिखेरने वाली एक ऐसी अदबी कदावर शख्सियत करार दिया है जिनकी तहरीरों से भारत की कई नस्लों को वतन परस्ती का जज्बा और सकाफती फख्र हासिल होता है। इस साल की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की तहरीक आज़ादी के लिए मुल्क को वंदे मातरम का अतिया किया जो सबसे ज्यादा जिंदा व पाइंदा रहने वाला तहरीक का एक जरिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज

राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी जिंदगी में महरूम पसमानदा तबकों और इस्तेशाल शुदा लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने कहा कि उनके अजीम नजरियात आने वाले दिनों में कौम की रहनुमाई करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के ख्वातीन के फोरम 2026 में ख्वातीन की क़यादत वाले तहरीक के अपने अज़्म को दोहराया है। आज एक वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नापूर्णा देवी ने जोर देकर कहा कि ख्वातीन महज तरक्की के फायदे हासिल करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो 2047 तक विकसित भारत की ताकतवर तरीन महारिक भी हैं। भारत में जर्मनी के सफीर फिलिप अकरमान ने कहा है कि भारत काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए जनाब अकरमान ने तजारत, सियासत और कलीदी शोबे में ज़बरदस्त ताउन को उजागर करते हुए भारत और जर्मनी के दरमियान माहौल के लिए साजगार और पायदार तरक्की में शराकतदारी की कामयाबी को उजागर किया। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़ियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस का भी अहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्ण ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जिससे शुजात हमदर्दी और हक व इंसाफ के तई पाबंदी की इकदार को तहरीक मिलती है। आशूरा मुहर्रम के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इससे हमें हिम्मत और यकीन के पायदार क़ुव्वत की याद दहानी भी होती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज यौम आशूरा मुहर्रम के मौके पर ट्रैफिक के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं। सेंट्रल रेंज के ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर निशांत गुप्ता ने बताया है कि इस इलाके में ट्रैफिक के बंदोबस्त और लोगों की हिफाजत की यकीन दहानी के लिए तकरीबन 150 अफराद पर मुश्तमिल पुलिस अमला तैनात किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नेताजी सुभाष मार्ग से आने वाली गाड़ियों को जामे मस्जिद की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक का रुख नेताजी सुभाष मार्ग से दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और मुहर्रम का जुलूस बिला रुकावट आगे जा सके। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अलाक़वी मुकाबले में भारत मेज़बान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज़ भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे सैन फ्रांसिस्को बे स्टेडियम में ग्रुप डी के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में पहुँच गया है, हालांकि उसका पैराग्वे के खिलाफ मैच हार जीत के बगैर ख़त्म हो गया। आखिर में खास खबरें एक बार और। वजीर दाखिला अमित शाह ने नशीली अशिया की रोकथाम के लिए एक मुत्तहदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की इस लानत से कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा लाहिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर अतीये में खुरद बुरद के केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक मुस्तहकम याई सप्लाई चेन बनाने के लिए अमरीका की क़यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आशूरा मुहर्रम के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल हैं।

0: सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद्र स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है हमारा एक ही कलाकार, और कलाकारों में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे कानों को नहीं बल्कि सीधे छूती हैं हमारी रूह को। और जब बात हो एक ऐसी

विरासत की जिसके साये में पूरा हिंदुस्तान गुनगुनाए, तो दिल अपने आप उस फनकार को सलाम करता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम एक ऐसी ही शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सदी के महानायक मुकेश जी की विरासत को संभाले है। और उन्होंने इस विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि अपनी खूबसूरत और मखमली आवाज़ से 80 और 90 के दशक में हर दिल पर राज भी किया। तो चलिए दोस्तों, आज उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ही पल्लुओं को, ऐसे ही पन्नों को पलटेंगे और सुनेंगे उनके गाए वो गीत जो आज भी हमारे दिल के किसी कोने में हैं और हमारी यादों का हिस्सा हैं।

जी दोस्तों, आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं गायक मुकेश के विरासत को संभाले उनके पुत्र नितिन मुकेश के बारे में, जिनका जन्म 27 जून 1950 को हुआ। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि संगीत उनके लिए कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो तो उनकी सांसों में बसा था, उनके खून में बहता था। और दोस्तों, लेकिन आप एक बात नहीं जानते होंगे शायद, कि इतने महान पिता का बेटा होना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और अपने आप में उनके साथ एक कश्मकश होती थी, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हें कंपेयर करती थी उनके पिता से, और हमेशा उनकी आवाज़ में उन्होंने ढूंढा उसी दर्द और उसी गहराई को। लेकिन उसके इतर नितिन जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये भी बात सच है कि नितिन मुकेश जो हैं वो बनना नहीं चाहते थे कोई भी गायक। उनके मन में शुरू से था कि वो एक डायरेक्टर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने शुरुआत में काम भी किया एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल अलग लग रहा है ना, बिल्कुल अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है, क्योंकि उन्होंने फिल्म निर्देशन करने का ही फैसला किया था, और उनके पिता उनके साथ थे इस चीज़ में। और कुछ वक्त तक मलय चक्रवर्ती के साथ में उन्होंने एक असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। और गायक के रूप में अगर हम बात करें तो उनका सबसे पहला ब्रेक था 1970 में आई फिल्म माय लव से, जिसमें उन्होंने बैकग्राउंड वोकल्स दिए थे। और उसके बाद 1975 में आई फिल्म सन्यासी। जी हाँ, सन्यासी फिल्म आई जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ एक छोटा सा हिस्सा गाया था, लेकिन असल मायने में जो उनकी, हम कहें कि फिल्मी सफ़र की जो शुरुआत हुई वो एक बहुत ही अजीब तरीके से हुई। दरअसल 1976 में एक कॉन्सर्ट के दौरान मुकेश जी की तबीयत जो थी वो थोड़ा सा नासाज हो गई, और उस वक्त वहाँ पर स्टेज पर लता जी के कहने पर नितिन जी पहली बार स्टेज पर आए, और उन्होंने वहाँ पर गाना गाया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी हाँ दोस्तों, ये गाना उन्होंने वहाँ पर गाया, लेकिन इस गीत के बाद में किसी को भी ये नहीं मालूम था कि मुकेश जी का ये आखिरी दौरा होगा, और नितिन जी के करियर की ये एक नई शुरुआत थी।

दोस्तों, नितिन मुकेश जी जो हैं वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थे। और वैसे अभी जो आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और नितिन जी की ये थपकियां देती हुई आवाज़ जो सुनी, वाकई सन्नाटे को भी खूबसूरत बना देती है। नितिन मुकेश जी ने खय्याम, आर डी बर्मन साहब, बप्पी लहरी, राजेश रोशन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, शशि कपूर जैसे सितारों को अपनी आवाज़ दी। चाहे फिल्म राम लखन का वो गीत हो जिसमें कि जोश से भरा हुआ भरी हुई उनकी आवाज़ है, या फिर खून भरी मांग का वो धीमा और संजीदा सा गीत। तो लीजिए सुनते हैं वही संजीदा सा गीत, खूबसूरत सा गीत नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म खून भरी मांग से।

जी दोस्तों, नितिन मुकेश जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ा एक किस्सा ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नितिन मुकेश जब तकरीबन 17 साल के थे तो उन्होंने छिप छिप कर सिगरेट पीना शुरू किया था, लेकिन जब मुकेश जी को ये बात पता चली तो उन्होंने नितिन को डांटने या मारने की बजाय एक अनोखा तरीका अपनाया उनकी सिगरेट को छुड़ाने का। उन्होंने ढेर सारे विदेशी सिगरेट के पैकेट और एक लाइटर नितिन के सामने रख दिया और कहा कि भाई अगर पीना ही है तो मेरे सामने पियो, छिप कर क्यों पीना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर गायक बनना है तो सिगरेट तुम्हारे लिए जहर है। और पिता की ये बात, इस बात ने, उन शब्दों ने नितिन जी पर एक ऐसा असर किया कि उन्होंने उसी वक्त हमेशा के लिए सिगरेट से तौबा कर ली और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स छोड़कर संगीत की दुनिया में आए। वैसे मुकेश जी चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लें, ऊँची शिक्षा लें, और खुद, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो सब हासिल करें जो उन्हें नहीं मिल पाया था। हालांकि नितिन जी का मन पढ़ाई में नहीं लगा और वो भारत लौट आए और यहाँ पर आकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में ही अपना करियर बनाना चाहा। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जैसा हमने बताया कि कुछ हादसे ऐसे हुए कि उसके बाद वो सिंगिंग की दुनिया में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जो नाम कमाया उसको तो किसी नाम की या किसी पहचान की ज़रूरत ही नहीं है।

जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गरलार, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार के साथ। गाँव पजौनिया जला जालौन से हमारे साथ जुड़े हैं सतेंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंदसौलिया के साथ। सुरेश नारंग जी हमारे साथ जुड़े हैं सोनाली आशा नारंग के साथ सहारनपुर से। नाभा जिला पटियाला पंजाब से जुड़े हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। गांव रजौनी जिला महोबा बुलंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं उदय भान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल और परिवार के सभी सदस्य। अगला जो संदेश हमारे पास है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी के साथ। शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद मशरूर के साथ सहारनपुर से। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगला जो संदेश हम तक आया है उसको भेजने वाले हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता के साथ। समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी साथ शाहदरा दिल्ली से जुड़े हैं तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित और केशोरदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अगला संदेश जो है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और शशि भल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुन्नौर से आदिल कुमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाँव गिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन, मिरासी और अमीना बेगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी ने और ये जुड़े हैं हमारे साथ रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, नारायण इंगले।

शीश मुरहेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया ताहिरा हमारे साथ जुड़े हैं कस्बा गन्नौर यूपी से, संतोष कुमार सोनार, सनी मुन्ना, बंडू दादा रथ चौक बहादुरपुर, खानदेश महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पॉल और विलिस डिकैस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचा है फारूख अली खान जी ने, ये संदेश अगला हमारे पास आया है और इसको भेजने वाले हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहजी बोड़के हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमती नंदा, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदाड़े के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पाजी हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, कलानोर से जुड़े हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा के साथ, अपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद सैद अब्बासी, निगहत प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री रैले हमारे साथ जुड़े हैं, चिरमिरी कोरासिया कालरी से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर के साथ जुड़े हुए हैं, कबीर रेडियो श्रोता संघ टूनी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं, कुछ संदेश जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं और ये वापस एक बार फिर से जो संदेश है जॉन डिकैस्ट्रो जी का हम तक आया है। और दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हमने बात की नितिन मुकेश साहब के लिए और मैं यही कहूंगी कि ऐसी आवाज़ें, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और वो आवाज़ें हमेशा वो जगह बनाए रखती हैं। वैसे हम यही कहेंगे कि नितिन मुकेश जो हैं उन्होंने अपने पिता मुकेश की विरासत को ज़िंदा रखा और दुनिया भर में इन चीज़ों को कायम रखा। कल की यादें के नाम से उन्होंने कई कॉन्सर्ट भी किए, इसके अलावा उन्होंने कुछ भजन और एल्बम्स भी उन्होंने निकाली जो कि उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा चाव के साथ सुने जाते हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये आवाज़ यूँ ही हम सब यूँ ही गुनगुनाते रहें, सुनते रहें। और अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, छोड़े जाते एक छोटा सा खूबसूरत सा गीत, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

जी आ गए हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज लेकर। आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और इस प्रोग्राम में आपके लिए हम 60 के 50 के दशक के वो गीत लेकर आते हैं जो अपने ज़माने में भी वही मधुरता रखते थे जो आज रखते हैं। भारतीय सिनेमा का 50 और 60 का दशक फिल्मों का स्वर्णिम दौर माना जाता है। ये वो समय था जब पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं होता था बल्कि सादगी, मुस्कान, नज़ाकत और भावनाओं का जादू भी बिखेरता था। उस दौर की अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती के साथ साथ बेहतरीन अदाकारी और अमर गीतों के लिए आज भी याद की जाती हैं। तो चलिए आज उस दौर के कुछ

यादगार हीरोइंस और उनके ऊपर पिक्चराइज सदाबहार गीत इस प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजु पांडे। आप भी सफर में हम सफर बन सकते हैं हमेशा की तरह अपने मेल के जरिए, और आपको बताना है कि उस दौर की आपकी पसंदीदा हीरोइन का नाम क्या है। जल्दी से जवाब भेज दीजिए। फिलहाल अभी जो हमने पहला गाना लिया है वो पिक्चराइज किया गया है मधुबाला जी के ऊपर। भारतीय सिनेमा की वीनस कही जाने वाली मधुमाला जी की मुस्कान आज भी करोड़ों दिलों में बसती है। तो चलते हैं, सुनते हैं मुगले आजम का ये गीत।

सदाबहार गीत, जब प्यार किया तो डरना क्या। मधुबाला से अब हम निकल के पहुंचते हैं उस खूबसूरत से अदाकार के पास जिसकी आंखें बोलती थी। एक सादगी भरा चेहरा, ऐसा लगता था जैसे कि हम लोगों के बीच का ही वो चेहरा है। नूतन जी, सहज अभिनय और भावपूर्ण अभिव्यक्ति की एक मिसाल। तो चलिए, इन्हीं की फिल्म बंदनी से ये गीत हमने चुना है लता जी की आवाज़ में। आपके भी संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी हम बीच बीच में शामिल करेंगे इस गीत के बाद।

सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि कोई भी सॉन्ग आप अपनी पसंद का सुना दीजिए। जी, आप जो भी सॉन्ग सुन रहे हैं वो सब आप ही की पसंद में से चुनकर हम ले लेते हैं, क्योंकि आपके दिल की बात मन की बात हम समझने लगे हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष जी का। लिख रहे हैं कि एक गीत की फरमाइश आपने लिखी है, लेकिन बबलेश जी हम आपको बता दें कि ये मैटिनी मेलोडीज जिसमें हम कोशिश करते हैं कि 65 तक हम इसको खींच पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 50, 60, 65, 61, 62 की जो भी फिल्में हैं और उस टाइम जो हीरोइंस थीं उनमें से अगर आपकी कोई पसंदीदा हीरोइन है तो ज़रूर आप हमें लिख के भेजिएगा। अगला संदेश हमारे पास आया है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। ये लिखते हैं कि बेजंती माला हमारी मनपसंद हीरोइन थी और ये हीरोइन तो हमारी भी मनपसंद थी राजकुमार जी, और हमने इनका गाना भी चुनकर रखा है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको और इनके ऊपर जो पिक्चराइज गीत है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले जो गीत हमने लिया है वो फिल्म गाइड से लिया है, और गाइड फिल्म सुनने के बाद आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हीरोइन कौन है। वहीदा रहमान सादगी और शालीनता की प्रतीक। तो चलते हैं इन्हीं की खूबसूरत सुपरहिट फिल्म गाइड से इस गीत को सुनने के लिए।

और अब हम बात करते हैं बेहतरीन नृत्यांगना और दमदार अभिनेत्री, कौन जानते हैं आप, फिर भी हम नाम बता देते हैं, वैजयंती माला। जी हाँ, इनकी बहुत सारी फिल्में आई और हर फिल्म में इनकी नृत्य का एक अलग ही रंग नजर आया। उन्हीं फिल्मों से एक फिल्म हमने चुनी है, संगम। इस फिल्म का गीत जो इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था और काफ़ी हिट भी रहा था, उस गीत को आप सुनिए और थोड़ा सा झूम भी जाइए।

तो फिलहाल तो हमें आपके संदेश मिल रहे हैं और सुदर्शन मुखी अनिता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि हम कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति जी। उत्तम प्रस्तुति तो तब बन जाती है जबकि आपके संदेश हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। अगला संदेश जो है वो गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साविर हुसैन मिरासी और अमीना बेगम जी का आया हुआ है। आपने हमें ये लिख के नहीं भेजा कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन थी। खैर आपने, ओहो माफ़ कीजिएगा, गलती मेरी है, आपने लिखा है कि सुरैया पर फिल्माया कोई भी गीत सुनवा दीजिए। तो कोशिश जरूर रहेगी कि हम सुरैया जी का गीत आप तक पहुंचा दें। अजीत भापसर जी हमारे साथ हैं वीरन गांव गुजरात से और लिख रहे हैं कि मैटिनी मेलोडीज़ में मुझे गीत अच्छे लग रहे हैं, 50 और 60 का फिल्म संगीत सुनने को मिलता है। फिल्म CID से हो सके तो गीत चला दें, लेके पहला पहला प्यार। जी बिल्कुल कोशिश करेंगे आपकी पसंद भी हम पूरी कर पाएँ। शीशपाल वर्धन जी हमारे साथ हैं, ये गाज़ियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुरेश राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से, मोहम्मद सिद्दबासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी है, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाब का। फिलहाल हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी का। तो इन्हीं की फिल्म बहुत सारी थी, मुश्किल हो रहा था कि कौन सी फिल्म का हम गीत लें, लेकिन हमने चुना है फिल्म काजल का ये गीत जो इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था। आप भी सुनिए।

जुल्फ से हमें याद आया कि अपने समय की मशहूर हेयर स्टाइल और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हीरोइन साधना जी, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए, अगला गीत जो हमने चुना है वो इन्हीं की फिल्म से चुना है और फिल्म का नाम है आरजू। सुनते हैं लता जी की आवाज में इस फिल्म से ये गीत।

तो दोस्तों ये थी 50 और 60 के दशक की वो सदाबहार अभिनेत्रियां जिन्होंने अपनी अदाकारी, खूबसूरती और यादगार गीतों से भारतीय सिनेमा को अमर बना दिया। आज भी जब ये गीत रेडियो पर गूंजते हैं तो बीते दौर की सुनहरी यादें ताज़ा होती हैं। इन सुरों और नगमों में सिर्फ संगीत ही नहीं है बल्कि एक पूरे युग की मासूमियत, प्रेम और भारतीय संस्कृति की खुशबू बसी हुई है। आरजू फिल्म का भी ये गीत आप सुन रहे थे और अगला गीत हमने लिया है लव इन टोक्यो से, जिससे जो इस खूबसूरत से गीत के साथ ही मैं आपसे अनुमति लेती हूँ। फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 3:30 और 20 सेकेंड। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का आदाब। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। सामईन, तारीख के औराक पलटे जाएं तो मालूम होता है कि जब कभी बातिल ने सर उभारने की कोशिश की है, हक परस्तों ने अपनी जान माल की कुर्बानी देकर हक का परचम बुलंद किया।

गया है। सन 61 हिजरी में जब इस्लाम के उफक पर फुस्क व फुजूर की घटाएं छा जाना चाहती थीं, उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जानिसारों ने, जिनमें उनके अजीज़ व अक्राबा भी शामिल थे, अपनी अजीम शहादत देकर बातिल को अंधेरों में गर्क कर दिया। बहुत से मसाइब व आलाम से गुजरना पड़ा, मगर पाया सब्र व इस्तक़लाल में ज़रा भी लग्ज़िश ना हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माल व दौलत, जज्बात व एहसासात और इज़्ज़त नफ्स की क़ुरबानियों के साथ साथ जानों की क़ुरबानियाँ पेश कीं। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला की तपते सहरा में वारिद हुए, और फिर यौम आशूरा आया, यानी 10 मुहर्रम का दिन। यह क़यामत से कम न था। इमाम मज़लूम ने अपने मुख्तसर लश्कर को, जो लाखों के सामने 72 नफूस पर मुश्तमिल था, सफारा किया। भांजों को शहीद होते देखा, भतीजे गए, अजीज व अहबाब ने अपनी जान निसार की। 18 बरस के जवान बेटे और 32 बरस के भाई ने जाम शहादत नोश किया, खुद शहादत उज़्मा पर फ़ाइज हुए और साबित कर दिया कि जहाँ कहीं भी हक़ व बातिल के दरमियान तकरार होगी, अलम हक हमेशा बुलंद रहेगा। इमाम मज़लूम की खिदमत में सलाम पेश कर रहे हैं मेहताब अहमद ख़ान और हमनवा।

0: मेहताब अहमद खां और हमनवा सलाम पेश कर रहे थे। सामईन हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत, उनकी अजीम क़ुरबानी, बच्चों के तप्त सहरा में भूख और प्यास के आलम में अलतश की आवाज़ों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके सब्र इस्तकामत को दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। सामईन, वाक़ए करबला तारीख़ इस्लाम का वो इंतहाई दिलसोज और अजीम वाक़या है जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों और रुफ़ाक़ा के साथ साथ उनके ख़ानदान के अफराद को मैदान करबला में मज़लूमाना शहीद कर दिया गया। ये मारका हक़ बातिल और उसूल परस्ती और जाबिराना निज़ाम के दरमियान एक अजीम टकराव था जिसने इस्लाम की हकीकी रूह को बचाने में अहम किरदार अदा किया। करबला का पैगाम, आइए इस मौजू पर सुनते हैं जनाब शरीफुल्लाह हसन नकवी की ये तकरीर।
1: कौन तसव्वुर कर सकता था कि करबला, जो अब से तकरीबन 1400 साल कबल एक सुनसान, बिहड़ और गैर आबाद इलाका था, एक दिन दुनिया के गोशे गोशे में अपने नाम की गूंज सुनेगा। ये मारका है हुसैन इब्ने अली और उनके 72 साथियों का, जिन्होंने हक व इंसाफ के लिए 3 दिन की भूख और प्यास में इस सरजमीन पर हंसते खेलते अपनी जानें कुर्बान कर दी। अभी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का कफन भी मैला न होने पाया था कि खिलाफत ने मलूकियत का जादा पहन लिया, खिदमत खल्ब के जज्बे को तख्त हुकूमत के हवस में तब्दील कर दिया, तकवे को शराबो शबाब की रंगरलियों में बदल दिया गया, दरसे रसूल की सरे आम धज्जियाँ उड़ाई जाने लगीं, यजीद जबरो जबरूत के बल पर अपनी तमाम अखलाकी पस्तियों और बदकारियों के बावजूद तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हो गया। उसको यकीन था कि इस्लाम के जानिसार उसको एक लम्हे के लिए भी इस हैसियत में पसंद नहीं करेंगे। उसे यह भी मालूम था कि रसूल के खानवादे का इस वक्त भी वो वक़ार था कि उसके एक इशारे पर यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत मुतजलजल हो जाएगी। वो खूब जानता था कि जब तक नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन उसकी बयत न कर लें, उसकी हुकूमत को पायदारी नसीब न होगी। हुकूमत के नशे से सरचार यजीद ने आखिरकार ये इज्तिहादी गलती कर ही ली। हुक्काम को हुक्म दिया कि या तो हुसैन की बयत हासिल करो या उनका सर पेश करो। हुसैन बयत तो क्या करते और उसके अम्माल को सर भी क्या पेश करते, बस उन्होंने अपने अज़्ज़ा अकरबा और सहाबा का खून करबला के रेगजार पर बहाकर नाना के दीन पर आने वाले धब्बे को हमेशा के लिए धो दिया। 10 मुहर्रम को हुसैन ने वो अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी नज़ीर तारीख आज तक पेश न कर सकी। असहाबे हुसैन ने बारी बाजी यजीद लश्कर को ललकारा, बेराह रवि से तकवे की तरफ आने की दावत दी और हंसी खुशी जंग करके अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अब बारी आई ख़ानदान बनी हाशिम की। 18 अज़्ज़ा में 6 माह का बच्चा अली असगर भी था, 18 साल का जवान बेटा अली अकबर भी था, 32 साल का वफादार भाई अब्बास भी था और 14 साल का भतीजा कासिम भी। इन शहजादों ने जो रजस पढ़े और ख़ुद हुसैन ने लश्कर कुफ्फार को जिस तरह खिताब किया उससे पत्थरों के दिल तो पिघल गए, मगर दौलत व सरबत के नशे में चूर लश्कर यजीदी में हुर के अलावा कोई ऐसा न था जो हक की आवाज़ पर लब्बैक कहता। क्या ये मायूसी की बात थी? क्या ये नाकामी की निशानदही थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। हुसैन और उनके रफ़का की ये हक़ व इंसाफ, अखलाक व तक़वा की आवाज़ आज भी 4 दांगे आलम में गूंज रही है। आज भी बने नोह इंसान को जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने पर आमादा कर रही है। आज भी इज़्ज़त नफ्स की खातिर बड़ी से बड़ी क़ुरबानी पेश करने का दर्स दे रही है। अगर हम हुसैन की सरजमीन करबला पर दी हुई इस क़ुरबानी के पीछे कार फरमा फ़लसफ़े फ़िक्र अमल का तजिया करें तो हमें ये पता चलेगा कि हुसैन कह रहे हैं कि पाक मकसद के हुसूल के लिए बड़ी से बड़ी क़ुरबानी छोटी है। हुसैन का मकसद खिलाफत का हुसूल न था, हुसैन का मकसद दौलत का हासिल करना न था। वो जाहो सरवत के भूखे न थे, उनका एक और महज एक मकसद था कि अपने नाना के दीन की हिफाजत करें। अगर मकसद की राह में उन्हें जान से हाथ धोना पड़े तो उन्हें मंजूर था। अपनी औलाद कुर्बान करने की ज़रूरत हो तो वो भी बखुशी उसके लिए राजी थे। अपनी बहनों को नंगे सर पाबा जोलां देखना पड़े तो उन्हें गवारा था, मगर इस्लाम पर एक मामूली सा धब्बा भी उन्हें काबिल कबूल न था। हुसैन की इस कुर्बानी का अजीम तरीन दर्स है कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। मौत यकीनन बरहक है, सबको आनी है, मगर मौत के लिए यूं तैयारी की जाए जैसे हुसैन ने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुसैन अपने साथियों के साथ करबला के मैदान में पहुंचते हैं, ज़मीन के मालिकान को बुलाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बनी असद से फरमाइश करते हैं कि बाद शहादत जुमला शहदा को दफन कर दें। इस सुकून, इस सब्र और इस अंदाज से मौत का इंतज़ाम कौन करता है? ये हुसैन का अज़्म था, ये हुसैन का जज्बा था, जिनके 14 साल भतीजे ने हुसैन के सवाल के जवाब में कहा था कि हमें मौत शहद से ज़्यादा शीरी मालूम होती है। है कोई दुनिया में ऐसा जो मौत का मज़ा बता सके? ये हुसैन के खानवादे का कारनामा था कि ये जानते हुए कि मौत उनके आकब में है, वो दीवानावार शहादत के जज्बे से सरचार आगे बढ़ रहे थे। शब आशूर हुसैन अपने असाब को जमा फरमा कर कहते हैं कि यजीद को महज उनके सर की ज़रूरत है, जिसे वो बखुशी पेश करने को तैयार हैं, लेकिन यजीद को हुसैन के साथियों से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम रात के इस अंधेरे में जिधर चाहो चले जाओ। ये कहकर हुसैन शमा गुल कर देते हैं। जब कुछ देर के बाद शमा फिर रोशन की जाती है तो मालूम होता है कि सब असहाब जूं के तूं मौजूद हैं। ये था इज्जत से मरने का जज्बा और जिल्लत से ज़िंदगी गुजारने के खिलाफ सोची समझी बगावत।

0: तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, घोड़ों तक को अपने पानी के जखीरे से सैराब करते हैं। हुसैन की ये लासानी कुर्बानी बबांगे दुहल ऐलान कर रही है कि ज़रूरतमंद की मदद करो, ख्वा वो दुश्मन ही क्यों न हो। इस्लाम ने उखुवत और यगानगी का दर्स दिया है। हुसैन को ये दर्स कितना अजीज था, इसकी एक नहीं बीसियों मिसालें करबला के मैदान में मिल जाती हैं। माँ की खादमा फिज़ा का कितना एहतराम था, यह ज़ैनब के अमल से वाज़े होता है, हुसैन के तरीक़े कार से मालूम होता है। हुसैन रुख्सत आखिर को खैमे में आते हैं, एक बोसीदा लिबास तलब करते हैं। जज्बा महज ये है कि बात कत्ल, शायद दौलत के लालची जालिम कातिल जिस्म पर यह बोसीदा लिबास छोड़ दें। इस अजीम जज्बे में कौन मुआविन होता है? फिज़ा। वो फिज़ा जो बीबी फातिमा जहरा के वक्त से आज तक ख़ानदान के एक फ़र्द की तरह हर दुख दर्द में शरीक थीं। हुसैन हर शहीद के लाशे को खैमे तक लाने के लिए मैदान जंग में जाते थे। उसमें न अपनों का ख्याल था न गैरों का। हुर का लाशा लाए, जुहैर इब्ने कैन का भी, और फिर अपने बेटे अली अकबर और अपने भाई अब्बास का। हर एक से वसीयत सुनने की ताकत हुसैन में थी। ये सब गम एक हुसैन की जान पर गुजरे, मगर हुसैन ने तफरीक का मामूली सा शायबा इन नामसाद हालात में भी अपने किरदार पर ना आने दिया। शायद करबला का सबसे अजीम और लाफानी दर्स यह है कि जालिम का जुल्म बर्दाश्त करना खुद उसके जुल्म में शरीक होने के मुतरादिफ है। इसलिए हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, हर जालिम के खिलाफ कौल और फेल से इजहार मलामत करो। जुल्म का शिकार खुद अपना हो या गैर, उसकी हमदर्दी करो, उसको तमानियत दो, उसको हत्तल वसा जुल्म से और जालिम के पंजों से निजात दिलाने की कोशिश करो। यजीद शाम में था और हुसैन मदीने में। यजीद की बर्बरियत के शिकार लोग सैकड़ों मील दूर थे, मगर जब ये खबरें हुसैन तक पहुंचती हैं तो उनके जज्ब-ए-अख़ुव्वत को सदमा पहुंचता है। हुसैन फौरन इस जुल्म और इस जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने को तैयार हो जाते हैं। हुसैन के खैरख्वाह जिनमें अकील इब्ने अली भी शामिल हैं उनको रोकते हैं, मगर हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि ऐसा जालिम और जाबिर तख्ते हुकूमत का नाजायज़ इस्तेमाल करे। हुसैन आवाज़ बुलंद करते हैं, वो आवाज़ जो आखिर में आवाज़ इस्तगासा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वो आवाज़ जो आज भी बुलंद है। सरे हुसैन की ये अजमत कि वो आखिरी वक्त तक बुलंद रहा, कभी सुरनगो ना हुआ। खुद लश्कर यजीदी ने भी बुलंद ही रखा। ये और बात है कि नेज़े पर बुलंद किया। इस सरे बुलंद को, हुसैन को, उसके जज्बे को सलाम, उसके लाफानी पैगाम को सलाम, उसकी अजीम कुर्बानी को लाखों सलाम।
1: करबला का पैगाम। अभी आप जनाब शरीफुल हसन नकवी की तकरीर सुन रहे थे। सामईन, करबला का मारका कोई तख्त व ताज के लिए जंग नहीं थी, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के दीन को बचाना चाहते थे, इंसानियत को बचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया और इंसानियत को बकायद आलम में सर बुलंद कर दिया। अब नौहा खानी कर रहे हैं जनाब चांद फैजी और उनके साथी।

करबला का वाकया हक व सदाकत, कुर्बानी और सब्र व इस्तकलाल का ऐसा पैगाम है जो तमाम इंसानों को फ़र्ज शनासी की हमेशा राह दिखाता रहेगा। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की मोहम्मद अली कमाल को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक UK इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

थाना नौचंदी जनपद मेरठ से अगली जानकारी। विलुप्त व्यक्ति का नाम काजल है, पुत्री शंकर। ये बस्ती डी ब्लॉक शास्त्री नगर थाना नौचंदी मेरठ की रहने वाली है। 21 वर्षीय महिला काजल, जिनकी कद 5 फुट 5 इंच, काले बाल, गोल चेहरा, नाक कान औसत और शरीर इकहरा है। इन्होंने पैरों में हवाई चप्पल, नीला लोअर और पीली जर्सी पहनी हुई है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आपके पास है तो आप संपर्क करें थाना नौचंदी जनपद मेरठ से। अगली जानकारी जो हमें मिली है वो थाना गंगानगर मेरठ से मिली है। गुमशुदा का नाम इसराइल पुत्र हमीद, निवासी उलदेपुर, थाना गंगानगर मेरठ है। इनकी आयु 60 वर्ष है और ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, चेहरा सामान्य और शरीर की बनावट भी सामान्य है। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, इन्होंने हल्की ग्रीन शर्ट और सफ़ेद पजामा पहना हुआ है। इनको आपने कहीं देखा है या इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आप रखते हैं तो आप संपर्क करें थाना प्रभारी निरीक्षक थाना गंगानगर मेरठ। अगली जो सूचना है वो थाना दोराला जनपद मेरठ से हम मिली है। गुमशुदा का नाम फारूक पुत्र नज़ीर, निवासी बलितपुर, थाना दोराला जनपद मेरठ। ये 47 वर्षीय पुरुष हैं, ऊंचाई 5 फुट 10 इंच, इनकी गहरी काली आंखें, रंग सांवला, सामान्य काले बाल, आंख नाक औसत, इकहरा बदन और काली दाढ़ी है। इन्होंने सफ़ेद कलर की टी शर्ट, बादामी कलर की पैंट और चप्पल पहनी हुई है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी सूचना से मिलने पर आप संपर्क करें ग्राम बलितपुर दोराला मेरठ। अगली जो सूचना है वो है, गुमशुदा का नाम है अंजलि, पुत्री यशपाल, जो सरूरपुर थाना मेरठ की रहने वाली हैं। ये 23 वर्षीय स्त्री हैं, शरीर की बनावट सामान्य है। इन्होंने सुनहरे रंग की कुर्ती और भूरे रंग की पजामी पहनी हुई है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आपके पास है तो आप संपर्क करें थाना सरूरपुर जनपद मेरठ से। तो ये थी जानकारी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। 4:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवावाणी।

0: नमस्कार साथियों, युववाणी के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शैलजा पुरोहित और मेरे साथ है मेरी वंडरफुल को होस्ट आंचल।
1: हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पेशल यूथ प्रोग्राम ऑफ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ। ऑनेस्टली शैलजा, फॉर सम रीजन आई कैन सेंस समथिंग फन दिस फ्राइडे, probably because we might talk about stuff that are deeply heart-touching.
0: Yes, Achal, because aaj hai fantastic Friday aur saath hi hone wala hai kaafi kuch dhamal, kyunki aaj baat hogi cinema, entertainment, art and music ki. Saath hi jhoomenge un songs ke beats par jo set karenge hamari aur aapki weekend vibes, hai na Achal?
1: Absolutely. And honestly, Shailja, I think music is the original time machine. No science required. 3 minutes and boom, you're back in school, at a college fest, or in your feelings on a random Tuesday wondering, what even happened? Today's show is basically a love letter to all of that. The songs, the stories, the voices, and the

0: films that live rent-free in our heads. And trust me, today's lineup, it's going to hit different, hai na Shailja?
1: Right, Anjul. Wo kehte hai na, music is an emotion that knows no boundary. तो आइए करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर का आगाज एक बहुत ही प्यारे से गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, कस्तो मजा फिल्म परिणीता से।

0: And just like that, the weekend has officially started in our hearts. We were just talking about this exact feeling, Shailja, isn't it? A song that just pulls you somewhere warm and doesn't let go. That's what today is all about, friends. And we have so much in store for you today. The timeless voice of Alka Yagnikji, a conversation around Imtiaz Ali's latest film, a fascinating OTT story, the unforgettable music of Asha Bhosle ji, two remarkable personalities from history, and of course, a dash of quick buzz as well. So stay tuned and stay with us right here on Yuvvani.
1: तो आचल शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट आज की बात से, जो है काफी खास, क्योंकि ये बात है एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज से कई सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, अलका याग्निक जी, जिन्हें हाल ही में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। कलकत्ता में जन्मी अलका जी ने महज 6 साल की उम्र में आकाशवाणी कलकत्ता के लिए गाना शुरू कर दिया। आंचल, आपको माधुरी दीक्षित जी पर फिल्माया उनका वो सॉन्ग तो याद होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
0: Yes, of course, उस बेहतरीन गाने को तो कौन नहीं जानता है शैलजा।
1: जी हाँ, 1988 में आई मूवी तेजाब में गाया उनका यह गीत, जिसके बाद बतौर प्लेबैक सिंगर उनके करियर को एक नया मुकाम हासिल हुआ।
0: Oh, absolutely. And I think every generation has that one Alka Yagnik song they secretly believe was written just for them. That's what makes her special, you know. For decades, her voice has been a part of road trips, weddings, heartbreaks, and everything in between. With over 20,000 recorded songs, she's one of the most celebrated playback singers in the world. And yet, what people remember isn't the number. It's the feeling. Whether it was joy, romance or heartbreak, Alka Yagnik always sounded like she meant every word she sang, isn't it Shailja?
1: Well said Anshul, Alka ji set her own trends. आप जानती हैं, लगभग 3 दशकों तक भारतीय सिनेमा जगत में जादुई सुर बिखेरने वाली अलका जी के नाम 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स और जाने कितने ही खिताब हैं। उदित नारायण और कुमार सानू जी के साथ जुगलबंदी में गाए उनके कितने ही गीत दिलों को झूमने पर आज भी मजबूर कर देते हैं। चाहे वो कुछ कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग हो या धड़कन मूवी के सुपरहिट सॉन्ग्स जैसे दिल ने ये कहा है दिल से, या परदेस मूवी की टाइमलेस मेलोडी जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ, उनके गीतों ने हर एहसास को खूबसूरती से सजाया है।
0: यू नो शैलजा, when we talk about legends, we usually talk about awards and achievements. But recently, Alka Yagnik ji opened up about her hearing loss. And that really stayed with me. Imagine dedicating your life to music and then facing something like that. It reminds us that even the voices we admire carry struggles we don't always see, which makes this Padma Bhushan feel even more special and very well deserved.
1: Very well said. तो दोस्तों, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शाम और नज़दीक आती जा रही है और साथ ही खत्म होने वाला है अपने डियर वंस के साथ वीकेंड प्लान्स का इंतज़ार। तो क्यों ना एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट किया जाए अपने उस इंतज़ार के नाम, अपने उस चांद के नाम। तो आइए सुनते हैं आनंद बख्शी जी का लिखा अलका याग्निक जी की आवाज़ में प्यारा सा गीत, गली में आज चांद निकला, फिल्म जख्म से।

0: बड़ी लॉस की कहानी है.
1: एंड दैट्स व्हाट मेक्स इम्तियाज अली सिनेमा सो स्पेशल. इट्स नेवर जस्ट प्लॉट, यू नो, इट्स ऑलवेज अबाउट अ पर्सन बिकमिंग. हिज कैरेक्टर्स आर फ्लॉड, रेस्टलेस, सर्चिंग, एंड सम हाउ वॉचिंग दैम मेक्स यू ब्रेवर अबाउट योर ओन रेस्टलेसनेस. मैं वापस आऊंगा फील्स लाइक अ प्रोमिस, बोथ फ्रॉम कैरेक्टर एंड इम्तियाज हिमसेल्फ टू हिज ऑडियंस. एंड लिसन, इफ द सॉन्ग मस्कारा हैजंट फाउंड यू ऑन योर रील्स येट, वेयर हैव यू बीन? It's everywhere, you know. Go listen to it. And for now, we are going to be listening to this song, which is Shano Shano from the movie Yuvraj.

0: एनर्जेटिक सॉन्ग। अच्छा आप जानते हैं ये जो डिजायर है ना कि हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ निभाने की, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। बट लाइफ एंड हिस्ट्री आर नॉट ऑलवेज सो काइंड। सो जब हम मैं वापस आऊँगा
1: कि कोर थीम यानी कि पार्टीशन की बात करते हैं तो समझ में आता है कि लकीरें खींचने से क्या क्या टूटता और पीछे छूट जाता है। आंचल इसी थीम ने मुझे कुछ लिखने पर मजबूर कर दिया जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। क्या लाहौर क्या दिल्ली लहू बहा जो एक था, क्या लाहौर क्या दिल्ली लहू बहा जो एक था, क्यों खींच लकीरें माटी बाटी इंकलाब तो एक था। लिए मशाले जिंदाबाद की रग रग में चिंगारी थी, आज़ादी पर धरा बटेगी क्या यह कीमत जानी थी। बटे हृदय और बटे बसेरे, बटे हृदय और बटे बसेरे, छलनी गोली से छाती थी, दिए जले कहीं घुप अंधेरे, सांसें थम थम जाती थी, सांसें थम थम जाती थी।
2: Shailja, that was a beautiful piece, I must tell you. In fact, what struck me most was how those lines don't just talk about partition, they talk about people too. The homes they left behind, the memories they carried, and the hope they somehow managed to hold on to. Thank you so much for sharing that.
1: Oh, thank you so much, Achal. I hope hamare listeners ko bhi pasand aayi ho.
2: I'm pretty sure about that.
1: Achal, I believe best direction wo hai jab aapko us scene mein director ki presence feel na ho. Aur best acting wo hai jahan kirdar ko aise jee liya jaye ki sab asal lagne lage. इम्तियाज अली की फिल्म मेकिंग की यही अप्रोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनकी ज्यादातर फिल्में हमें यही सिखाती हैं कि अगर आप बदल नहीं रहे तो आप ग्रो भी नहीं कर रहे। लाइफ में आगे बढ़ना एक टफ प्रोसेस है, लेकिन जब तक कुछ टूटेगा नहीं तो कुछ नया कैसे बनेगा। आपका क्या कहना है?
2: दैट्स अ वेरी पावरफुल थॉट शैलजा, बिकॉज ग्रोथ इज यूजुअली मेसी। नोबडी फिगर्स एवरीथिंग आउट ओवरनाइट। समटाइम्स यू टेक अ रॉन्ग टर्न, sometimes you change your mind, and sometimes you start all over again. And perhaps that's what Imtiaz Ali's stories reminds us. Getting lost isn't always a mistake. Sometimes it's part of finding where you're meant to be. And on that note, I'm going to be completely honest. The next song makes me go all dreamy every single time without fail. From the movie Paar, dear listeners, here's Shilpa Rao's voice for you.

0: दोस्तों, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और एक ऐसी ही आवाज़ हैं आशा जी। भारतीय संगीत की दिग्गज पार्श्व गायिका और सुर कोकिला आशा भोसले जी, जिन्होंने 8 दशकों से अधिक के अपने कैरियर में 20 अलग अलग भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए और अपनी बहुमुखी प्रतिभा और खनकती आवाज़ से पीढ़ियों के दिलों पर राज किया।
1: एंड ऑनेस्टली शैलजा, Asha ji is one of those artists who could surprise you no matter how many songs of hers you've heard. Born in 1933, she began singing at a very young age and went on to build one of the most remarkable careers in Indian music. The incredible thing about her voice is that it could be playful in one song, emotional in another, and completely energetic in the next one. From film songs and ghazals to pop, folk and devotional music, she seemed to enjoy every genre she touched. And listeners enjoyed every bit of it.
0: और सिर्फ म्यूजिक ही नहीं आचल, बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा जी को क्रिकेट बेहद पसंद था और 2007 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ यू आर द वन फॉर मी भी गाया था। दोस्तों, आर डी बर्मन के साथ इनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को नया अंदाज दिया। तो आइए सुनते हैं आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज में यह सदाबहार गीत, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जिसका संगीत दिया है आर डी बर्मन ने फिल्म यादों की बारात से।

0: Well, from musical legends to literary legends, since we are talking about remarkable people today, let's move to today's history. And Shelja, I want to begin with Bankim Chandra Chattopadhyay ji. Born on 26 June 1838, he's best remembered for giving us, obviously, Vande Mataram. But beyond that, he was one of the pioneers of modern Bengali literature. Through novels like Anandmat and Devi Chaudhrani, he helped shape a literary voice that continues to inspire readers even today.
1: आचल, do you know that Indian music की history Indian cinema से भी पहले की है और आज एक ऐसी ही शख्सियत का जन्मदिन है जिसे संगीत के इतिहास में ग्रामोफोन गर्ल के नाम से जाना जाता है. जी हाँ, गौहर जहाँ, भारत की पहली सेलिब्रिटी सिंगर जिन्होंने 1902 में ग्रामोफोन पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के इतिहास का पहला गाना राग जोगिया रिकॉर्ड किया था. आजकल आप जानती हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में सोने की कीमत 20 रुपए तोला थी तब वे गाने को रिकॉर्ड करने के लिए 3000 रुपए लिया करती थी. अपने करियर में उन्होंने 1902 से 1920 तक 10 से अधिक भाषाओं में 600 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए जिनमें बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, फारसी और फ्रेंच अंग्रेजी गाने भी शामिल थे.
0: And since today's history lesson is already including music and literature, let's add a cinema to it. On this day, 1925, Charlie Chaplin's The Gold Rush premiered. Now imagine making millions of people laugh without saying a single word. Ye to mera sapna hi reh jayega. One of the film's most famous scenes shows Chaplin cooking and eating his own shoe because he's hungry. And the best part? Out of all the films he made, this was the one he most wanted to be remembered for.
1: दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी है और हम इसका जिक्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि युववाणी एक युवा कार्यक्रम है और नशे से जुड़ी जागरूकता आज के युवाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है.
0: Absolutely, Shelja. And while we have spent today's program celebrating music, films, history, to remember this day, the message is simple. The choices we make today shape the life we live tomorrow. So look after yourself, check in on your friends, and never hesitate to ask for help when you need it. Sometimes a conversation can make a bigger difference than we realize. What do you think, Shelja?
1: Bilkul, Achal. जिंदगी अनमोल है और इसके हर पल की अपनी एक खूबसूरती है. इसलिए अपने सपनों का, अपने स्वास्थ्य का और अपने भविष्य का ख्याल रखिए. स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए.
0: With this, let's introduce to you another song, an amazing one, GRA from the movie जब तक है जान.

0: With this, let's move on to our last segment, that is Quick Buzz.
1: Okay, literature lovers, this one's for you. Jane Austen is back on the big screen. And honestly, she never really left. Focus Features has just released a trailer for Sense and Sensibility starring Daisy Edgar Jones. And it looks absolutely dreamy. Two sisters, two very different ideas of love. And the kind of slow burn romance that makes your heart do things. If you've ever stayed up finishing an Austen novel because you simply couldn't stop, this one's going to feel like coming home.
0: आजल, हम जानते हैं कि हमारे लिसनर्स बेहद टैलेंटेड हैं। आप में से कई लोगों को पेंटिंग और ड्राइंग का भी शौक होगा, तो आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MyGOV के साथ मिलकर लेकर आया है एक शानदार मौका अपने हुनर को निखारने और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने का। इंडिया 1947 वर्सेस इंडिया 2047 की थीम पर अपनी पेंटिंग्स बनाइए और जल्द से जल्द mygov.in पर लॉगिन कर अपनी प्रविष्टि भेजिए। ध्यान रहे, सबमिशन की लास्ट डेट है 15 जुलाई 2026 और हाँ, टॉप 3 विनर्स को ₹15,000 और टॉप 20 कॉन्टेस्टेंट्स को मिलेगी ₹5,000 की इनामी राशि। इतना ही नहीं, टॉप 200 पार्टिसिपेंट्स इस 15 अगस्त रेड फोर्ट से देख सकेंगे इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम लाइव। तो देर किस बात की, उठाइए अपने कलर्स एंड ब्रश और बन जाइए आज़ादी के इस खास जश्न का हिस्सा।
1: Okay, the next one is pure joy. PM Modi recently met our beloved Binod and Bhushan from Panchayat and greeted them with, Panchayat sunta hai ki nahi sunta hai? The internet absolutely lost it. And speaking of shows worth watching, if you haven't started Gram Chikitsalaya Season 2 yet, this weekend is your sign. Amol Parashar is back as Dr. Prabhat, trying to make a rural health center actually work. Against all odds, all paperwork, and honestly, or logic. It's warm, it's funny, it's the kind of show that makes you feel genuinely good without trying too hard. It chooses warmth over grit, and on a Friday evening, that feels just right. So get the snacks ready, find a corner of the couch, and let Dr. Prabhat do his thing.
0: Dosto, इस वीकेंड अगर OTT पर कुछ देखने का प्लान है तो नोट कर लीजिए। ऑस्कर विनर अवतार फायर एंड एश अब स्ट्रीमिंग पर आ गई है। जेम्स कैमरन

0: रॉन की इस फिल्म में आपके पसंदीदा जैक सुली और नेत्री एक बार फिर पैंडोरा पर वापस आ गए हैं और इस बार एडवेंचर और भी बड़ा है। फिल्म को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर मिल चुका है, साथ ही ऑस्कर आइसेक और गल गैडोट की इन द हैंड ऑफ डांटे एंड पंकज त्रिपाठी की परफेक्ट फैमिली भी अवेलेबल है। तो वीकेंड की ओटीटी लिस्ट तैयार।
1: All right, friends, with that, we come to an end of this segment. Thank you for spending your time with us. Let's just take care of ourselves and the people around us, shall we?
0: दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं शैलजा
1: और मैं आंचल,
0: बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। सोमवार फिर इसी समय मुलाकात होगी नए विषय और नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड लेट फ्राइडे डू इट्स ओन मैजिक।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय

0: जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today said that Nasha Mukt Bharat Abhiyan has become a mass movement driven by public participation. Mr. Modi said this while sharing an article of Minister of State for Social Justice and Empowerment, B.L. Verma, on the importance of building a drug-free India. In a social media post, the Prime Minister called upon every citizen to join the mission of building a drug-free India and a Viksit Bharat. In his article, Mr. Verma said that the government considers drug abuse a critical issue linked to the future of India's youth and the progress of the nation. The minister called upon every citizen of the country, especially the youth, to become a part of this national campaign against drug abuse. Home Minister Amit Shah has called for a united war against drugs, saying the drug menace threatens the national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. Mr. Shah made these remarks while addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: The UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, or SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second PAC Silica Summit in Washington yesterday. Speaking to media, US Under Secretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the United States is excited to deepen its partnership with India, describing the bilateral relationship as one of the most consequential of the 21st century. Union Education Power Dharmendra Pradhan today met Bhutan's Education Minister Yizhang Dithapa. In a social media post, Mr. Pradhan said that the discussions focused on training of teachers, skilling and employability, digital education and AI, sustainable tourism, traditional medicine and holistic well-being. The minister said there is immense potential for both the countries to collaborate on larger platforms of learning, innovation and capacity building. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Hazrat Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein. He said that Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today announced Operation Amistad, under which two Indian Air Force MCC C-17s took off today for Venezuela with urgent assistance to support post-earthquake relief efforts. Amistad means friendship in Spanish. In a social media post, the minister said the assistance contains an Indian Army field hospital unit and over 35 tons of relief supplies, medicines, medical equipment, including two Bhishma cubes. He stated that India is committed to supporting the government and people of Venezuela in this difficult time. Indian shooters topped the medals tally the ISSF Junior World Championship in Germany with 7 gold, finishing the campaign in style through outstanding performances in the pistol and rifle events. India finished with 24 medals, 7 gold, 8 silver and 9 bronze to top the standings, ahead of the individual neutral athletes who claimed 14 medals, including 6 gold, while Italy finished 3rd with 10 medals, also featuring 6 gold. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 5:10 हुए हैं और वक्त हुआ है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार। तो प्रियंका, आज हम अपने श्रोताओं को लोक संगीत पर आधारित बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोकगीत सुनवाने वाले हैं। तो पहले क्या सुनवा रहे हैं?
0: सबसे पहले कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कर्मपाल शर्मा और मंजू शर्मा की ये जुगलबंदी। और सचमुच जब घर में पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल होता है तो उस घर का माहौल जो है त्योहार की तरह हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं प्रियंका आप। और साथ ही में आपने चूंकि पति पत्नी का जिक्र किया है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके से दाल में थोड़ी सी नमक अगर ना हो ना तो दाल बेस्वाद हो जाती है, तो ठीक उसी तरीके से अगर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी सी हल्की सी प्यारी सी नोकझोंक होती है तो वो अब रिश्ते को और मजबूत करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने श्रोताओं का मनोरंजन कराते हैं, एक और लोकगीत सुनवाते हैं
0: बबीता चौधरी की आवाज़ में।

तो प्रियंका, अभी हमारे श्रोताओं ने सुना बबीता चौधरी के द्वारा जो है ये एक लोकगीत जिसके बोल थे मेरे हाथों के कंगनवा। और अब आगे बढ़ते हैं, अपने श्रोताओं को एक और लोकगीत सुनवाते हैं गोपाल सिंह बर्मन की आवाज़ में, जिसके बोल हैं सबसे सुंदर मेरा गांव।

गोपाल सिंह बर्मन के गाए हुए गीत को भी आप सुन रहे थे, और अब आपको सुनवाते हैं पुष्पा गुसाई की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई की आवाज़ में ये लोकगीत। इसके साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियां। और इस आज आधे घंटे के खेल सफर में मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी
3: प्रेरणा शर्मा। स्वागत करूंगी आप सभी का।
2: प्रेरणा और मैं आपको आज जिन जिन खेल गतिविधियों पर रूबरू कराएंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे
3: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की।
2: उसके बाद आपको लेके चलेंगे क्रिकेट के मैदान पर। उसके बाद हम बात करेंगे हॉकी की। इसके बाद प्रेरणा लेकर के आएंगी आपके लिए खबरें
3: 65th इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, एवीसी नेशंस कप, और साथ ही बात करेंगे यूएस ओपन बैडमिंटन की भी।
2: जी हाँ, तो अभी सबसे पहले जिस खेल गतिविधि पर प्रेरणा ने नजर डाली है वो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह हम क्रिकेट को एक रिलीजियस की तरह इंडिया में देखते हैं, वैसे ही जब फुटबॉल की बात आती है तो फुटबॉल का महाकुंभ होता है फीफा वर्ल्ड कप। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के साथ। चलते हैं अपनी सहयोगी प्रेरणा के पास।

चलिए आज के खेल खिलाड़ी की शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ई के उस मुकाबले से, जहां आइवरी कोस्ट ने इतिहास रचते हुए पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। अमेरिका के लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में खेले गए मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने क्वारसाओ को 2-0 से हराकर अपने विश्व कप अभियान को नई ऊंचाई दी। टीम को अगले दौर में पहुंचने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत थी, लेकिन उसने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। मैच के 7वें मिनट में यान डियोमांडे ने क्वारसाओ के डिफेंस की गलती का फायदा उठाते हुए गेंद छीनी और निकोलस पेपे को शानदार पास दिया। पेपे ने आसान फिनिश के साथ आइवरी कोस्ट को शुरुआती बढ़त दिला दी। क्वारसाओ ने भी हार नहीं मानी और पहले हाफ में कुछ अच्छे मौके बनाए। जूनिरहो बकुना के पास बराबरी का बेहतरीन अवसर था, लेकिन उनका प्रयास गोल में नहीं बदल सका। दूसरे हाफ में 65वें मिनट पर निकोलस पेपे ने अपना दूसरा गोल दागकर आइवरी कोस्ट की जीत लगभग तय कर दी। इस जीत के साथ आइवरी

0: बोस ने 6 अंकों के साथ ग्रुप ई में दूसरा स्थान हासिल किया और अपने इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश किया। अब 30 जून को उनका सामना फ्रांस या नॉर्वे में से किसी एक टीम से होगा। वहीं विश्व कप में पहली बार खेलने उतरी क्वारसाओ की टीम 1 अंक के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उधर ग्रुप ई के दूसरे मुकाबले में भी रोमांच अपने चरम पर रहा, जहां इक्वाडोर ने जर्मनी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ा उलटफेर कर दिया। आइए अब सुनते हैं उस मुकाबले का हाल।
1: Pascal Kroos, Dennis Ungar. This is everything to Ecuador. Today, they were required to beat the 4 times champions of the world.
0: मैच की शुरुआत जर्मनी के पक्ष में रही। दूसरे ही मिनट में लीरॉय साने ने गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी, लेकिन दबाव में आने के बजाय इक्वाडोर ने शानदार वापसी की। 9वें मिनट में निल्सन अंगुलो ने बराबरी का गोल कर मुकाबले को फिर से रोमांचक बना दिया। पहले हाफ के बाद स्कोर 1-1 रहा, लेकिन दूसरे हाफ में इक्वाडोर ने लगातार आक्रामक खेल जारी रखा। इसका इनाम मिला 77वें मिनट में, जब गोंजालो प्लाटा ने निर्णायक गोल दागकर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी, जिसे अंत तक बरकरार भी रखा गया। ये जीत इक्वाडोर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रही। पहले 2 मुकाबलों में आइवरी कोस्ट से हार और क्वारसाओ के खिलाफ ड्रॉ के बाद टीम के खाते में सिर्फ 1 अंक था और उसने 1 भी गोल नहीं किया था, लेकिन निर्णायक मुकाबले में 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने न सिर्फ टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया बल्कि नॉकआउट चरण का टिकट भी हासिल कर लिया। वहीं पहले ही अगले दौर में जगह बना चुकी जर्मनी को विश्व कप 2026 में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। और अब रुक करते हैं ग्रुप ए की ओर, जहां नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया पर शानदार जीत दर्ज कर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रुप ए के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्यूनीशिया को 3-1 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान के साथ नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। कंसास सिटी में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स हावी रहा। मैच के 3rd मिनट में ट्यूनीशिया के कप्तान एलिस शकीरी के आत्मघाती गोल से टीम को बढ़त मिली और 4 मिनट बाद ब्रायन बॉबे ने दूसरा गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में ट्यूनीशिया ने वापसी की कोशिश की और 54वें मिनट में हसीम मस्तौरी ने गोल कर अंतर कम कर दिया। हालांकि नीदरलैंड्स ने जल्द ही जवाब देते हुए 62वें मिनट में जो पॉल वॉन हेकी के गोल से बढ़त फिर 2 गोल कर दी। इसके बाद ट्यूनीशिया वापसी नहीं कर सका और मुकाबला 3-1 से नीदरलैंड्स के नाम रहा। इस जीत के साथ नीदरलैंड्स ने ग्रुप ए में पहला स्थान हासिल किया और अब राउंड ऑफ 32 में उसका सामना मोरक्को से होगा। वहीं ट्यूनीशिया का विश्व कप अभियान ग्रुप चरण में ही समाप्त हो गया। इसी ग्रुप के दूसरे मुकाबले की बात करें तो जापान और स्वीडन आमने सामने थे, जहां ड्रॉ के बावजूद दोनों टीमों ने अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया है। आइए जानते हैं उस मुकाबले का हाल।
2: And again, Anthony Elanga again. Parried away in Sugawara. That's a big touch for Japan from the right back. Oh, that was so close to that happening in the end. It's over as a draw. 1-1, the final score.
0: ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में जापान और स्वीडन के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और इस नतीजे के साथ दोनों टीमों ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। पहले हाफ में जापान ने कई मौके बनाए लेकिन उन्हें गोल में नहीं बदल सका। आखिरकार 56वें मिनट में डाइजन माइदा ने रित्सु डुएन और यासे उएदा की बेहतरीन मूव का फायदा उठाते हुए गोल कर जापान को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि जापान की ये बढ़त ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। महज 6 मिनट बाद एंथनी एलांगा ने स्वीडन के लिए बराबरी का गोल दाग दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने संतुलित खेल दिखाया और अंतिम सीटी तक स्कोर 1-1 ही रहा। ये परिणाम दोनों टीमों के लिए अगले दौर में पहुंचने के लिए पर्याप्त साबित हुआ। इस ड्रॉ के साथ जापान ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहा और अब राउंड ऑफ 32 में उसका सामना ब्राजील से होगा। वहीं स्वीडन भी नॉकआउट चरण में पहुंच गया और अब उसकी नजरें अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन पर रहेंगी। चलिए रुक करते हैं ग्रुप डी की ओर, जहां तुर्की और मेजबान अमेरिका के बीच 5 गोलों का बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया।
2: Free at the far post, and he

0: Out of an impossible situation there. Good cross. Chance for the winner for Turkey.
1: ग्रुप डी के मुकाबले में तुर्की ने आखिरी क्षणों में गोल दागते हुए अमेरिका को 3-2 से हराकर यादगार जीत दर्ज की। सोफाई स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत मेजबान अमेरिका ने शानदार अंदाज में की और तीसरे मिनट में ऑस्टिन ट्रिस्टी ने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला गोल कर टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन तुर्की ने जल्द वापसी की। आर्दा गुलर ने शानदार काउंटर अटैक पर बराबरी का गोल किया और फिर उनकी शानदार पहल पर और कुन कोकचू ने पहला हाफ खत्म होने से पहले तुर्की को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ के 49वें मिनट में सेबेस्टियन ने शानदार स्ट्राइक के साथ अमेरिका को 2-2 की बराबरी दिला दी। इसके बाद दोनों टीमों ने जीत के लिए लगातार प्रयास किया। अमेरिका के कप्तान क्रिश्चियन पुलिसिक की वापसी भी हुई, लेकिन तुर्की के गोलकीपर उगुरजन चाकिर ने बेहतरीन बचाव करते हुए उन्हें गोल करने से रोक दिया। जब मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी इंजरी टाइम में कान आईहान ने कान उज्जुन के क्रॉस पर विजय गोल दागकर तुर्की को 3-2 की रोमांचक जीत दिला दी। हालांकि ये जीत तुर्की को नॉकआउट में नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। वहीं अमेरिका ने पहले ही ग्रुप डी में शीर्ष स्थान के साथ अगले दौर में जगह पक्की कर ली थी और अब उसकी नजर राउंड ऑफ 32 के मुकाबले पर होगी। उधर ग्रुप डी के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे के बीच खेला गया गोल रहित ड्रॉ भी नॉकआउट की तस्वीर तय करने वाला साबित हुआ। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों ने सतर शुरुआत की और पूरे मैच में रक्षात्मक अनुशासन पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती दौर में गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा और जॉर्डन बॉस के लंबे शॉट से गोल करने की कोशिश की, जबकि पैराग्वे ने जवाबी हमलों के जरिए जूलियो एनसीसो और अपने विकल्प खिलाड़ियों के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि दोनों टीमों को कोई सफलता नहीं मिली। गोल रहित ड्रॉ के बावजूद ये नतीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम साबित हुआ। टीम ने ग्रुप डी में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली। अब ऑस्ट्रेलिया का सामना अगले दौर में ग्रुप जी की उपविजेता टीम से होगा, जहां अभी इजिप्ट, ईरान, बेल्जियम और न्यूजीलैंड के मुकाबलों के बाद तस्वीर साफ होगी। वहीं पैराग्वे ने 4 अंकों के साथ ग्रुप चरण का समापन किया है। अब उसकी नजर अन्य ग्रुपों के नतीजों पर रहेगी, क्योंकि टीम के नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीद सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों की सूची पर टिकी है। इसी के साथ फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण का रोमांच और भी बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों पर होंगी, जहां हर मैच में जीत एक अलग सफर का रास्ता तय करेगी। और एक नजर उन मुकाबलों की ओर जो आज देर रात और कल सुबह विश्व कप के ग्रुप चरण की तस्वीर पूरी तरह बदल सकते हैं। कई टीमों के लिए ग्रुप में शीर्ष स्थान दांव पर होगा, तो कुछ के लिए नॉकआउट की उम्मीदें बचाए रखने की आखिरी चुनौती होगी। सबसे पहले ग्रुप आई के सबसे बड़े मुकाबले की बात करते हैं, जहां नॉर्वे का सामना होगा फ्रांस से। दोनों टीमें पहले ही नॉकआउट चरण में जगह बना चुकी हैं, लेकिन इस मैच में ग्रुप में पहला स्थान दांव पर होगा। इसी ग्रुप में एक और मुकाबला सेनेगल और इराक के बीच खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के लिए जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। और बात करें ग्रुप एच की, तो विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे की टीम इतिहास रचने के बेहद करीब खड़ी है। स्पेन और उरुग्वे जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ लगातार ड्रॉ खेलने के बाद केप वर्डे का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है। अगर वह सऊदी अरेबिया को हरा देती है तो सीधे राउंड ऑफ 32 में पहुंच जाएगी। ग्रुप एच का ही दूसरा मुकाबला भी कम दिलचस्प नहीं होगा, जहां दो पूर्व विश्व चैंपियन स्पेन और उरुग्वे आमने सामने होंगे। अब नजर डालते हैं ग्रुप जी पर, जहां बेल्जियम और न्यूजीलैंड के बीच भी काफी कुछ दाव पर लगा होगा। लगातार 2 ड्रॉ खेलने के बाद बेल्जियम अभी तक अजेय जरूर है, लेकिन नॉकआउट में बिना किसी गणित के पहुंचने के लिए उसे हर हाल में जीत चाहिए। वहीं न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला अस्तित्व की लड़ाई है। कप्तान क्रिस वुड के नेतृत्व में टीम अपनी पहली जीत दर्ज कर नॉकआउट की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। और आखिर में बात ग्रुप जी के उस मुकाबले की, जहां इजिप्ट और ईरान पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने के सुनहरे मौके के साथ मैदान पे उतरेंगी। तो ये है आज देर रात और कल खेले जाने वाले फीफा विश्व कप 2026 के अहम मुकाबले। कौन बनेगा ग्रुप विजेता, किसका सपना नॉकआउट तक पहुंचेगा और किस टीम का सफर यहीं थमेगा, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इन रोमांचक मुकाबलों में।

0: तो फुटबॉल के रोमांच के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं अब हम यहाँ पर क्रिकेट के ग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो एक के बाद एक जो ट्रॉफी की तरफ है कदम बढ़ा रही हैं। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ भारत की 5 विकेट से जीत के बाद टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें थोड़ी सी मजबूत हो गई हैं। हालांकि इसके बावजूद भी सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ग्रुप ए में भारत के अब 6 अंक हो गए हैं और वो ग्रुप में नंबर 2 की पोजीशन पे है। ऑस्ट्रेलिया टीम 4 मैच जीतकर 8 अंकों के साथ सबसे ऊपर बनी हुई है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करके अभी अपने नेट रन रेट को सुधारा है और 6 अंकों के साथ भारत को टक्कर दे रही है। दक्षिण अफ्रीकी टीम ग्रुप में 3रे स्थान पर है। दोनों ही टीमों की जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच तक पहुंच गई है। दोनों ही टीमों का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 28 जून को होना है। ऑस्ट्रेलिया टीम पहले ही 8 अंक हासिल कर चुकी है और उसका नेट रन रेट 4 से ऊपर है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है और भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच जो है वो रविवार को लॉर्ड्स में खेलेगी। भारत को ग्रुप ए की टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है। अपना जो ये आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है वो थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया 6 बार के चैंपियन है और वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी। तो भारत को सेमीफाइनल की जो रास्ते हैं उसके लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहां पर है। सबसे अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में अब तक अपने सारे मैच जीते हैं और पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है, सभी मैच बड़े अंतर से भी जीते हैं, तो इसलिए भारतीय टीम के लिए मुकाबला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया था, फिर उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 9 विकेट से हासिल की थी जीत। ऑस्ट्रेलिया ने 3रे मैच में नीदरलैंड्स को हराया और इन 4 मैचों में ऑस्ट्रेलिया टीम ने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन खेल दिखाया। तो फिलहाल यहां पर अभी तो जिस तरह से टीम इंडिया ने ये मैच जीता है बांग्लादेश के साथ, देखना होगा कि कैसे अब टीम इंडिया आगे का रास्ता अपनाएगी। फिलहाल सुन लेते हैं राधा यादव को, क्या कहा उन्होंने अपने मैच के बाद, लीजिए सुनिए।
1: Yeah, I'm happy. Just after 1 year I was playing, so I was a bit nervous, can't deny it. First 3 balls I was nervous. After that I was like, okay, I was in the groove. So yeah, I was really happy and just wanted to execute those plans. And you know, for the Australia games, we just wanted to be ready and tick all those boxes, yeah.
0: तो ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलहाल टीम रेडी होने के लिए तैयार है, लेकिन देखना तो यही होगा कि कितना जो ये मुकाबला है यहाँ पर टीम इंडिया जब खेलेगी तो किस तरह का प्रदर्शन होगा। फिलहाल दूसरा मुकाबला जो खेला गया कल के दिन का, उसमें दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की। काउंटी ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में टीम से मिले 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 120 रन ही बना पाई। भारत की जो परेशानी है बढ़ गई है जैसा मैंने अभी बताया। तो अगर यहां पर दोनों ही बातें हैं कि किसका जो नेट रन रेट है वो अच्छा होगा, देखना यही होगा। फिलहाल अगर बात करें अब आने वाले मैचेस की, तो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका को ये मैच जो है वो जीतना पड़ेगा और इसके बाद ये मुकाबला मैनचेस्टर में भारतीय समय अनुसार 11 बजे से खेला जाएगा रात्रि। श्रीलंका ग्रुप बी में 4 मैचों में 4 अंकों के साथ 3रे स्थान पर मौजूद है। वहीं स्कॉटलैंड पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, उसके 4 मैचों में 1 जीत के साथ सिर्फ 2 अंक हैं। टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। टी20 इंटरनेशनल में दोनों ही टीमों के बीच 3 मैच खेले गए हैं, सभी 3 मुकाबलों में श्रीलंका ने जीत हासिल की है। स्कॉटलैंड को पहली जीत का इंतजार है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके अलावा विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें शनिवार को अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में आमने सामने होंगी। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में होने वाले इस मैच में दोनों टीमों की नजर टूर्नामेंट की पहली जीत पर होगी। दोनों ने अब तक 4-4 मैच खेले हैं और सभी मुकाबले गंवाए हैं। ऐसे में एक टीम जीत के साथ अभियान खत्म करेगी जबकि दूसरी टीम बिना एक भी मैच के घर लौटेगी। फिलहाल पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप खेलने आई नीदरलैंड की टीम जो है पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है और टीम को उम्मीद ये है कि कम से कम 2 मैच जीतकर अगले टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई करें। लेकिन ऐसा अभी देखना होगा कि किस तरह से जो आखिरी मैच है, क्या अच्छे यहाँ पर यादें लेकर के ये जो टीमें हैं वो वापस जाएंगी, तो ये अब से कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये मैच जो है होने ही वाले हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे मैच पर जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय क्रिकेट टीम यानी शुक्रवार यानी आज से बेलफास्ट में शुरू हो रही है दो मैचों की T20 सीरीज प्रेरणा, जहां पर हमारी टीम

0: क्योंकि बल्लेबाजी जो है वो यहाँ पहली बार सीनियर टीम में शामिल हो रहे हैं, और अगर यहाँ पर वो टीम में शामिल हो चुके हैं क्योंकि इंडिया जो है टॉस हो चुका है और इंडिया ने टॉस जीत लिया है और बॉलिंग जो है वो टीम इंडिया ने चूज की। अब से कुछ ही देर बाद जो ये मैच है वो शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर वैभव सूर्यवंशी जो है यहाँ से अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर जो है वो शुरू कर रहे हैं और सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। फिलहाल ये रिकॉर्ड जो है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है और उन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। और वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर के नाम था। उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 18 वर्ष और 80 दिन की उम्र में अपना पहला T20 मुकाबला जीता था। तो अभी तो फिलहाल सूर्यवंशी जो है उनका जो मैच है वो देखना होगा। हमने यहाँ पर बात की है अनिल चौधरी जी से, क्रिकेट एक्सपर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर है, क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं।
1: टाइम से हम लोग पीछे आईपीएल में सब लड़कों को देख रहे थे तो T20 मोड में है लड़के, बीच में हालांकि 3 ओडीआई उसमें सब लोग नहीं खेले हैं। मुझे लगता है दोबारा से सब लोग फ्रेश होके और देख रहे होंगे इस इंटरनेशनल सीरीज को, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनका अलग प्रेशर होता है और खासकर आप जब बाहर के किसी टूर पे होते हैं तो कंडीशन अलग होती है, वेदर अलग होता है, पिचेस डिफरेंट होती है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट।
0: इस मैच पे जो नजरें होंगी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, डेब्यू के लिए कुछ कहेंगे आप?
1: तो करेंगे डेब्यू, पूरा वर्ल्ड उनको बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा है और आई थिंक वो अपना नेचुरल खेल खेलेंगे। वो इस तरह का प्लेयर है, उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जिस तरह की इनिंग उसने खेली है आईपीएल में और बाकी अभी ए सीरीज में श्रीलंका में। आई थिंक वो हर बॉल को अलग तरह से लेता है, उसकी अलग ही ब्रेन है, बहुत ही शार्प है वो दिमाग से, भले ही छोटा है लेकिन बहुत खेल की जो उसका नॉलेज है ना, और जो बैटिंग की खास कर स्किल के अलावा उसका जो ब्रेन भी बहुत तेज है बैटिंग के लिए।
0: सबसे छोटे प्लेयर बन जाएंगे अभी अगर ये डेब्यू करते हैं, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट को एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना जो खेल रहा है उसके लिए तो है ही, साथ में पूरे वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि इंडिया का प्लेयर है तो सब लोग बिल्कुल कुछ लोग जेलस भी होंगे, इतनी जल्दी कैसे इतना बड़ा स्टार एक और आ गया। हमारे यहाँ हर 5-7 साल बाद एक प्लेयर आता है जो पूरे वर्ल्ड पे राज करता है और मुझे लग रहा है उसकी अगली कड़ी है।
0: तो क्या कहेंगे इस T20 श्रृंखला के लिए?
1: नहीं, इंडिया डोमिनेट करेगी और ओपनर हमारी जबरदस्त है और ये लड़का अगर 6-7 ओवर भी खेल गया तो 6-7 ओवर में मैच का बंटा धार कर देगा आयरलैंड के।
0: तो अभी जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर खेल जाते हैं तो बहुत अच्छा जो उनका करियर है वो हो सकता है क्योंकि एक मैनिपुलेटिव प्लेयर के रूप में, लेकिन खबर ये है क्रिकेट मैदान से कि वैभव सूर्यवंशी को अभी फिलहाल टीम में जो है वो जगह नहीं मिली है, उन्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि प्लेइंग 11 में अभी उनका नाम नहीं है। तो प्रेरणा यहाँ अभी कौन सा है? उनको निराश होने की जरूरत है, मैचेस तो बहुत हैं और एक लंबा करियर का सफर है, तो फिलहाल वैभव थोड़ा सा इंतजार करेंगे और इंतजार करेंगे उनके फैंस भी साथ में। और अब क्योंकि हमारे पास समय जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास खबरें और भी हैं, चलते हैं प्रेरणा के पास।
2: और चलिए अब आपको ले चलते हैं भुवनेश्वर जहां चल रहा है इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ट्रैक हो या फील्ड, दूसरे दिन कई खिलाड़ियों ने न केवल पदक जीते बल्कि एशियाई खेल 2026 के लिए भी अपनी दावेदारी मजबूत की। आइए सबसे पहले डालते हैं दूसरे दिन के प्रमुख मुकाबलों पर एक नजर। शुरुआत करते हैं महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा से जहां कर्नाटका की सिंधुश्री ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4.24 मीटर की छलांग लगाई। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और साथ ही एशियाई खेल 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बर्चीना एंगोवन के नाम दर्ज था। इस बार बर्चीना रजत पदक जीतने में सफल रही जबकि सिंधुश्री ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आइए पहले सुनते हैं सिंधुश्री को कैसे उनका ये ऐतिहासिक सफर पोल वॉल्ट में शुरू हुआ।
3: मैं तो एथलेटिक्स स्टार्ट किया स्कूल पे ऐसे ही जोनल तालुक ऐसे बाकी आ रहा था, फिर एक मेरा डिस्ट्रिक्ट से दूसरा मतलब मेरा तालुक से डिस्ट्रिक्ट जाना था मुझे प्रैक्टिस करने के लिए। रोज़ मैं स्कूल से आके बस पे जा रहा था मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करने के लिए। उधर मुझे एक कोच मिलता डेविड कोच, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराया, फिर मैं इधर आने के लिए भी मतलब हेल्प किया है इधर साई पे ऐसे ट्रायल है वैसे देने के लिए डेविड कोच ने मुझे बोला, फिर मैं उधर आके 400 कर रहा था मैं। फिर मैं मेरा और एक कोच उधर पोल वॉल्ट शिफ्ट करा दिया, फिर मेरा सीनियर्स के साथ कर रहा था मैं, उसके कोच नहीं था कोई उस टाइम। फिर 2020 पे कोच विजय सर के

0: रात में स्टार्ट किया, उसके बाद ऐसा ही चल रहा है।
1: अब बात करते हैं महिलाओं की 200 मीटर दौड़ की, जहां हर्षिता भद्रा ने शानदार दौड़ लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रकृति ने रजत और बोलांडा ने कांस्य पदक जीता। खास बात यह रही, तीनों धाविकाओं ने एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल कर लिया है। वहीं पुरुषों की 200 मीटर दौड़ पर आए तो मेजबान ओडिशा के अनिमेश कुजूर ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सुनते हैं अनिमेश कुजूर से कि इस उपलब्धि पर उनका क्या कहना है।
2: For Federation Cup, I just want to qualify for Commonwealth Games, and yeah, in semifinals I did that. And 200 आधे तक तो मैं थोड़ा फटीग हो गया था, and now I'm all okay. And today in this finals of 200 meter, I just want to qualify for Asian Games because my coach said कि बस Commonwealth पे तुम कैसे भागोगे हर एक round, so वो सारी चीजें यहाँ implement करो and अच्छा करो। बस ज़्यादा मैं तुमसे नहीं चाहता कि record and all, बस तुम qualify करो, बस इतना ही था focus उनका। I would like to thanks Reliance Foundation for making me run this much fast, as well as I want to thanks Odisha government and Athletic Federation of India for giving me chance to run in international competition. Like last month I went to Taiwan, I went to Asian Relay Championship, there I got bronze medal.
1: पुरुषों की डिस्क थ्रो की बात करें तो चंडीगढ़ के कृपाल सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के शॉर्ट पुट स्पर्धा में हरियाणा की मनप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा जयशंकर ने रजत, दिल्ली की वृष्टि विक ने कांस्य और तीनों ने एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में तमिलनाडु की गौतमी जयरमन ने स्वर्ण पदक जीता है, एशियाई खेलों के लिए टिकट पक्का कर लिया। पुरुषों की 800 मीटर में केरल के मोहम्मद अफजल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के डीकैथलॉन की बात करें तो केरल के तौफीक ने स्वर्ण पदक जीता, एशियाई खेलों के लिए क्वालिफिकेशन भी साथ ही हासिल कर लिया है। और तीसरे दिन की बात करें प्रातःकालीन सत्र की, तो दिन की शुरुआत महिलाओं के 20 किलोमीटर रेस वॉक से हुई, जहां उत्तर प्रदेश की मुनीता प्रजापति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1:45.05 का समय निकाला और स्वर्ण पदक जीता। दूसरी प्रतियोगिता 4x400 मीटर रेल संपन्न नहीं हुई। फिलहाल 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन का दोपहर का सत्र जारी है, जहां ट्रैक और फील्ड दोनों स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है।
3: जी हाँ, और इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं हम हॉकी के टर्फ पर, जहां पर FIH प्रो लीग जो है वो रोमांचक स्थिति में पहुंच चुकी है। रोमांचक मुकाबलों में यदि बात करें इंग्लैंड की और इंडिया की, तो फिलहाल इंग्लैंड ने शूटआउट में भारत को 4-1 से हरा दिया है। लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए FIH प्रो लीग के यूरोपियन दौरे के मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम हॉकी की मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 की बराबरी के बाद शूटआउट में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा उनको। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वें और 58वें मिनट में गोल दागे। वहीं इंग्लैंड की ओर से डेविड गुडफील्ड 29वें और निकोलस बंडूराक 56वें मिनट में गोल किए उन्होंने। शूटआउट में इंग्लैंड के लिए थॉमस सोर्स बी, जेम्स अलबरी और कप्तान जैकरी वॉलेस ने गोल दागे, जबकि भारत की ओर से केवल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ही गोल करने में सफल रहे। मैच की शुरुआत में भारत ने आक्रामक खेल दिखाया और 10वें मिनट में मनदीप सिंह के बेहतरीन पास पर दिलप्रीत सिंह ने डाइविंग फिनिश के साथ गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत बढ़त दोगुनी करने के करीब पहुंचा, लेकिन अमनदीप लाकड़ा की ड्रैग फ्लिक को इंग्लैंड के थॉमस सोर्स बी ने गोल लाइन पर रोक दिया। इसके बाद 29वें मिनट में डेविड गुडफील्ड ने शानदार वॉली के जरिए इंग्लैंड की बराबरी सुनिश्चित कर दी। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों की रक्षा पंक्ति मजबूत थी और कोई भी गोल नहीं कर पाए थे। चौथे क्वार्टर में इंग्लैंड ने लगातार दबाव बनाया और 56वें मिनट में निकोलस बंडूराक ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी टीम को 2-1 से आगे कर दिया। हालांकि भारत ने हार नहीं मानी और सिर्फ 2 मिनट बाद सुमित के शानदार पास पर दिलप्रीत सिंह ने जोरदार शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया और मुकाबला शूटआउट तक पहुंच गया। तो शूटआउट तो हम सबके सामने है, इंग्लैंड ने फिलहाल इंडिया को हरा दिया है और अब आज जो अपना मुकाबला है टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगी। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला देर रात्रि शुरू होगा। चलते हैं प्रेरणा के पास
1: और जान लेते हैं यूएस ओपन बैडमिंटन की खबर, जहां अमेरिका के फुलटन में खेले जा रहे यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में भारत के 18 वर्षीय युवा शटलर रौनक चौहान ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व के 6 नंबर के खिलाड़ी और पुरुष एकल के शीर्ष वरीय चीनी ताइपे के चाउ टियन चेन को सीधे गेमों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। विश्व रैंकिंग में 80वें स्थान पर काबिज रौनक, जो भारत के विश्व जूनियर कांस्य पदक विजेता टीम का हिस्सा रह चुके हैं, 49वें मिनट तक चले मुकाबले में उन्होंने 21-17, 26-24 से जीत दर्ज की। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना इजराइल के मिशा मिश्रा जिल्बरमैन से होगा।
3: और इसी के साथ चलते चलते एक नजर वॉलीबॉल पर भी डाल लेते हैं। 28 जून तक अहमदाबाद गुजरात में खेले जा रहे एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप में इंडिया ने पूल ए को टॉप करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ये मुकाबला टीम इंडिया ने 3-0 से जीता और लगातार पांचवीं जीत हासिल करते हुए पहले सेट में 26-24, दूसरे सेट में 25-15, इसके साथ तीसरे सेट में 30-28 से ये जीत कर टीम ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब यहाँ पर पूल बी की जो भी टीम ओपोनेंट के तौर पर मिलेगी, जो मुकाबला यहाँ पर खेल करके पूल बी से आएगी, तो फिलहाल इंतजार यही है कि टीम इंडिया यहाँ पर किसके साथ अपना मुकाबला खेलेगा। जल्दी से सुनवा देते हैं हम आपको रामानंद चौधरी, जो कि सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल, क्या कहा उन्होंने इस जीत पर।
4: वॉलीबॉल प्लेयर्स को मैं बधाई देता हूँ, जिस तरह का खेल उन्होंने अभी तक दिखाया है वो निश्चित रूप से ये बताता है कि भारत में वॉलीबॉल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और इस तरह से खिलाड़ियों ने एकजुट होकर के प्रदर्शन किया है तो निश्चित रूप से वो इस जीत के हकदार हैं।
3: एकजुटता के साथ हकदार माना जाता है। कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज में, और यही कंसिस्टेंसी लगातार हम अपने कार्यक्रमों में भी लेकर के आते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर हमें ले जा रहा है, तो मैं कविता शर्मा, अपनी सहयोगी
1: प्रेरणा शर्मा,
3: अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। नमस्कार।
5: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
7: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
6: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India today. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th APEC-level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war.
9: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
8: The Ministry of Health and Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules 1945 to simplify the procedure for obtaining permission for import of drugs for examination, test or analysis. The ministry said that the amendment introduces an acknowledgement-based system for import of all drugs in small quantities for analytical and non-clinical testing purposes. The simplified procedure shall not be applicable to certain drugs belonging to the categories of sex hormones, cytotoxic drugs and beta-lactam drugs. The UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations emerged of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar announced Operation Amistad, under which 2 Indian Air Force MCC C-17s took off today for Venezuela with urgent assistance to support post-earthquake relief efforts. Amistad means friendship in Spanish. In a social media post, Dr. Jaishankar said, "The assistance contains an Indian Army field hospital unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical equipment, including 2 Bhishma cubes." He stated that India is committed to support the government and people of Venezuela in this difficult time. The External Affairs Minister today interacted with a group of journalists from various European countries in New Delhi. The minister spoke to them about the profound transformations underway in India, the current state of flux the world is in, and the growing convergences between India and Europe. India, along with 34 nations, signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence.

0: प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्यानां अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचितादानप्रदानार्थम् अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानम् जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मंत्रिणः बी एल वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे एफआईआर इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमंत्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पंजीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्तेय संबंधिनां आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमंत्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य एसआईटी दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशत् देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैक हेलबर्गः अवोचत् यत् एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेलबर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयस्य सचिवेन एस कृष्णन महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्ण श्रद्धया गांभीर्येण च आचर्यते। अयम् दिवसः पैगंबर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बला युद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिं अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते संदेशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढतया स्थातुं अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला, महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य मासस्य चतुर्विंशति

0: पञ्चविंशति दिनाङ्कयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेश मन्त्रिणा चो ह्यून इत्यनेन सह विस्तृतां उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता, यत्र व्यापार निवेशौ वित्तीय सहयोगः रक्षा सुरक्षा प्रविधयः नवाचाराः संस्कृतिः शिक्षा तथा च परस्पर जनसंपर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुं उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेश मंत्रालयानुसारं द्वाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया संबंधेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतं। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक संधिं इतोपि अग्रे नेतुं अविरतं संपर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतं 1:17:26:24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संचार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए अरुणेश भाई, आज बहुत ही विशेष दिन है। आज मुहर्रम मना रहे हैं हम, और मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, और इसे पवित्र महीना माना जाता है। और यहाँ हमें हर एक जो हमारे कोई भी धर्म होते हैं, जब हम किसी अवसर को मनाते हैं, तो उसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम प्रेम, सद्भावना और सद्विचारों के साथ अपना जीवन बिताएं।
1: बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। और आज बेहद ही ख़ास दिन है, और देखिए हमारा संविधान भी जो है सर्वधर्म समभाव का भाव रखता है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम सभी को हमारे संविधान ने दिया हुआ है। इसलिए हमें सभी धर्मों के जो पर्व होते हैं, उन्हें बड़े ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाना चाहिए। और आज मुहर्रम है, और तो हम सभी सबसे पहले तो ये आपको बताते हैं कि जो मुहर्रम होता है, ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है, और इस्लाम धर्म के हिजरी कैलेंडर का पहला महीना, और एक तरीके से नए साल का ये प्रतीक भी होता है। और दरअसल ये कोई उत्सव नहीं, बल्कि एक गमगीन और श्रद्धा का समय है, क्योंकि मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए करबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी। तो एक तरीके से हम उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए इस पर्व को ध्यान में रखते हैं, मनाते हैं।
0: बिल्कुल, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर हमें किस तरह से टिके रहना चाहिए, इसी संदेश को हम इस दिन याद करते हैं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा एक और भी आज बेहद ख़ास दिन है प्रियंका, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस भी आज मनाया जा रहा है। आपको पता ही है कि नशा संपूर्ण शरीर का, मन का नाश करता है, इसलिए हमें अपने युवाओं को नशे से दूर रखना चाहिए। और इस दिवस का और क्या महत्व है, आप बताइए।
0: बिल्कुल, देखिए नशे का जहाँ तक देखते हैं हम कि आजकल के जो युवा हैं, वो अपने दोस्तों की या गलत संगत में पढ़कर देखा देखी इसकी तरफ बढ़ तो जाते हैं, लेकिन इससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ये बहुत

0: जरूरी है कि आप इस और कदम ही ना बढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं ना ये एक माया जाल की तरह है, अगर आप इसमें फंस गए तो ये ना कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है बल्कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है, और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
1: बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा। और साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस की एक थीम होती है, एक ध्येय वाक्य होता है। और अगर बात करें इस साल की यानी 2026 की, तो इस साल की थीम है रोकथाम में निवेश करें, यानी हम जो इन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एक बहुत
0: बिल्कुल।
1: पुरानी कहावत है अंग्रेजी की। तो हम पहले से ही अगर जागरूक रहेंगे, रोकथाम करेंगे, तो ऐसा जो है नशे से दूर रहेंगे। और इस दिवस का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और इसके बाद 1988 से हर दिन हर साल ये दिन मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करें और एक नशा मुक्त समाज बनाएं और अपना नशा मुक्ति देश बने, ताकि हम विकास के रास्ते पर आगे चल सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब आपका करवाते हैं मनोरंजन, और कार्यक्रम में सुनवाते हैं रागनी, और कलाकार होंगे जय किशन।

0: तो प्रियंका, अभी हमने अपने श्रोताओं को मनोरंजन किया और कलाकार जो थे सत्येंद्र यादव, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की जो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, वो यह है गांव के युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार और कौशल प्रशिक्षण।
1: बिल्कुल, कौशल प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप किसी काम को अच्छी तरह सीख कर करते हैं तो उसमें संभावना हो जाती है कि उसको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसका परिणाम भी ज़रूर अच्छा आएगा। और इसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं, जिसमें आप छोटी अवधि के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके और उससे अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार की तरफ भी आप जा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही में अगर बात करें ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं और सरकारी कौन सी योजनाएं हैं, तो उसमें से एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, और इसके तहत 15 से 35 वर्ष के जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनको स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलता है। इसके अलावा एक कुछ राज्य सरकारों ने भी योजनाएँ चलाई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना है, और इस योजना का उद्देश्य ही यही है प्रियंका, कि जो गांव में ही लोगों को रोजगार दिया जाए। इसके तहत जो है, अगर वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं यानी स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो सरकार

0: उनको 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। इस तरीके से और भी कृषि आधारित अवसर भी हैं जहां पर ये स्वरोजगार करके हमारे युवा अपना जो है एक तरीके से भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने जिस तरह से बात की कि कृषि आधारित ऐसे रोजगार हैं जिसमें गाँव में रहकर ही हमारे जो युवा हैं वो अपने पारंपरिक कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण जैसे काम है, नर्सरी प्रबंधन है, पशुपालन है, डेयरी प्रबंधन है, इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जिसमें कि अगर आप पूरी कुशलता के साथ उस काम को करते हैं तो बाज़ार में भी अभी जो अच्छे प्रोडक्ट हैं उनकी मांग बढ़ चढ़ कर है। जैसे अब हम देखते हैं कि सबको चाहिए कि हमें असली बिलोने का घी मिले, तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं और उसके में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हैं और आपके यहाँ कितने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिससे कि आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा और अधिक से अधिक ऑर्डर भी आपको मिलेंगे, तो इस दिशा में भी आप बढ़ सकते हैं।
0: और इसके अलावा आजकल आपको पता ही है कि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, हमारी सरकार भी डिजिटल इंडिया चला रही है, तो इसी के तहत एक बहुत ही अच्छा कार्य हमारे ग्रामीण युवा साथी कर सकते हैं, वो है कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC। तो गाँव में वो थोड़ा सा जन सेवा केंद्र खोलकर वे बैंकिंग बिल भुगतान और सरकारी योजनाओं के फार्म जो निकलते हैं, या हमारे युवा साथी जो सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो इस तरीके से वो CSC सेंटर भी अपने गांव में खोल सकते हैं। और एक और प्रियंका, आजकल बहुत हमारे शहरों में तो लोकप्रिय है ही है कि सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर तक डिलीवरी हो जाती है, तो ये जो ई कॉमर्स है और डिलीवरी का काम है, ये धीरे धीरे अब कस्बों में और गाँवों में भी जा रहा है। तो इस तरीके से लॉजिस्टिक्स कंपनियों का ग्रामीण इलाकों में विस्तार हो रहा है, तो वहाँ पर डिलीवरी और सप्लाई चेन में भी रोजगार के ढेरों अवसर मिल रहे हैं। और इसके लिए PM दक्ष योजना के तहत, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, इस योजना के तहत हमारे ग्रामीण भाई और कारीगरों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए हर महीने 1500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में प्रियंका आपने बताया ही, तो ये सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है और हमें उम्मीद है कि जो ग्रामीण युवा साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको इस जानकारी से लाभ होगा।
1: बिल्कुल, और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं रागनी सत्येंद्र यादव की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे सत्येंद्र यादव की आवाज में रागनी और किस्सा था सावित्री का।
1: और अब प्रियंका आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और योजना के बारे में, जो कि है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जन कल्याणकारी योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं वो मार्केट से 50 से 90 फीसदी सस्ती दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, और जेनेरिक ये दवाइयाँ होती हैं, सस्ती दवाइयाँ होती हैं, और इनका नेटवर्क यानी जन औषधि केंद्र का नेटवर्क पूरे देश भर में 18,000 से भी अधिक है और लगातार हर एक इलाके में, मतलब छोटे शहरों में हो या फिर गाँव में हो, वहाँ पर जन औषधि केंद्र खोले भी जा रहे हैं। तो अगर कोई हमारा युवा साथी या जो हमारे श्रोता चाहें तो वो भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं और इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की कि इससे रोज़गार भी आप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जैसे कि कहते हो कि भाई दवा ऐसी चीज़ है कि जो सही हाथों से ही दी जानी चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है कि आपको अच्छी जानकारी हो, आपने फार्मेसी क्या कोर्स सर्टिफिकेट किया हो या फिर आपके पास डिग्री कोर्स हो या फिर, और इसके साथ साथ दवाओं के साथ साथ इसमें जो सर्जिकल उत्पाद होते हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध किए जाते हैं, जिसमें कि दवाओं के साथ साथ इस तरह के उपकरण और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी होती है। और इसका एक और फ़ायदा है कि इसकी एक ऐप भी है, जन औषधि सुगम ऐप, जिसके ज़रिए आपके नज़दीकी जो भी जन औषधि केंद्र है उसकी लोकेशन

0: आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि जो दवा आपको चाहिए वो केंद्र पर उपलब्ध है या नहीं, तो घर बैठे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल प्रियंका, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही अपना जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो जैसा कि प्रियंका ने बताया कि आपके पास फार्मेसी में या किसी में कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, और इसके लिए कैसे आवेदन करना है, क्या जो है इसके लिए आवश्यक योग्यता और पात्रता है, ये सब जानकारी आपको जन औषधि केंद्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है janaushadhi.gov.in वहाँ पर मिल जाएगी। और हमारी सरकार का ये लक्ष्य है कि 31 मार्च 2027 तक पूरे देश भर में 25,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाएं, तो ये भी एक अच्छी पहल है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि पढ़ाई, दवाई और कमाई, इन तीनों चीज़ों पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और जब बात दवाइयों की हो तो जाहिर सी बात है कि अच्छी दवाइयाँ होनी चाहिए, ब्रांडेड दवाइयाँ होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं होना चाहिए। अब ये चूँकि ये योजना सरकार की है तो यहाँ पर आपको उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, तो आप भी अगर आपको किसी दवाई की ज़रूरत है तो आप अपने नज़दीकी जन औषधि केंद्र पर जा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ भी पड़ेंगी, उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
0: और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: यहीं समाप्त होता है कार्यक्रम। सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: रमेश भाई, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है हमारा स्वास्थ्य, और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या की भी आवश्यक होती है, जिसमें व्यायाम है, हमारा आराम है, साथ ही साथ अच्छा खान पान भी है, कि हम मौसम के अनुसार सही मौसमी फल और सब्जियों का चयन करें, क्योंकि फल और सब्जियाँ जो है खाने में स्वादिष्ट तो होती हैं, साथ साथ फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बेहतर है, और इसमें वसा और जो कहते हैं कि भाई एक उम्र के बाद आपको शक्कर नहीं लेनी, उससे भी आप बचे रहते हैं।
1: बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा, और कहते हैं ना कि सेहत ही आपका असली ख़जाना है, यही असली दौलत है, इसलिए आपको सेहतमंद रहना चाहिए। और सेहतमंद के लिए जैसा कि प्रियंका आपने बताया कि खान पान पर ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो फल सब्जी हो और या फिर मिलेट्स की बात हो। तो क्यों ना आज हम अपने श्रोताओं को, अपने किसान भाई बहनों को सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत सुनवाते हैं। सब्जी नर्सरी का प्रबंधन डॉक्टर श्रवण सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। तो आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। साग सब्जियां स्वास्थ्य को पोषक तत्व प्रदान करती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी को साल भर साग सब्जियां मिलती रहें। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि समय समय पर साग सब्जियों का पौध प्रबंधन होता रहे और हम समय रहते सब्जियों की नर्सरी तैयार कर लें। गर्मियां खत्म हो चली हैं, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में हम कैसे सब्जी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रवण सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाक्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि खरीफ सीजन की जो मुख्य सब्जियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं।
3: देखिए किसान भाइयों, जब मानसून की शुरुआत होती है बौछारों से, तो किसानों का भी मन खुश हो जाता है, और उस खुशी खुशी में किसान अलग अलग प्रकार की फसलों का चयन करता है ताकि उसका मुनाफा बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े। और इसमें खासकर जब खरीफ सीजन की बात करते हैं, तो जो परंपरागत जो फसलें हैं, जैसे बैंगन, मिर्च और टमाटर भी काफ़ी लोग करते हैं, ये तो हैं ही, साथ में फूलगोभी भी आजकल खरीफ के सीजन में करने लग गए हैं, जिसको हम अगेती फूलगोभी कहते हैं। इसके साथ कई पत्ते वाली सब्जियां भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण सब्जियाँ हैं जो खरीफ सीजन में किसान भाई करते हैं।
2: डॉक्टर साहब, यहाँ यह भी जानना चाहूँगा कि खरीफ सीजन की जो सब्जियाँ लगती हैं वो किन किन क्षेत्रों में की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती है।
3: हाँ देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों कि जब भी आप फसलों का चुनाव करें, दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। खरीफ के सीजन में हमें पता है कि बारिश की जो अनिश्चितता रहती है, कभी अधिक बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश बीच बीच के अंतराल में देखने को मिलती है। अधिक बारिश होने से जल भराव की स्थिति होती है, तो सलाह ये दी जाती है जिन किसानों के खेतों में पानी की भराव की समस्या है, वो किसान भाई सब्जियों की खेती करने से बचें, क्योंकि ये सब्जियां जल भराव की स्थिति को सहन नहीं कर सकती। या फिर उच्च तकनीकियां अपनाएं, जैसे रेज्ड बेड, जिसको उठी हुई मेड़ी तकनीकी कहते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। खासकर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इन सब्जियों को बरसात की सब्जियां कहते हैं, जो खरीफ की सब्जियां हैं, उसमें तापमान का भी महत्व है। तापमान का इसलिए कि जैसे टमाटर है, उसको 20 से 24 डिग्री का तापमान जहां औसतन मिलता है, वहां इसकी फलन अच्छी होती है, उसकी पैदावार अच्छी आती है। साथ ही बात करें मिर्ची की, तो लगभग 15 से 35 डिग्री का तापमान होता है, वो इन क्षेत्रों में मिर्ची की खेती किसान भाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की बात करें तो 21 से 27 डिग्री का तापमान जहां रहता है, वहां इसकी खेती कर सकते हैं। और ये तापमान ज़्यादातर मैदानी भागों में, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है, जहां पे बारिशें होती हैं वहां ये तापमान मिल जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के किसान भाई इस समय इनकी फसल करने से बचें, क्योंकि वहां तापमान ज़्यादा ठंडा रहता है।
2: डॉक्टर साहब, कुछ जो सब्जियां होती हैं की सीधे बिजाई की जाती है, कुछ की पौध तैयार की जाती है, तो मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जिनकी सीधे बिजाई की जाती है, उनके बीज की व्यवस्था कैसे की जाए, और वो जो बीज है वो किस मात्रा में होना चाहिए।
3: देखिए, आपने सही कहा कि दो प्रकार की सब्जियां हैं, एक जिनकी हम सीधी बिजाई करते हैं और एक हम जिनकी पौध तैयार करते हैं। जिन फसलों में पौधे यदि हम स्थानांतरण करने से उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, खासकर जैसे बैंगन, मिर्ची, टमाटर, फूलगोभी, इन सब की बात करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह इनकी रोपाई कर सकते हैं, और शुरुआती अवस्था में इनकी बढ़वार कम होती है। यदि हम खेत में लगाते हैं तो भी घास है वो ज़्यादा जल्दी से ढक लेता है उनको। तो किसान का खर्चा ज्यादा हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसकी पौध तैयार करके फिर ही इसकी खेती करें, इससे इनका फायदा ज्यादा होता है। अब इसमें एक फायदा किसान का ये रहता है कि यदि वो सीधी बुआई ना करके यदि पौधशाला के थ्रू जाता है तो बीज की मात्रा कम लगती है, क्योंकि नर्सरी जो हम जिसे कहते हैं वो एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें बीज के हक के लिए बीज की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ज्यादा अच्छा वातावरण दिया जाता है, और इसलिए ये कहा जाता है कि बीज की मात्रा कम चाहिए होती है। अब जैसे बात करें टमाटर की, तो टमाटर में लगभग 400 से 500 ग्राम ओपी वैरायटी जो होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई किसान भाई यदि संकर किस्मों का इस्तेमाल करता है तो उसको बीज की मात्रा 125 से 175 ग्राम ही चाहिए। ऐसे ही यदि मिर्ची की बात करें तो 400-500 ग्राम बीज उसको भी चाहिए, लेकिन जो हाइब्रिड की बात करते हैं तो वो और कम हो जाता है, और बैंगन की बात करें तो लगभग 300 ग्राम बीज सफिशियंट होता है। तो इसलिए इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखें इनकी। एक बात और ध्यान रखने की बात है, देखिए लगभग 200-250 स्क्वायर मीटर एरिया है उतना एक हेक्टर की पौध बनाने के लिए सफिशियंट है। तो ये समझ लीजिए कि लगभग 2.5 एकड़ एरिया में आपको पौध लगानी है तो 200 से 225 मीटर एरिया में ही आप पौध तैयार कर लीजिए, ताकि आपके संसाधन कम लगेंगे और शुरुआती अवस्था में पौधे ज्यादा बचेंगे।
2: डॉक्टर श्रवण, जो आपने बीजों की बात की, तो जब किसान भाई बीज खरीदें तो सबसे पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा बीज है, अच्छा बीज है, तो उसके लिए क्या क्या परीक्षण होते हैं या किस तरह से खरीदा जाता है?
3: ये सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों कि आप जब भी बीज ले, पहली बात तो प्रमाणित बीज का स्रोत होना चाहिए। जैसे सरकारी संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं, चाहे वो सब्जियों का हमारा बनारस का संस्थान हो, चाहे दिल्ली का पूसा संस्थान हो, चाहे बेंगलोर का IIHR हो, या फिर और यूनिवर्सिटीज हैं, जहां से भी आप लेते हैं उसे ही आप बीज लें। दूसरी बात, यदि वहां बीज की उपलब्धता कम है या आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप बाजार से भी लेते हैं, तो बीज पे एक्सपायरी डेट जरूर देखें और उस बीज का पक्का बिल जरूर लें, और ये सुनिश्चित करें कि ये खुला बीज नहीं है, इसको कोई प्रकार का डैमेज नहीं है, और उस बिल को सावधानी से अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि आने वाली फसल के ऊपर आप जो भी है उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। गलत है तो आप क्लेम भी उसके लिए मांग सकते हैं।
2: डॉक्टर श्रवण, अगर जो किसान भाई जब बीज ले आते हैं जैसे कि आपने कहा प्रमाणित जगह से, तो उसके बाद भी किसान भाई अपने स्तर पे भी बीजों का कोई शुद्धिकरण करें या इसकी कोई आवश्यकता रहती है?
3: हाँ, बीज शोधन हमेशा जरूरी होता है, चाहे आप सरकारी संस्थान से लीजिए या आप प्राइवेट सेक्टर से लीजिए जो बाजार में मिलता है वो। पहले हम तीन बातों को जरूर जिक्र करेंगे कि बीज शोधन की जब भी बात आती है, एक तो फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमारे खेतों में जो गर्म जलवायु है उसकी वजह से जमीन में भी कीटाणु दोनों तरीके के रहते हैं, हमारे इस फसल के फेवरेबल भी रहते हैं और उसको हानि पहुंचाने वाले भी होते हैं फसल को, तो उनसे बचाव के लिए पहले फंजीसाइड का ट्रीटमेंट जरूर देना है। उसके लिए बावेस्टीन, कैप्टान या कोई भी थीरम है ले सकते हैं, लगभग 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए जरूरत पड़ती है। और उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड खासकर उन फसलों में जिसमें रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, जैसे हमने बात की टमाटर की, बैंगन की, मिर्ची की, इनमें सफेद मक्खी आती है, तो शुरुआत की जो 20-25 दिन की अवस्था है उससे इसमें बचाव मिलता है। उसके बाद हम कोई जो भी बायोफर्टिलाइजर्स जैसे हैं, इन फसलों में ज्यादातर एजोटोबैक्टीरिया

0: या जिस प्रिलियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो नत्रजन की फिक्सेशन है इसमें सहायता मिलती है और किसान को कम यूरिया खेतों में देनी पड़ती है, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन किसान भाई जैविक खेती करते हैं
1: जी,
0: वो भी बीज शोधन करें, वो ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं लगभग 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, और आजकल जो हमारी जो नई परंपरागत जो संरचना उसको वापिस लेके आए हैं बीजामृत जिसको हम कहते हैं, उससे भी किसान भाई बीज का शोधन कर सकते हैं। कैसे बीजामृत बनाना है, कैसे इनसे ट्रीटमेंट करना है, मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि आप निकटतम केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां से संपर्क जरूर करें, वहां सीखें, सिर्फ देख करके सुन करके ना करें, वहां जा करके सीख के फिर इस्तेमाल करें तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही बीजों की, लेकिन जब हमें नर्सरी तैयार करनी है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए किसान भाइयों, जब बरसात के सीजन में हम पौधशाला की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जैसे मैंने बात की थी जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा स्थान चुने जहाँ कोई पुरानी बीमारी की हिस्ट्री तो नहीं है कि उस क्षेत्र में ज्यादा बीमारी आती है। तीसरी बात, पानी के स्रोत के पास रखें, क्यों, बारिश के भी बीच बीच में कई दिनों का अंतराल होता है और पौधशाला में हर दिन पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके स्रोत के पास में रखें। चौथी बात है, कोई ज्यादा छायादार स्थान नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, किसी आवारा पशुओं से नर्सरी को नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि ठंडक रहती है वहां जानवर आके बैठते हैं, वो नुकसान कर सकते हैं। छठवीं बात जो है, आप ऐसी व्यवस्था करें कि जब तेज बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक सीट से ढकने की कोशिश करें और तेज धूप हो उस समय कोई छायादार जैसी चादर बनती है, सेडनेट या कुछ है, उससे ढकने की व्यवस्था करें। इन 4-5 बातों का आप ध्यान करेंगे तो आपकी पौध की आप अच्छे से बचा सकेंगे और अच्छे से उसको तैयार कर पाएंगे।
1: एक और जरूरी सवाल कि अगर हमें ये पौधशाला तैयार करनी है तो कम से कम कितने क्षेत्र होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा कितना क्षेत्र हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग 200 से 250 स्क्वायर मीटर एरिया होता है वो सफिशियंट होता है एक हेक्टर की पौध बनाने के लिए, लेकिन वैसे भी यदि हम बात करें तो लगभग 3 से 3.5 या 4 मीटर तक की लंबी बेड है और 1 मीटर चौड़ी बेड किसान भाई बनाते हैं जिसको लगभग 1 फीट ऊंचाव उठा करके दें और 2 मेड़ियों के बीच में लगभग 1 फीट के आसपास नाली दें ताकि बरसात में यदि पानी होता भी है तो नाली में खड़ा हो जाए और ऊपर तक पौधे तक ना पहुंचे, उसको नुकसान ना करे। यदि ऐसी बेड बनाते हैं तो 15 से 17-18 बेड तक 1 हेक्टर के लिए सफिशियंट नर्सरी बैंगन की दे सकते हैं, मिर्ची की दे सकते हैं और टमाटर के लिए 5-7 ज्यादा थोड़ी सी बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। तो कहने का मतलब है 20 बेड तक यदि किसान भाई बनाते हैं इस साइज की तो उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे कि पौधशाला के बारे में तो आपने बताया, लेकिन उसके बाद अच्छी पौधशाला तैयार करनी है तो उसका प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, तो उसके प्रबंधन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए?
0: हाँ देखिए किसान भाइयों, जब हम पौधशाला की तैयारी की बात करते हैं तो एक बेड के ऊपर तैयारी करने की थी, दूर दराज के किसान भाइयों के पास जिनके पास कोई नए साधन नहीं है, जैसे प्रोट्रेज की बात करें, मीडियाज की बात करें, वो नहीं है, वो किसान भाई इस तरीके से मेड़ी पे बना सकते हैं और ढकने की व्यवस्था वो सब कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई थोड़े से एडवांस हैं जिनके पास साधन उपलब्ध हैं, जैसे प्रोट्रेज ले सकते हैं, उसमें अपने पास कोकोपिट का मीडिया है उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला करके और उसको भर करके उसमें भी फसल की पौध तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी पौध तैयार होती है, उनको दूर दराज तक ले भी जा सकते हैं। और आजकल कई ऐसे कमर्शियल वेंचर्स बन रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो ऐसी पौधशाला बनाते हैं और बेचते भी हैं, वो अपने लिए ही नहीं दूसरे किसानों के लिए भी बना के देते हैं, वो भी तरीका कर सकते हैं, उसको हम प्रोट्रेज टेक्निक्स या हाईटेक नर्सरी के रूप में भी जानते हैं। और इन फसलों में जहां बेड में ज्यादा समय लगता है 30 दिन लगते हैं तो यहाँ वो 21-22 दिन में भी पौध तैयार हो जाती है, तो ये इसका एक एडवांटेज है, उसको कर सकते हैं। अब रही बात प्रबंधन की कैसे करें, तो देखिए जैसे बारिश से बचाव जरूरी है उसके लिए ढकने की ऐसी व्यवस्था रखिए, जब जरूरत पड़ी ढक दिया, तेज धूप है दिन में उस समय ढकने की जरूरत है सेडनेट की। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज छूट रही है कि किसान भाइयों जैसे आपने मीडिया की बात करी प्रोट्रे में भरने के लिए, तो बेड के ऊपर भी जैसे जमीन है, जमीन में कीड़े बीमारियां आती हैं उसका भी उपचार जरूरी है, उसके लिए समय रहते आप उसको गर्मी में प्लास्टिक सीट से ढक दीजिए। इस समय तो समय निकल गया लेकिन अगली बार अपने खेत में ध्यान रखिए, जितने क्षेत्र में बनानी है उसको गीला कीजिए और जुताई करने के बाद गीला कीजिए और प्लास्टिक सीट से ढक दीजिए, उसको सोयल सोलराइजेशन कहते हैं। वो अभी नहीं कर सकते तो अभी आप 22 टिन का 2 ग्राम का घोल बना करके जो बेड बनाएंगे बेड को तर कर दीजिए, उससे क्या होगा जो भी फंगस के जो हानिकारक हैं वो कम हो जाएंगे। यदि कोई किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो वो ट्राइकोडर्मा का लगभग 10 ग्राम 1 लीटर में घोल बना करके उसको डाल दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि लगभग 1 किलो 100 किलो गोबर में ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं, उसको 7-8 दिन छोड़ते हैं और फिर उस नर्सरी बेड पर डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा कारगर काम करता है। तो इससे आपकी पौधशाला में बीमारियां कम आएंगी और उसका अच्छा होगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मिट्टी को जितना भुरभुरा बनाएंगे उतना ही अच्छा दाना निकल के आएगा। इस बात का जरूर किसान भाई ध्यान रखें कि नर्सरी में भुरभुरा करना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, जब पौध तैयार हो जाए नर्सरी में, उनको जब हमें खेत में लगाना है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: हाँ देखो, कई बार किसान भाई एक लास्ट में जाके थोड़ी सी गलती कर देते हैं, वो पौध को लास्ट तक खूब पानी देते हैं, वहाँ पौधे को तनाव नहीं महसूस होता, और तनाव महसूस नहीं होता वो पौधे हम निकाल के खेत में ले जाते हैं, लगा देते हैं, वहाँ बहुत पौधे मर जाते हैं। इसलिए एक सलाह ये दी जाती है आपको कि जब आपकी पौध लगाने का बिल्कुल समय नज़दीक आ जाए, एक वीक का समय बचता है, चाहे टमाटर हो, मिर्ची हो, बैंगन हो, गोभी हो, उस समय आप थोड़ा सा पानी का अंतराल पहले एक या दो दिन ऐसे कम कर दीजिए। जैसे आज पानी दे दिया, कल नहीं देंगे, परसों दिया, फिर दो दिन नहीं देंगे, तो ऐसे करके करने से क्या होगा कि पौधे में ताकत बढ़ती है और जैसे वो खेत में जाएगा उसमें उसका जमाव अच्छा होगा, पौधे मरेंगे नहीं। अब हमेशा रोपाई का समय देखिए, खरीफ सीजन है वो गर्म सीजन माना जाता है, सिर्फ बारिश की वजह से ठंडक है, बारिश नहीं है गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए रोपाई शाम के समय करें। और जैसे आप पौध निकालते हैं उसके बाद उसकी जड़ों का उपचार जरूर करें, चाहे ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के डिप करें, या बावेस्टिन से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बना के करें। और कई बार सलाह ये भी दी जाती है कि सिर्फ एजोस्पिरिलियम या एजोटोबैक्टर जो भी आप लेते हैं उसका भी पानी में घोल बना करके उसको भी खेतों में लगाएंगे तो भी अच्छी बात है, उससे आपका पौधे ज्यादा बचेंगे और पैदावार भी बढ़ेगी।
1: डॉक्टर श्रवण, मृदा की जो उर्वरता है उसको बनाए रखते हुए हम कैसे सब्जियों का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं?
0: देखिए, सब्जियां ज्यादा पोषक तत्व लेने वाली फसलें मानी जाती हैं
1: जी,
0: ज्यादातर सब्जियां, इसलिए किसान भाइयों इस बात का जरूर ध्यान देना है कि पोषण प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जितना अधिक डालेंगे, उससे पैदावार हमें लगता है ज्यादा है लेकिन गुणवत्ता उतनी ही कम होती जाती है। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि आप अपने खेत में ग्रीन मैन्योरिंग जरूर करें, ढेंचे का इस्तेमाल करें, जब 45-50 दिन का होता है प्लोबैक करें, क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करें। याद रखिए, खेत को हिस्सों में बांटिए, एक हिस्से में हर बार लेग्यूम होना चाहिए, फिर अगली बार दूसरी फसल हो, उससे लेग्यूम वेजिटेबल पोषक तत्वों का मान बढ़ाती है। और फिर उसके बाद में यदि जरूरत पड़ती है तो जैसे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं लेग्यूम वाली सब्जियों के लिए वो लीजिए, और दूसरी सब्जियों के लिए जैसे एजोटोबैक्टर या एजोस्पिरिलियम है अपने निकटतम केवीके से जानकारी लेकर के उसको इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका ये बहुत अच्छा होगा। तो इन चीजों को आप करते हैं, और सीड ट्रीटमेंट का भी मैंने कहा उसको भी आप कीजिए, या सीडलिंग ट्रीटमेंट को भी कीजिए, तो उससे इन बायो फर्टिलाइजर से तो आपकी मृदा की जो क्षमता है वो सुधार होगा उसमें। और कोशिश कीजिए या तो केंचुआ खाद डालिए खुद बना करके, या जो क्रॉप वेस्ट है उसको इस्तेमाल कीजिए डिकम्पोजर्स यूज करके, या जो अभी आपके पास गोबर की खाद है या वो जरूर इस्तेमाल कीजिए, और जो जैविक पदार्थ बनते हैं, जीवामृत है, बीजामृत है, वो सब है, उनका भी इस्तेमाल आप बढ़ाइए ताकि आपकी गुणवत्ता भी अच्छी बने और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ के आए।
1: डॉक्टर श्रवण, अंत में बस मैं यही जानना चाहूंगा कि अब जो किसान भाई बहन अब ये जो खरीफ के सीजन की मुख्य सब्जियां हैं उनको लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखें, संक्षेप में हमें एक बार बता दीजिए।
0: देखिए किसान भाइयों, आप उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करें, जो भी आप किस्म लें प्रमाणित स्रोत से लें, और उन्नतम किस्म अपने क्षेत्र के लिए जो है उसको आप लीजिए, चाहे वो किसी भी संस्थान से लीजिए। दूसरी बात, उस बीज को सही तरीके से शोधन करके अच्छे से तैयार की हुई बेड के ऊपर या प्रोटरेज में आप उसकी नर्सरी बनाइए। जो पौधशाला के अंदर ही आप जितनी सावधानी बरत लोगे, तो एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी पौध तैयार करोगे वैसी ही फसल काटोगे वाला सिद्धांत यहाँ लागू होता है। उसको नर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिए, और मृदा का जितनी अच्छी जमीन है उतने ही गुणों वाली सब्जी पैदा होगी, इस बात को भी ध्यान रखिए। और जल भराव की स्थिति इन फसलों में बिल्कुल न आने दें, इसके लिए रेज्ड बेड जो मेड़ी बनाने वाली तकनीकी है वो ना भूलिए, उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने आज सब्जी नर्सरी के प्रबंधन पर इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जरूर वो इसका लाभ लेंगे। तो डॉक्टर श्रवण, आज आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे एक महत्वपूर्ण बातचीत, और इसका विषय था सब्जी नर्सरी का प्रबंधन कैसे करें। बातचीत हमारे रजनीश कर रहे थे, और जो विशेषज्ञ थे वो थे डॉक्टर श्रवण सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। जी प्रियंका, अब आगे बढ़ते हैं।
3: देखिए, हमारे जो नर्सरी की बात की कि भाई आप सही तरीके से बेड बनाएं और आप मृदा को भी सही से तैयार करें और बीजों को भी आप उपचारित करके हो इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें योजनाओं की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके ज़रिए आप कृषि शिक्षा

0: प्राप्त करके कृषि क्षेत्र में अच्छा रोजगार स्थापित कर सकते हैं और स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर बात करें इस योजना के उद्देश्य की, तो इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था, जिसको हम काउ बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, उसको बढ़ावा देना है। और ये ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो कृषि शिक्षा विभाग है, वहाँ पर इस योजना को चलाया जाता है। और इसका जो है, और भी ये इस योजना के तहत जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, जो ग्रामीण स्तर पर युवाओं और किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की नवीनतम तकनीकें यानी जो टेक्नोलॉजी है, उस पर आधारित ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो एक बहुत ही अच्छी ये योजना है।
0: बिल्कुल। और इसके साथ साथ याद दिला दें कि कल है शनिवार, और शनिवार को आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो कि फ़ोन इन कार्यक्रम होता है, जिसमें आप हमें अपने पसंद के कलाकारों को और अपने पसंद के गीतों को किस तरीके से आप हमें फ़ोन के ज़रिए बताते हैं और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ते हैं, यही हमारा प्रयास रहता है। तो कल 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पप्पू भारती की आवाज़ में ये रागनी।
2: संध्या भजन साधना हो वैसुद्ध

0: पप्पू भारती गाए हुए इस भजन के साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम। और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। और आइए आप सुनते हैं गीत गजल का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं चंद खूबसूरत सी गजलें। और आवाज की बात करें तो आवाज है पंकज उदास साहब की। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गज़ल का ये कार्यक्रम, जिसमें पंकज उधास की गज़लों से हमने आज आपको रूबरू करवाया। और आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली नगर निगम और कार्य निष्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कचरे के निस्तारण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली सरकार, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और आशुराए मुहर्रम पर आज राजधानी में विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टल पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। अपने लेख में श्री वर्मा ने कहा कि सरकार नशे को भारत के युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा मानती है। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं से

0: को भी कमजोर करता है। श्री संधु ने कहा कि नशा मुक्त दिल्ली के निर्माण के लिए परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने दिल्ली के युवाओं से आग्रह किया कि वे जागरूकता, रोकथाम, पुनर्वास और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से मिलकर स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त दिल्ली के निर्माण में योगदान दें। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर आरंभ किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का प्रयोग होगा। इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये यात्रा दिल्ली में सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आरंभ होगी और ये रेलगाड़ी वाराणसी, पुरी, कोणार्क, चिलिका, भुवनेश्वर, कोलकाता, गंगासागर और बैद्यनाथ धाम जाएगी। इस रेलगाड़ी में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में टिकट लिए जा सकते हैं। इस विशेष रेलगाड़ी में यात्रियों को प्रति व्यक्ति फर्स्ट एसी के लिए 1,13,530 रूपए, सेकेंड एसी के लिए 1,06,145 रूपए और थर्ड एसी के लिए 91,370 रूपए चुकाने होंगे। इसमें यात्रियों को 3-स्टार होटल में विश्राम, सभी भोजन, अन्य सभी यात्रा, एसी वाहनों में दर्शनीय स्थल और यात्रा बीमा तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या देश भर में IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। ये रेलगाड़ी 5 अक्टूबर को यात्रा पूरी कर वापस दिल्ली पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली नगर निगम और कार्य निष्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लेगेसी कचरे के निस्तारण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर श्री सूद ने बताया कि वर्तमान में गाजीपुर में प्रतिदिन लगभग 7,000 मीट्रिक टन कचरे की बायोमाइनिंग की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 जुलाई तक प्रतिदिन की क्षमता बढ़ाकर 12,000 मीट्रिक टन की जाए तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए श्री सूद ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल परियोजना की अब साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 मार्च 2025 को फेज 2 के अंतर्गत 30 लाख मीट्रिक टन लेगेसी कचरे की बायो माइनिंग का कार्य आवंटित किया गया था, जिसे इस वर्ष सितंबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। श्री सूद ने कहा कि फेज 2 के अंतर्गत अब तक लगभग 24 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है तथा लगभग 20 एकड़ भूमि कूड़ा मुक्त हो चुकी है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि तीनों लैंडफिल साइट्स को चरणबद्ध तरीके से साफ करना सरकार की प्राथमिकता है।
3: तीनों लैंडफिल साइट को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके में खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भलसवा और ओखला में तेजी से काम हो रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में जगह की कमी और यहाँ से तेजी से निकल रहे जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने में जो प्रॉब्लम है उसका मैंने आज रिव्यू किया। एक महीने बाद फिर मैं यहाँ आऊंगा और इस रिव्यू के आधार पर क्या कार्रवाई हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से तीनों लैंडफिल साइट को साफ करना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के माध्यम से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन और जनकल्याण से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2025-26 और 26-27 में राजधानी की विभिन्न झुग्गी बस्तियों में कुल 1,510 विकास और निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें 2025-26 में 1,253 कार्यों पर लगभग 389 करोड़ रुपए तथा वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 257 कार्यों पर लगभग 61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शादरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका, नजफगढ़ तथा राजधानी के अन्य क्षेत्रों में स्थित झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को

0: सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। आज दिल्ली भाजपा द्वारा आयोजित आपातकाल विषय गोष्ठी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल लागू किया था। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दौरान संविधान की भावना को आघात पहुंचाया गया, नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन हुआ और लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्र लोकतंत्र सेनानियों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए ये संकल्प दोहरा रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने आज एक फर्जी गैस कनेक्शन और डिसकनेक्शन धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि लोगों को गैस कनेक्शन काटे जाने के फर्जी संदेश भेजकर ये आरोपी ठगी करते थे। उन्होंने कहा कि आरोपी ठगी की रकम का इस्तेमाल महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में करते थे। अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण, सोने चांदी के आभूषण, नकदी तथा एक वाहन बरामद किया गया है।
1: सबसे पहले हमने शाहीन बाग में एक कुरियर मॉड्यूल को ध्वस्त किया, जो कि इस ठगे हुए पैसों से महंगे फोन खरीदकर कोलकाता भेजता था। ये चारों मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चला रहे थे, जिसके तहत कॉलिंग टीम, डिजिटल ऑपरेटर्स, रिसीवर कैरियर नेटवर्क और डिस्पोजल नेटवर्क, ये चारों ही आपसी तालमेल में काम करते थे। इस कार्रवाई में हमने अभी तक 20 मोबाइल फोन, 61,900 रुपए कैश, एक टाटा हैरियर गाड़ी, सोने और चांदी के सिक्के, एक लैपटॉप और एक टैबलेट रिकवर किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार भारतीय विद्यालय खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ के बीच आज एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में किया गया यह समझौता अगले वर्ष आयोजित होने वाली ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय रेसलिंग प्रतियोगिता और ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी के संबंध में किया गया। इस अवसर पर श्री सूद ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन में 50 देश और लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने, उनके प्रदर्शन को बेहतर करने और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद करेगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने और राजधानी को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले गए। दिल्ली में जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला और महरोली सहित विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली नगर निगम और कार्य निष्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कचरे के निस्तारण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली सरकार भारतीय विद्यालय खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय

समझौते पर हस्ताक्षर और आशुराए मुहर्रम पर आज राजधानी में विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8:00, ये लीजिए पूरे हुए 19 सेकंड्स, और समय है कार्यक्रम गीत मालिका का, जिसके अंतर्गत हम पिरो कर लाए हैं चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं अनुराधा पोडवाल की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका का, जिसके अंतर्गत आपने सुने चंद ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने समाचार हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावित

0: वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं।

0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस 3

0: मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और US ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विजन को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विजन दस्तावेज का आगाज किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा हों।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वजीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मालियत की 2,09,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवाम उन्नास की तहरीक बन गया है। वजीर आजम मोदी ने यह बात समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात के वजीर मुमलिकत BL वर्मा का एक मजमून शेयर करते हुए कही, जो नशे से मुक्त भारत की तामीर की अहमियत पर तहरीर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हरेक शहरी पर जोर दिया। जनाब वर्मा ने अपने मजमून में तहरीर किया है कि हुकूमत मंशियात की लत को एक हसास मामला समझती है, जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाबते 1945 में तरामीम की तजवीज़ की है। उनका मकसद मुआइने, टेस्ट करने या तजिया करने के लिए इजाज़त हासिल करने वाले जाबतों को सहल बनाना है। वजारत ने कहा कि तरमीम में तमाम तरह की अद्वियात को तजिया जाती और गैर क्लिनिकल टेस्टिंग मकासद के लिए कम मकदार में दरामद करने के लिए मंजूरी पर मबनी एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है। सहल करदा जाबतों का इतलाक़ उन बहुत सी अद्वियात पर नहीं होगा जिनका ताल्लुक जिनसी हारमोन्स, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स से है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद को तैनात करने और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती माहदे सीटा के फवायद को ज्यादा से ज्यादा करने में मदद करना है। आज लंदन में 10वीं सालाना बरतानिया भारत वीक से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत बरतानिया की शराकतदारी रवायती तिजारत से कहीं ज्यादा वसी हो गई है, जो टेक्नोलॉजी, सॉवरिन AI, अहम मादनियात, दिफा और साफ तवानाई जैसे जामे शोबों का अहाता करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में फ्रेजाइल 5 से निकल गया है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मौाक़े के मकाम पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बरतानिया सीटा दोनों ममालिक की बेहतरीन अशिया और खिदमात को एक दूसरे के लिए दस्तियाब करने पर मरकूज है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल को लंदन में मुनक़िदा सालाना बरतानिया भारत अवार्ड 2026 में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को एक बुलंदी पर ले जाने में कायदाना रोल अदा करने पर खसूसी इनाम से नवाजा गया। जनाब गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि ये एजाज हुकूमतों, सनतों, माहरीन तालीम, सकाफत और अजीम भारतीय बिरादरी की मरहून मिन्नत है, जो भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में सरगर्म हैं। वेनेजुएला में आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए हैं। कल राजधानी के नज़दीक आने वाले इन जलजलों के बाद राहत कार मलबे से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कराकास और नज़दीकी साहिली शहर ला गुआयरा में लोगों को गिरी हुई इमारतों के मलबे में से मदद के लिए पुकारते हुए सुना गया। 7.2 शिद्दत के पहले जलजले के बाद जो दूसरा जलजला आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नज़दीक थे, जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी सदर रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इत्तेहाद का ये कहते हुए एतराफ़ किया है कि ये मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान तआवुन के जज्बे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया है। नेज़ जलजले से होने वाले शदीद नुकसान के तनाजुर में राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक़वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्तात का ऐलान किया, जिसके तहत भारतीय फ़जाइया के 2 C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये तैयारे जलजले के बाद राहत रसानी में मदद के लिए ज़रूरी अशिया लेकर गए हैं। हिस्पानवी जबान में अमिस्तात का मतलब है दोस्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस इमदाद में भारतीय फौज का एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा इमदादी अशिया, दवाएं और तिब्बी आलात भी हैं, जिसमें 2 भीष्म क्यूब्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालात में वेनेजुएला की हुकूमत और वहां की अवाम की मदद के लिए अहदबंद है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ियों के ग्रुप से बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने उनसे भारत में रुनुमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, नेज़ भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इतफाक़ के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफ़र से भारत नेज़ भारत यूरोप शराकतदारी के इम्कान के ताल्लुक़ से उनकी मालूमात में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान ने दोनों मुल्कों के फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल तनाज़ियात के तस्फीये का एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इस बंदोबस्त में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC और कतर के शहर दोहा में तैनात अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान सेंट कॉम से नुमाइंदगान शामिल होंगे। जनाब वेंस ने एक ब्रिटिश न्यूज साइट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमरीका ने किसी और जंग के खतरे को कम करने की गरज से ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC के साथ एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इसी दौरान अमरीका और खलीजी तआवुन की कौंसिल GCC ने बहरीन के शहर मनामा में एक वजारती मीटिंग में अपनी जामे शराकतदारी का इरादा किया, जिसमें उन्होंने इलाकाई सालमियत, ईरान के साथ सफारतकारी, शाम और लबनान में इस्तेहकाम और गजा में तामीर नौ की कोशिशों के तई अपने अहद पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और जी सी सी वजारती कौंसिल के मौजूदा चेयरमैन। बहरैन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी ने इस मीटिंग की मुआमिन सदारत की। मीटिंग में जी सी सी रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और जी सी सी सेक्रेटरी जनरल जासिम

जासिम अल बुदैवी ने शिरकत की। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हकीदत व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़ियों के जुलूस निकाले गए। नायब सदर जमहूरी सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिससे शुजात, हमदर्दी और हक़ो इंसाफ के तई पाबंदी की अकदार को तहरीक मिलती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह मुकदस त्यौहार माशरे में यकजहती, अमन और बाहमी इज्जत के बंधन को मुस्तहकम करने के लिए लोगों को तहरीक देता है। आशूरे मुहर्रम के मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानियों को याद किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दरमियान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जुनूबी मानसून ने मजीद पेशकदमी की है। शुमाल मशरिकी भारत, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस हफ्ते के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर ये FIR दर्ज की गई है। आज अयोध्या में एक अदालत ने राम मंदिर अतियात मामले में गिरफ्तार 8 मुलजमान को अदालती तहवील में भेज दिया। इन मुलजमान को उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था। अयोध्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा के अफसर KC वर्मा ने अखबार नवीसों को बताया कि उनका रिमांड बरोज़ पीर 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। जर्मनी में मुनक़िदा ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगे हासिल किए। भारतीय शूटरों ने पिस्टल और राइफल के मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 सोने, 8 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीते और उन इनफरादी गैर जानबदाराना खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 14 तमगे हासिल किए। इटली 10 तमगों के साथ 3रे मकाम पर रहा। बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान आज फ्लर्टन में खेले जा रहे अमरीकी ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर 6 और मर्दों के सिंगल्स के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चाउ टियन चेन को सीधे मुकाबले में 21-17, 26-24 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के एक और मुकाबले में कदम्बी श्रीकांत मलेशिया के ली जी जियाओ को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 5वें दर्जे की खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चेन्नई ताइपी की तुंग सी तोंग को 21-12, 21-19 से शिकस्त दी जबकि रक्षिता ने चेन सुयू को 21-4, 21-19 से हराया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनशियात के कंट्रोल से मुतल्लिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज़ किया। उन्होंने मनशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 10 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पैनिश भाषा में मित्रता होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान इनका समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आज आपने सुश्री दीपाली प्रसन्ना की आवाज में कुमाऊनी गीत सुने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पंडित मधु मुद्गल का राग भोपाली में गायन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आपने पंडित मधुप मुद्गल का राग भोपाली में गायन सुना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आया तेरे दर पर दीवाना। भाई तुमने तो सविता मैं कहूँ इतना खूबसूरत सा गीत जो है हमें सुनाया और संगीत यात्रा के उस दौर पे पहुंचा दिया मेरे कानों को और कहूँ मेरे दिल को कि जो रूह तक पहुंचता हुआ बहुत ठंडक देता है। और वाकई कहूँ कि तुमने मुझे रूहानी कर दिया तो कहना गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही। और वंदना, आज कुछ गीत भी हम ऐसे ही लेकर आए हैं जो रूह से रूह तक का सफर तय करेंगे। इस सफर यात्रा में हमारे साथ आप रहेंगे और ये गीतों की जो कशिश है, ये जो हम खास तौर पर सूफी गीत आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि सूफी गीतों में वो मर्म छुपा होता है कि वो इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाते हैं। वो एक ऐसा संदेश देते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। यहाँ पर भाषा या किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं होती। इन सभी सीमाओं से उठकर जो संगीत की विधा बनी है वो विधा सूफी संगीत कहलाती है।

0: वाकई सूफियाना गीतों की बात ही कुछ और है। सूफियाना गीत जो होते हैं या कहें कि सूफी संगीत जो होता है वो मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये एक इबादत का माध्यम बन जाता है। सूफी परंपरा में माना जाता है कि सच्चा प्रेम केवल और केवल ईश्वर रूप से होता है, यानी कि आप जब भी किसी से प्रेम करते हैं उसमें आप ईश्वर को जब देखते हैं तब सूफी संगीत से जुड़ पाते हैं।
1: और कहा भी जाता है सविता कि जब शब्द कम पड़

जाते हैं ना, तब संगीत बोलता है, और जब संगीत भी मौन हो जाए तो सूफी संगीत बोलता है जो रूह की भाषा बन जाता है। वाकई ये कुछ ऐसे गीत जो दिल तक उतरते हैं और सुकून देते हैं।

0: सूफी संगीत की हम बात कर रहे हैं वंदना, और सूफी संगीत एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी संगीत परंपरा को माना जाता है। कहा जाता है कि इस संगीत परंपरा में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को केंद्रित रखा जाता है, यानी कि केंद्र में रहता है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। वैसे सूफी संगीत ये भी कहता है कि आप प्रेम जब भी करें, किसी से भी करें, उसे ईश्वरीय रूप में आप प्रेम करें। और 8वीं सदी में इस जो संगीत परंपरा की शुरुआत हुई, और तब से लेकर आज तक न जाने कितने ही सूफी संतों ने इस परंपरा में अपना योगदान दिया और सूफी संगीत को आज उस उत्कर्ष पर ला दिया जहां पर आप और हम जब भी सुनते हैं सूफी गीतों को तो हमारे कान भी बिल्कुल मधुरता से भर जाते हैं और हम भी कहीं ना कहीं उसके साथ एक तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल सविता, और कहीं ना कहीं अंतर मन को बहुत शांति भी मिलती है। और संगीत, जैसा कि तुमने कहा कि आज का सूफी संगीत नहीं है, बहुत पुरानी देन है, लेकिन आज भी इसका पर्याय या फिर कहें इसकी उपलब्धि को यूं माना जाता है कि भागते दौड़ते दुनिया में ना कभी ना कभी शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो हम एक मौन ढूंढते हैं, रूह का सुकून ढूंढते हैं जो हमें इन गीतों के माध्यम से मिल जाता है।
0: और जब रूह का सुकून मिल जाता है, जब शांति की तलाश खत्म हो जाती है, तो वाकई ऐसा लगता है कि अब कुछ क्षण अपने साथ बिता लिए जाएं।

0: जिसके। वाकई सूफी संगीत भी यही कहता है कि आध्यात्म और रहस्यवाद का एक ऐसा मिश्रण है ये, जहां पर दिल बोलता है कि जो मोहब्बत है वही ईश्वर है, और इसी के मिलाप से बना सूफी संगीत। अभी सूफी संगीत के साथ साथ वंदना, हमारे कई बहुत अच्छे अच्छे से दोस्त हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में हमेशा ही बने रहते हैं और अपने संदेश कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि सविता अब थोड़ी सी

0: तवज्जो हम उन्हें भी दें और उनके जो संदेशे हैं प्यारे प्यारे उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते चले।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम संदेश ये ले रहे हैं, हमें मिला है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नन्ही मुन्नी, अवंतिका तनुश्री, ये सभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। साथ हैं हमारे कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी अपने पूरे परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जो हमें लिख रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेशा। इसके साथ ही साथ वर्णिंग खेड़ा पंजाब से भी हमारे पास संदेशा आया है, मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। साथ हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी जी और इनके साथ पूरा सिद्दीकी परिवार हमारे कार्यक्रम में जुड़ा हुआ, जो कि हमें जसपुर उत्तराखंड से संदेशा भेज रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास ये आया है पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, ये है मेहर अरोड़ा जी का संदेशा और इनके साथ भी इनका पूरा परिवार कार्यक्रम को सुन रहा है। तो सुनील पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कह रहे हैं कि कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है और पूरा परिवार साथ बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहा है। ये अनारकली बाजार जगराऊ से हमें संदेशा भेज रहे हैं। संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ सतीश अनेजा जी, जो कि हमें संदेशा भेज रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से। इनके साथ हैं बिमला अनेजा जी और ये कह रहे हैं कि आप सभी को बेशुमार प्यार और बहुत ही अभिवादन, क्योंकि कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आ रहा है और कह रहे हैं कि हमें जो है वो इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ बेशुमार मोहब्बत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मोहब्बत ही है जो हमें ये हौसला देती है कि हम हर बार कुछ नया आपके लिए लेकर आएं। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी का संदेशा मिला है, जिसमें इनका पूरा परिवार शामिल है और ये संदेशा हमें मिला है, लिखकर भेज रहे हैं हमें ये नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से संदेशा हमें मिला है अकरम हुसैन प्रिंस का और इनका पूरा परिवार कार्यक्रम में शामिल है। संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं ये हैं दीपेश वर्मा, जो कि हमें छत्तीसगढ़ से संदेशा भेज रहे हैं और इनके साथ भी इनका परिवार है और कार्यक्रम को ये पसंद कर रहे हैं, पूरा परिवार कार्यक्रम को बैठकर सुनता है, तो लगता है मानो हम भी आपके परिवार का ही हिस्सा बन गए हैं। गीत और बोल बहुत पसंद आ रहे हैं और लिखकर भेजने वाले हैं, ये हमें मध्य प्रदेश से संदेशा मिला है जिला राजगढ़ से, लिखकर भेजने वाले हैं गोविंद वैष्णव और दिव्या, इनके साथ भी परिवार इनका कार्यक्रम को सुन रहा है। संदेशे के साथ जुड़े हुए छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबे पाटिल और इनके साथ भी इनका पूरा परिवार है और नवी हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, फागुराम यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मुकेश कश्यप का भी संदेशा हमें मिला है, इन्होंने हमें दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से संदेशा भेजा है। नवी हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि गन्नौर से हमें संदेशा भेज रहे हैं। तो संदेशा हमें मिला है हिमकेश्वर साहू जी का, दारा सिंह का, जो हमें फिलहाल बता दें हम दारा सिंह जो हमें चौटाला हरियाणा से संदेशा भेज रहे हैं। तो मुकेश बत्ता जी जो कि हमें पटियाला से संदेशा भेज रहे हैं, संदेशे के साथ जुड़े हुए सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन और ये हमें शांति नगर सोनीपत से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशे के साथ ये जुड़े हैं हमारे साथ सुनील कुमार गुंद जी, जो कि हमें संदेशा भेज रहे हैं संगरूर पंजाब से। संदेशे के साथ हाजी मजहर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाजी मजहर अली अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं, ये अस्तुपुरा मऊ से संदेशा भेज रहे हैं। तो वहीं बहादुरगंज गाजीपुर से हमें संदेशा मिला है आज़ाद अली अनवर का। संदेशे के साथ संजय साहू जो कि हमें पोटिया कला दुर्ग से संदेशा भेजते हैं, ये भी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। तो फारूक अली खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम को इन्होंने भी बताया कि इन्हें पसंद आया है, एक अलग तरह की थीम लेकर आ जा पाए हैं। स्वर्ण सिंह गिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें संदेशा भेज रहे हैं ठाकुरवाला गांव लोहगढ़ से। संदेशे के साथ हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं ये हैं हनी सिंह, जिन्होंने संदेशा हमें कलारी से लिखकर भेजा है और ये पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नासिर शेख हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश गगनपुरे और संदेशे के साथ दिलावर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रघुवीर नगर दिल्ली से हमें संदेशा भेज रहे हैं। तो संदेशा हमें अब जो अगला मिला है वो मिला है प्रकाश वर्मा जी का और ये हमें संदेशा भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। इन सभी संदेशों के साथ आप सभी के फिलहाल तो संदेशे

खत्म हो गए हैं, लेकिन हमारे पास गीतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। और गीतों के सिलसिले से पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास एक संदेश आया है, लिखकर भेजा है। ये लिखने वाले हैं बबलेश पवार जी, जिन्होंने संदेशा हमें लिखा। ये कहाँ से लिखने चलिए ये भी जान लेते हैं। इन्होंने हमें लिखकर भेजा है बाड़मेर राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया कि भाई मिश्री से मीठी वंदना यहाँ पर बैठी है, तो वाकई मिश्री से मीठी वंदना की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। फिलहाल एक गीत की तरफ पढ़ लेते हैं।

0: है तो सूफी गीत कुछ इस तरह से रूह और दिल में उतर जाते हैं कि हम जितनी बार भी उन्हें सुने वो उतने ही तरोताज़ा और पुरकशिश लगते हैं। बेहद ही साधारण शब्दों में लिखे हुए लेकिन इतनी गहरी बात और इतने गहरे अंदाज से लिखे जाते हैं वंदना ये शब्द ये गीत कि जितनी बार भी आप सुने ये आपके दिल में एक अलग ही जगह बना जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सविता। और अगर मैं कुल मिलाकर बहुत साधारण शब्दों में कहूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कभी कभी ज़िंदगी में जब हम कहते हैं ना कि बहुत मैल हमारे कपड़ों पर हो रही है या फिर हमारे बर्तन है तो हम उन्हें क्या करते हैं समय समय पर बहुत अच्छे से क्लीन करते रहते हैं। तो आई बिलीव कि जब कभी लगे कि रूह पर आत्मा पर जो भौतिक सुख है या फिर संसारिक सुख है उसकी माया बहुत ज़्यादा चढ़ रही है तो ऐसे में कभी कभी जब आप सूफी संगीत सुन लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से कम धुलाई हो जाती है।
0: जी तो चलिए ये तो बात आपने कही कि मन का जो मैल है उसे भी समय समय पर हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए और इसी मैल को निकालने के लिए जब आप सूफी गीतों को सुनते हैं तो वाकई जो मन है वो एक अलग ही निश्चल स्वभाव में आ जाता है। फिलहाल तो आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाने का वक्त हो चला है क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे वरना तो आप गीत नहीं सुन पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने के मुझे और वंदना को दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
2: है तेरे दर पर सर झुकाए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 12 बजने को है। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को है। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: It's not only about tariffs and rules of origin. It's not only about traded goods and services. It's about collaborations in technology, in education, culture, the arts. It is focused on bringing the best of both countries to each other. It's a fair, equitable, very balanced agreement.
1: Addressing the business plenary session in London, the Union Minister said India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Mr. Goyal said it was heartening to interact with leaders from across sectors, united by a shared belief in the immense opportunities that lie ahead. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Abelardo de la Espriella on his victory in the Colombian presidential elections. In a social media message, Mr. Modi said India values its close friendship with Colombia, which continues to grow in all areas. He conveyed his best wishes to Mr. de la Espriella for a successful tenure, saying that he looks forward to working together to further deepen bilateral relations. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met officers of Indian Foreign Service 2010 batch undergoing mid-career training program 2 in Delhi yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said he underscored the importance of preparing a foreign policy for Viksit Bharat. He further stated that as the IFS officers assume greater responsibilities in service, their experience, capabilities and judgments become all the more important. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry said, as part of the operation, two Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft departed from Venezuela this morning, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts. The death toll in two powerful earthquakes in Venezuela has risen to 589. Nearly 3,000 people have been injured. In men's cricket, Ireland defeated India by 34 runs in the first T20 international of the two-match series in Belfast. This is Ireland's first victory over India in any format. Chasing 183 for a victory, India were bundled out for 148 with 6 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
2: Yakashwari, Delhi ka AIR Live Into 24/7 चैनल है और मैं हूँ अल्पना, लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। जी हाँ, 12:10 हुआ है और ये समय होता है आपके इस खूबसूरत और ख़ास कार्यक्रम का। जी हाँ, सुरों की अनमोल विरासत, संगीत की अमिट कहानियाँ और उन कलाकारों का सफ़र जिन्होंने समय को सुरों से बांध दिया। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से कार्यक्रम में अल्पना के साथ। और श्रोताओं, आज हम याद करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस विलक्षण संगीतकार को जिन्होंने कभी लोकप्रियता की दौड़ में शामिल होने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, और लेकिन उनका संगीत आज भी दुनिया को एक धरोहर देकर चला गया। आज का यह सफ़र समर्पित है संगीतकार जयदेव को। जी हाँ, जयदेव, जो कि जिनका पूरा नाम है जयदेव वर्मा, और उनका जन्म 3 अगस्त को हुआ था 1918 में नैरोबी में, केन्या में उनका जन्म हुआ। बचपन लुधियाना में बीता और बहुत कम लोग जानते होंगे कि किशोर अवस्था में वे अभिनेता बनना चाहते थे और इसके लिए वो मुंबई भी गए। लेकिन फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम भी किया, लेकिन किस्मत उन्हें अभिनय नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में ले जाना चाहती थी। और उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से संगीत की शिक्षा ली और बाद में प्रसिद्ध संगीतकार, जी हाँ, प्रसिद्ध संगीतकार एस डी बर्मन के सहायक के रूप में काम किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जिसे संगीत से सजाया है, जी हाँ, और कोई नहीं जयदेव ने। और आवाज़ लता मंगेशकर की, बहुत प्यारा गीत है फिल्म प्रेम परपस से।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जयदेव की। जी हाँ, कुछ लोग शोर से पहचान बनाते हैं और कुछ लोग खामोशी में भी इतिहास लिख जाते हैं। जयदेव उन्हीं फनकारों में से एक थे जो सुरों में अपनी आत्मा छोड़ जाते हैं और उन्होंने संगीत में कितनी अच्छी अपनी पहचान बनाई वो उनके गीतों में आज भी नजर आ रहा है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है मुझे जीने दो। तो

साथियों, जयदेव ने 1955 में यानी कि 1955 में फिल्म जोरू के भाई से अपना स्वतंत्र संगीतकार के रूप में पहचान मिली, लेकिन उन्हें असली पहचान और सफलता मिली 1961 में फिल्म हम दोनों से। जी हाँ, शायद आपको याद होगा, एक से एक खूबसूरत गीतों से भरी ये फिल्म थी और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत आपके लिए पेश करते हैं। सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये एक खूबसूरत गीत।

साथियों, जयदेव शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और गजलों का अद्भुत संगम रचते थे। जी हाँ, वे शब्दों को संगीत पर हावी नहीं होने देते थे और संगीत को शब्दों पर हावी नहीं होने देते थे।

उनकी धुनें सरल, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली होती थी। ये संगीत नहीं ध्यान की वो अवस्था होती थी, जो धुन ये धुन नहीं मन की एक भाषा होती थी। जी हाँ, जयदेव का हर गीत सुनने वालों के भीतर तक छू जाता था। और जयदेव की कभी व्यावसायिक सफलता को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने बड़े बैनरों की जगह अच्छी कहानियों और अर्थपूर्ण फिल्मों को चुना और उसके लिए कई गीत लोकप्रिय हुए उनके। और लेकिन फिल्मों ने चाहे व्यवसाय ना किया हो, लेकिन उन्होंने सफलता उनके गीतों को ज़रूर मिली और उनका संगीत अमर हो गया। और 70 के दशक में बहुत ही खूबसूरत और सुनहरे नगमे उन्होंने कंपोज किए, तो उसमें से एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कि फिल्म रेशमा और शेरा से हमने ये चुना है, जो कि लता मंगेशकर की आवाज़ में है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

और साथियों, जयदेव की एक और खूबसूरत सी कंपोजिशन है परिणय फिल्म की, जिसमें आवाज़ दी है मन्ना डे और वाणी जयराम ने।

साथियों, अगर हम जयदेव को गज़लों का उस्ताद कहें तो ये भी कम कुछ गलत नहीं होगा। 1978 में फिल्म गमन के जयदेव को नई पहचान दी और इस फिल्म के एक एक गीत बहुत ही क्लासिक गीत रहे, क्योंकि इस गीत हर एक गीत अपनी कहानी कह रहा था और बहुत ही खूबसूरत गीत थे इस फिल्म के। तो अगला गीत लेते हैं इसी फिल्म से, बहुत ही प्यारा सा एक गीत है भूपेंद्र की आवाज़ में, सुनते हैं ये गीत।

साथियों, जयदेव की हम बात कर रहे हैं और जयदेव हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे संगीतकार बने जिन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। जी हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मिला फिल्म रेशमा और शेरा के लिए, और गमन फिल्म के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा अनकई फिल्म के लिए मिला। सुर सिंगार सम्मान उन्हें मिला 4 बार और लता मंगेशकर सम्मान से भी वो नवाजे गए। जी, उन्होंने कई नए कलाकारों को भी अवसर दिया जिसमें हरिहरन, सुरेश वाडेकर और छाय गोंगोली जैसे कलाकार रहे। और जयदेव ने कभी विवाह नहीं किया और उनका जीवन पूरी तरह संगीत को समर्पित रहा और वे संगीत के लिए ही पूरी जिंदगी जीवित रहे। और एक बहुत ही खूबसूरत सा फिल्म का गीत है, आला फिल्म से हमने ये गीत चुना है। और इसमें आप देखिएगा, इस फिल्म के हर गीत में सेमी क्लासिकल, क्लासिकल टच के गीत हैं और एक से एक खूबसूरत गीत हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म से गीत यशुदास की आवाज़ में।

और साथियों, अब एक ऐसा गीत जो कि है फिल्म कमल से, बहुत ही प्यारा गीत, जैसे कि हमने बात करी थी कि छाया गंगोली की आवाज़ में ये गीत है, और जयदेव एक ऐसे दिग्गज हमारे कंपोज़र रहे जिन्होंने अलग अलग कलाकारों को शामिल किया अपने गीतों में और उन्हें अवसर प्रदान किया कि वो अपनी उनकी धुनों पे गीत गा सकें। तो चलिए सुनते ही अगला गीत उनकी बहुत ही फेमस फिल्म गमन, जिसके लिए उनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी, एक से एक अच्छे गीत है उस फिल्म में, तो सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, कुछ नाम तालियों में जीते हैं, कुछ पुरस्कारों में, लेकिन कुछ फनकार अपनी धुनों में अमर हो जाते हैं। जयदेव उन्हीं अमर फनकारों में से एक हैं। और इसी के साथ अल्पना को इस कार्यक्रम से विदा दीजिए, लेकिन सुरों की महफिल यूं ही सजी रहेगी। और भी प्यारे प्यारे कार्यक्रम और गीतों के साथ मैं आपके साथ बनी रहूंगी, लेकिन छोड़ी जा रही हूँ इस प्यारे से गीत के साथ।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव चैनल है। 1 बजने को है, आप समाचार होंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छिड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी CETA के साथ अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लंदन में आयोजित एक व्यापार सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और ब्रिटेन के उद्योग जगत से आपसी सहयोग को और मजबूत करने, नवाचार को गति देने तथा साझा समृद्धि के लिए अधिक महत्वाकांक्षी निवेश करने का

आह्वान किया। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों के T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर ही सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और अगला गीत फिल्म रातों का राजा से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और संगीत से सजाया है आरडी परमन ने।

और अगली आवाज़ मुकेश की और गीत है पूरब और पश्चिम फिल्म से। संगीत से सजाया है कल्याण चरण जी ने और बोल हैं इंदिवर की।

0: यह आकाशवाणी का AIR लाइव 24/7 चैनल है। 2 बजने को है, आप पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के सेशल्स के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026-2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Home Minister Amit Shah has laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau yesterday, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. He also launched a drug disposal fortnight under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances valued at around 6,000 crore rupees will be destroyed. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, the India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy.
4: The UK agreement is a template which is very comprehensive. It's not only about tariffs and rules of origin. It's not only about trade in goods and services. It's about collaborations in technology, in education, culture, the arts. It is focused on bringing the best of both countries to each other. It's a fair, equitable, very balanced agreement.
3: At the business plenary session in London, Mr. Goyal said India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK CETA. He invited businesses in both countries to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition. An Ayodhya court has remanded all 8 accused arrested in the alleged Ram Temple Donation scam to judicial custody till Monday. The accused were produced before the Chief Judicial Magistrate's Court following their arrest. Prosecution officer K.C. Verma said more than 79,85,000 rupees had been recovered from the accused except one, Subhash Srivastava. The 8 arrested are Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastava and Ramashankar alias Tinu. National Biodiversity Authority

ये आकाशवाणी का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत के संगीत। तो शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत गीतों की।

इसी के साथ आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत का नॉन स्टॉप गीतों का ये कार्यक्रम था, जिसमें आपने सुने बहुत ही प्यारे प्यारे गीत अलग अलग फिल्मों से। और इसी के साथ अल्पना को इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की।

0: ये आकाशवाणी का ए आर लाइव 24/7 चैनल है। 3 बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के सेशल्स राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के राष्ट्र

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। लंदन में खेले गए FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के अबू बकर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 7 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में अभी आप सुन रहे थे राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत। अब आपको सुनवाते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज दी है बेला सुलेखे ने।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी किशोर कुमार की। अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की ही आवाज में अंदाज फिल्म का ये गीत।

खेल खेल में इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। अब आपको सुनवाते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और शरद कुमार की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से। इसी गीत

0: ये आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांता।

अभी आप कार्यक्रम नाद ब्रह्म सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। वंदे मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। सुबह के 4:53 और 52 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:10 पर। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी होगा प्रातः 5:30 पर। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम लेकर आएंगे प्रातः 6:10 पर। 6:40 पर आप सुन सकेंगे चिंतन। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे 6:45 पर। 6:55 पर होंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। संगीतिका, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे प्रातः 7:10 से। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। समाचार प्रभात आप सुनेंगे प्रातः 8:00। प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत धरती आकाश, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 9:15 से। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक आप सुन सकेंगे प्रातः 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा प्रातः 10:10 से। दिन में 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी होगा दिन में 11:30 से। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः के 5 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे।

0: वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेशल्स के संबंधों का आधार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच निकट संपर्क में निहित रहा है। प्रमुख समुद्री सहयोगी देश के रूप में सेशल्स का स्थान क्षेत्रीय सुरक्षा और समग्र विकास के भारत के महासागर दृष्टिकोण में विशिष्ट है। अविकसित देशों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता में भी वो भागीदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी भाग लेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित एक डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वामित्व के लाभ प्राप्त होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 के अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्जी रॉड्रिग्स ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी है। भारत का अगला मुकाबला रविवार को इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नार्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the country's Golden Jubilee National Day celebrations as the guest of honour. This will be his first visit to Seychelles since 2015. The Ministry of External Affairs said an Indian Armed Forces contingent, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the PM will hold talks with Seychelles President Dr. Patrick Hermini to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Senior functionaries from the cooperative sector, representatives of various institutions and more than 4,000 Sarthis associated with Bharat Taxi will participate in the program. Bharat Taxi is a digital mobility platform built on cooperative principles. It will initially be launched in 14 districts of Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with plans to expand its services across the state within the next month. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the 10th annual UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, "The India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy." Department of Atomic Energy Secretary Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper-chlorine thermochemical cycle. The facility uses nuclear process heat from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam, Tamil Nadu. In Kolkata, the death toll in connection with the Taratala building collapse has risen to 16. The injured are being treated at SSKM Hospital. Police have arrested 6 people, including a government official, in connection with the incident. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Abelardo de la Espriella on his victory in the Colombian presidential elections. In a social media message, Mr. Modi conveyed his best wishes to Mr. de la Espriella for a successful tenure, saying that he looks forward to working together to further deepen bilateral relations. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S.-mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire contingent on Hezbollah halting all attacks and withdrawing from southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as the first step toward restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital. Lebanon's ambassador to the U.S., Nada Hamadeh, thanked the leaders for hosting the talks. Lebanon's ambassador to the U.S., Nada Hamadeh, welcomed the initiative, and Israel's ambassador to the U.S., Yekiel Leiter, called it a historic development. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran overnight. India Meteorological Department has said thunderstorms and lightning are likely over parts of Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, eastern Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand and Lakshadweep till Monday. Heat wave conditions are also expected at isolated places over Uttar Pradesh till tomorrow. In FIFA World Cup 2026, France defeated Norway 4-1 in Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, US. Ousmane Dembele scored a first-half hat-trick, helping France to finish at the top of the Group 1. In another Group 1 fixture, Senegal defeated Iraq 5-0 in Toronto. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं। पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें, श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं, अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है, उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
2: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस 2 शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए।